मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 53 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

सुबह की ताजगी में एक अनोखी शक्ति छिपी होती है। जब दिन की शुरुआत होती है तो हवा में एक नई ऊर्जा घुल जाती है जो मन को हल्का और विचारों को उज्जवल बना देती है।

नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बिला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह

नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। धरती की गोद में सपनों को बोता है किसान, अपनी मेहनत से हर सूनी राह संजोता है किसान। अपने इन्हीं किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण विषय पर डॉक्टर नगेन्द्र सिंह रघुवंशी की ये जानकारी, आइए सुनते हैं।
1: शुभ प्रभात। भूमि की उर्वरता की जांच से पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता और आवश्यकता का ज्ञान बड़े आसानी से हो जाता है। इसके द्वारा फसल में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों या हम कहें उर्वरकों की मात्रा जो दी जाती है वह निर्धारित कर दी जाती है। उतना ही प्रयोग करने से अतिरिक्त जो खर्च होता है उससे बचत होती है। मिट्टी की जांच जरूरी है इसलिए क्योंकि आधुनिक काल में अब इसकी महत्ता बढ़ती चली गई है। जैसे हम या फिर अपने पशुओं के लिए कोई रोग होने पर उसकी जांच कराते हैं, फिर उसके बाद दवाई लेते हैं, ऐसे ही मिट्टी में अगर कोई कमी है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। खेत की मिट्टी में पौधों की जो समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसकी उपलब्ध मात्रा का ज्ञान हो जाता है और रासायनिक परीक्षणों द्वारा आकलन करना, साथ ही विभिन्न भूमि के विकारों जैसे कि मृदा की लवणीयता, क्षारीयता और साथ ही साथ अम्लीयता की जांच करना मृदा परीक्षण कहलाता है। एक सामान्य तौर पर सोच हमारी यही है और इसको इसी तरह से परिभाषित भी किया जाता है और समझा जाता है। मृदा परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है यह हम सभी जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कुछ तथ्य ऐसे रखे गए हैं शायद जिन्हें हम नहीं जानते हैं। उनमें मृदा में जो उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता है इसका ज्ञान हमें तो हो जाता है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन मृदा परीक्षण के परिणाम के अनुसार फसल को संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराना है यह अनिवार्य हो जाता है। अब उस खेत की जांच हुई, कौन सी फसल आप उगाएंगे तो कितनी मात्रा डालनी है वैज्ञानिकों द्वारा उस जाति प्रजाति के अनुसार जो संस्तुति की जाती है बस उतना ही डालना होगा इस जांच रिपोर्ट के होने के आधार पर। संतुलित उर्वरकों की सही मात्रा, सही अनुपात, सही विधि द्वारा मिट्टी, फसल और जलवायु की भिन्नता के अनुसार प्रयोग करना होगा। किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी को

0: दूर करना भी आसान हो जाता है, जैसे कि जिंक की कमी से होने वाला खैरा रोग। विभिन्न कीट बीमारियों का प्रबंधन भी करना आसान हो जाता है। संतुलित और आवश्यक उर्वरक प्रयोग द्वारा उन पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि अतिरिक्त जो वहां हम अंधाधुंध प्रयोग की बात की जाती है समाज में, वह नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें समाहित होगा और उतने ही पैसे हमारे खर्च होंगे जितने की आवश्यकता फसल को है। मिट्टी की जांच का उद्देश्य स्पष्ट होता है। मृदा जांच से भूमि की अम्लीयता या क्षारीयता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनके सुधार के लिए सुधारकों की मात्रा और प्रकार की सिफारिश भी साथ साथ मिल जाती है, तो उसका उपयोग किया जाता है। फसलों एवं उनकी प्रजातियों की संस्तुति करना जो अम्लीयता, लवणीयता व क्षारीयता सहन करने की क्षमता रखती हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता का ज्ञान हो जाने के कारण जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा तत्व पर्याप्त है, किस तत्व की कमी है, किस आधार पर उर्वरक की संस्तुति की जाती है, यह सब पता हो जाएगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मृदा जांच परिणामों के आधार पर मृदा उर्वरता का मानचित्र भी तैयार कर दिया जाता है और साथ ही साथ मृदाओं का उर्वरता वर्गीकरण किया गया रहता है। इससे होता क्या है कि विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक संस्तुति हमें प्राप्त हो जाती है। फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता चल जाता है कि कहां हम बाग लगाएं, और बाग लगाएं तो कौन सा बाग लगाएंगे उसके लिए हमारी मिट्टी उपयुक्त है, इसलिए ये सब आवश्यक है। मिट्टी जांच का परिणाम भी हमारे सामने होता है तो उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। इसको हम चार चरणों में बांटते हैं, मिट्टी की जांच को। भूमि का नमूना एकत्र करना, भूमि नमूनों की जांच, भूमि की जांच से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण, और साथ ही साथ भूमि की जांच के परिणामों के आधार पर उर्वरकों, भूमि सुधारकों का निर्धारण। ये तथ्य होते हैं जिन्हें हम आगे अपने कार्यक्रम में समाहित करेंगे और फिर आगे जानने की जरूरत होती है। आज हमने केवल मिट्टी जांच क्या होती है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कुछ किया जाता है इसमें, एक सतही जानकारी के तौर पर आपके सामने रखा।
1: अभी आप सुन रहे थे मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण विषय पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की जानकारी। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि यहूदियों की नाटकशाला में 11 सितंबर 1906 को एक सभा हुई। ट्रांसवाल के भिन्न भिन्न शहरों से प्रतिनिधियों को सभा में बुलाया गया। सभा हुई, नाटकशाला में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। सब लोगों के चेहरों पर मैं ये भाव देख सकता था कि कुछ नया काम हमें करना है, कुछ नई बात होने वाली है। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी सभा के सभापति पद पर आसीन थे। सभा में जितने प्रस्ताव पास हुए थे उनमें सच्चा प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय इस प्रकार था कि इस बिल के विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद अगर वो धारा सभा में पास हो ही जाए तो हिंदुस्तानी उसके सामने हार न माने और हार न मानने के फल स्वरूप जो दुख भोगने पड़े उन सबको बहादुरी से सहन करें। यह प्रस्ताव मैंने सभा को अच्छी तरह समझा दिया। सभा ने शांति से मेरी बात सुनी। सभा का सारा कामकाज हिंदी में या गुजराती में ही चला, इसलिए किसी को कोई बात समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक वक्ता सेठ हाजी हबीब थे, वे भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत पुराने और अनुभवी निवासी थे। उनका भाषण बड़ा जोशीला था। आवेश में आकर वे यहां तक बोल गए कि ये प्रस्ताव हमें खुदा को हाजिर मानकर पास करना चाहिए। मैं इस सभा में आए हुए सब लोगों को यह सलाह देता हूं कि वे भी खुदा को हाजिर मानकर ऐसी कसम खाएं। इस प्रस्ताव के समर्थन में अन्य लोगों ने भी तीखे और जोशीले भाषण किए। जब सेठ हाजी हबीब बोलते बोलते कसम की बात पर आए तब मैं चौंका और सावधान हो गया। तभी मुझे अपनी जिम्मेदारी और हिंदुस्तानी कौम की जिम्मेदारी का पूरा भान हुआ।

तक कौम ने अनेक प्रस्ताव पास किए थे। अधिक सोचने विचारने के बाद या नए अनुभवों के बाद उन प्रस्तावों में परिवर्तन भी किए गए थे। सिद्धांत की दृष्टि से सोचा जाए तो किसी निश्चय में और ईश्वर का नाम लेकर की गई प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच समझकर कोई निश्चय करता है तो वो अपने निश्चय से कभी डगता नहीं। उसकी दृष्टि में उस निश्चय का महत्व उतना ही होता है जितना कि ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा का। लेकिन दुनिया सैद्धांतिक निर्णयों के आधार पर नहीं चलती। वो ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय के बीच महासागर जितना भेद मानती। किसी सामान्य निश्चय को बदलने में बदलने वाले को शर्म नहीं आती, लेकिन ईश्वर को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य जब प्रतिज्ञा को भंग करता है तब वो खुद ही नहीं शर्माता, समाज भी उसे धिक्कारता है और पापी मानता है। इस बात ने मानव मन में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि कानून की दृष्टि में भी कसम खाकर कही गई बात अगर झूठी साबित हो तो कसम खाने वाला आदमी अपराधी माना जाता है और उसे कड़ी सजा दी जाती है। ऐसे विचारों से भरा हुआ मैं, जिसे गंभीर प्रतिज्ञाओं का काफी अनुभव था और जिसने प्रतिज्ञाओं के मीठे फल जीवन में चखे थे, सेठ हाजी हबीब के कसम खाने वाले सुझाव से चौंक उठा। मैंने उसके परिणामों का अनुमान एक क्षण में लगा लिया। इस घबराहट से मुझ में उत्साह और जोश पैदा हुआ और यद्यपि मैं उस सभा में प्रतिज्ञा करने या दूसरों से कराने के इरादे से नहीं गया था तो भी मुझे सेठ हाजी हबीब का सुझाव बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने सभापति से कहा कि मुझे सेठ हाजी हबीब के कथन का गूढ़ अर्थ सभा को समझाने की इजाजत दी जाए। मुझे इजाजत मिली और मैं खड़ा हो गया। मैं तो ये मानता हूं कि जो मनुष्य सावधान रहकर शुद्ध बुद्धि से प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसे भंग करता है वो अपनी इंसानियत अथवा मनुष्यता खो देता है। और जिस प्रकार पारा चढ़ाया हुआ तांबे का सिक्का रुपया नहीं है ये पता चलते ही उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती बल्कि उस खोटे सिक्के का मालिक सजा का पात्र हो जाता है, उसी प्रकार झूठी कसम खाने वाले आदमी की भी कोई कीमत नहीं रह जाती।

0: गांधी चर्चा संपन्न हुई। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रत्येक नया दिन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। सुबह की पहली किरण हमें ये संदेश देती है कि चाहे बीता हुआ समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज एक नई शुरुआत का अवसर हमारे सामने है। इसीलिए दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण, धन्यवाद और शुभ संकल्पों के साथ करनी चाहिए।

मनुष्य जब अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाता है तब उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। जब मन में ईश्वर प्रकाश जागृत होता है तब जीवन की कठिन राहें भी सरल दिखाई देने लगती है।

जिस तरह ज्वाला अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार माँ की कृपा मनुष्य के दुख भय और संकटों को दूर कर देती है। भक्त विश्वास के साथ माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है और उनसे सुख शांति और समृद्धि प्रसाद रूपेण पाता है।

मनमोहन का नाम, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बहादुरी की दान और उनकी लीलाएं जीवन को आनंद और शांति से भर देती हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए अब हम चलते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 189।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को है। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडौलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडौलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी, साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरम् अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री

0: पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिंग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनम्, सागरीय आतंकवादः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम्, अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गा तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य अमूल्य है, क्योंकि यह हमें कार्य करने की शक्ति देता है, सपनों को साकार करने की ऊर्जा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस। आज की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनी पौष्टिक आड़ू के बारे में जानकारी दे रही है नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो अपने मखमली छिलके, रसीले स्वाद और भीनी खुशबू के लिए जाना जाता है। ये फल है आड़ू। आमतौर पर ये गर्मियों के उत्तरार्ध में बाजारों में दिखाई देता है और देखते ही देखते अपनी खुशबू और रंगत से लोगों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन आड़ू केवल एक सुंदर और स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए एक संपूर्ण पोषण भंडार भी है। आड़ू देखने में जितना खूबसूरत है इसके गुण भी उतने ही चमत्कारी हैं। इसकी मुलायम त्वचा, भीतर का रसीला गूदा और मिठास भरा स्वाद शरीर को ताजगी से भर देता है। आड़ू में कैलोरी की मात्रा कम होती है लेकिन पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन

0: सी, विटामिन ई, पोटेशियम, फाइबर और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो न केवल शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं बल्कि त्वचा, बाल और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। गर्मियों के इस मौसम में जब शरीर डिहाइड्रेशन और थकान का शिकार होने लगता है, तब आड़ू जैसे फल शरीर में पानी और ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक ऐसा फल है जो पेट को ठंडक देता है, लेकिन साथ ही साथ पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये आंतों को सक्रिय रखता है और मल त्याग को सहज बनाता है, इसलिए कब्ज या अपच जैसी समस्याओं में आड़ू बहुत फायदेमंद माना जाता है। आड़ू में उपस्थित विटामिन ए आंखों की रोशनी बनाए रखने में सहायक होता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी है। वहीं विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे शरीर सामान्य संक्रमणों से लड़ने में सक्षम रहता है। अगर आप बार बार सर्दी, खांसी या गले की खराश की चपेट में आ जाते हैं, तो अपने आहार में आड़ू जैसे फलों को शामिल करना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जो लोग अपनी त्वचा की चमक और कोमलता बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए आड़ू एक प्राकृतिक उपाय है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है और झुर्रियों या दाग धब्बों की समस्या भी कम होती है। आप चाहें तो आड़ू का रस चेहरे पर लगाकर फेस पैक की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, जो त्वचा को ठंडक और पोषण देता है। श्रोताओं, वजन नियंत्रित रखने के लिए भी आड़ू एक आदर्श फल माना जाता है। ये मीठा जरूर होता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर होती है और कैलोरी बहुत कम होती है। नाश्ते में या दोपहर के खाने से पहले आड़ू लेना एक हेल्दी आदत हो सकती है। ये पेट को भरता है और अधिक खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये शरीर की चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। कुछ शोधों के अनुसार आड़ू में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। पोटेशियम की मौजूदगी रक्तचाप को संतुलित रखती है और दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में सहायक होती है, इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए ये फल लाभकारी हो सकता है। अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, तो ये भी पाया गया है कि आड़ू जैसे फलों का सेवन मूड को बेहतर बनाता है। इसका स्वाद और रस शरीर में ताजगी के साथ एक सुखद अनुभव देता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। इसलिए दिन की थकान या तनाव को दूर करने के लिए एक आध आड़ू खाना न केवल स्वाद में अच्छा लगता है, बल्कि मानसिक रूप से भी राहत देता है। भारत में आड़ू की खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी और ठंडी जलवायु इस फल को विशेष मिठास और रसदार स्वाद देती है। जब ये आड़ू मैदानी इलाकों में पहुँचते हैं, तो लोग इसे देख कर ही गर्मी के इस फलोत्सव का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप बाजार जाएं और कोई गुलाबी रसीला फल मुस्कुराता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि वो आड़ू है, जो केवल जायका ही नहीं जिंदगी के पोषण का प्रतीक भी है। इसे अपने आहार में शामिल करें, अपने बच्चों और बुजुर्गों को खिलाएं और जानें कि कैसे एक छोटा सा फल बड़े स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप पौष्टिक आड़ू के बारे में नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रही थी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा से की गई भेंटवार्ता का विषय है वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। पेश करता है सुभाष खन्ना। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश। सुनिएगा दुनिया की अजब गजब खबरें। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व जैव विविधता दिवस।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम अपराजिता में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम 90 बरस की आकाशवाणी कितनी नई कितनी पुरानी कार्यक्रम बहने सुनेंगी। प्रेजेंटर हैं सीमा अग्रवाल। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर मेंथा की फसल का आसवन और विपणन विषय पर डॉक्टर रीमा देवी से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। इसमें इस मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय विषय पर अनुष्का रमण शुक्ला से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। भेंट करता है सुभाष खन्ना। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर हमारी सेहत के अंतर्गत गंभीर रोगियों के लिए आहार प्रबंधन क्यों आवश्यक, इस विषय पर डॉक्टर अर्चना सिन्हा वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ SGPGI लखनऊ से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है नीना सुनकर। शाम 6:30 पर लोकार्पण कार्यक्रम में डॉक्टर नागेश्वर दुबे की वार्ता होगी जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण दायित्व। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित होगी। आलेख एवं वाचन शरद प्रकाश पांडे का, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें इंटरव्यू सुनिएगा। टॉपिक है एस्पेक्ट योर सेल्फ इंटरेक्शन सेल्फ राइटिंग बिलीव्स एंड अदर एस्पेक्ट। बातचीत की है डॉक्टर शिल्ली जैन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश IT कॉलेज लखनऊ। इंटरव्यूअर हैं डॉक्टर शिवा राकेश। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर साबरी ब्रदर्स पेश करेंगे नात और कव्वाली। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर लक्ष्मी जोशी और नवनीता जफा के गाय अवधि युगल लोकगीत आप सुन सकते हैं। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व जैविक विविधता दिवस। श्रोताओं, प्रकृति की गोद में बसे इस सुंदर संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल जंगलों, पेड़ों, पशु पक्षियों या नदियों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे जीवन की हर सांस से जुड़ा है। यह विषय है विश्व जैविक विविधता दिवस। हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि मानव समाज को यह समझाया जा सके कि पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु, वनस्पतियां, जंगल, जल, मिट्टी और सूक्ष्म जीव ये सभी मिलकर जीवन की एक सुंदर और अद्भुत श्रृंखला बनाते हैं। यदि इस श्रृंखला की एक भी कड़ी कमजोर होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति और मानव जीवन पर पड़ता है। जैविक विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हमारे भोजन का स्वाद, हवा की शुद्धता, जल का संतुलन, औषधियों की उपलब्धता और मौसम

आज जब दुनिया तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, तब प्रकृति का संतुलन कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, नदियों का दूषित होना, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण ने अनेक जीव जंतुओं और पौधों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई गांवों में सहज दिखाई देने वाली गौरैया आज दुर्लभ होती जा रही है। जंगलों का राजा कहलाने वाला बाघ भी संरक्षण की प्रतीक्षा में है। मधुमक्खियों की घटती संख्या खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। प्रकृति बार बार संकेत दे रही है कि यदि हमने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आने वाली पीढ़ियों को केवल किताबों और चित्रों में ही अनेक जीवों को देखना पड़ेगा। जैव विविधता का अर्थ केवल अलग अलग जीवों की संख्या नहीं, बल्कि यह उस संतुलन का नाम है जिसमें हर जीव का अपना महत्व होता है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक विशाल वृक्ष। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां जीवन देती हैं और पक्षी बीजों को फैलाते हैं और सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। प्रकृति का अद्भुत तंत्र बिना किसी स्वार्थ के निरंतर मानव जीवन की रक्षा करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। आज के समय में जैविक विविधता की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। असमय वर्षा, बढ़ती गर्मी, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं ये दर्शाती हैं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जब जंगल कटते हैं तो वर्षा चक्र प्रभावित होता है, जब नदियां प्रदूषित होती हैं तो जल संकट बढ़ता है, जब जीव जंतु समाप्त होते हैं तो खाद्य श्रृंखला टूटने लगती है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए भविष्य की सुरक्षा भी है। भारत जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के समृद्ध देशों में गिना जाता है। हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सुंदरवन के मैंग्रोव वनों तक हमारे देश में प्रकृति के अनगिनत रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ, पक्षी, जीव जंतु और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति को पूजनीय माना गया है। पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे वृक्षों को सम्मान दिया गया है। नदियों को माता कहा गया है, पशु पक्षियों को देवताओं के वाहन के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। यह हमारी परंपरा का संदेश है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि संवेदनाओं का भी है।

विश्व जैविक विविधता दिवस हमें यह प्रेरणा देती है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। केवल सरकारों या संस्थाओं के प्रयासों से ही पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जल का संरक्षण करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी अत्यंत आवश्यक है। जब नई पीढ़ी प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेगी, तभी भविष्य सुरक्षित बन सकेगा। आज तकनीक के युग में मनुष्य चांद और मंगल तक पहुंचने की बात कर रहा है, लेकिन यदि

पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ गया तो सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति हमारे लिए केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जल सुरक्षित रहेगा, जल सुरक्षित रहेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा। विश्व जैविक विविधता दिवस केवल

विश्व जैविक विविधता दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि आत्ममंथन का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि हर जीव की साझी धरोहर है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां विकास के साथ साथ प्रकृति का सम्मान भी बना रहे। छोटी छोटी आदतें जैसे पेड़ लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना और जल और बिजली की बचत करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। आइए इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि जैविक विविधता की रक्षा के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। इसी आशा और सकारात्मक संदेश के साथ दीजिए अंजलि श्रीवास्तव को विविधा कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: करती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में। है मनुष्य की जान, कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर

0: उन्हें प्रसन्नता व्यक्त की।
1: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
2: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी SP का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट UP के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रिथुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
5: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है।

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनते हैं सुषमा वाजपेयी का राग ललित में ख्याल गायन।

अभी आप सुषमा वाजपेयी का राग ललित में घायल गायन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इसी के साथ नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार भी कभी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
5: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित

0: एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओ, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और News on AIR पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 23 मई 2026 को

बजकर 31 मिनट पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को 4:30 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें।

शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सायं 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर 0581-251-7200। श्रोताओं, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन टेक वन 5 6 7 8
2: सो बेबी
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन
3: Ladies and gentlemen, hold your heart, hold your breath. The super show begins.
0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्मी फ्राइडे में। हाँ हाँ, फिल्मी फ्राइडे प्रत्येक शुक्रवार सुबह 8:15 से कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव होता है। बातें तो टोटल फिल्मी होती हैं। बातों बातों में वक्त गुजर जाते हैं, बातों बातों में बात बढ़ भी जाती है। तो भैया सीधी सी बात यह है कि बातें ऐसी जो काम की हो, मनोरंजन की हो, दिल को सुकून पहुंचाए। तो आपसे बस यही कहना है, अभी तक आपने ट्यून नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में कभी आपकी वो दबी तमन्ना जो कभी पर्दे पर खुद को देखने की थी, अगर वो पूरी ना हुई तो हम आपके साथ हैं। हाँ भाई, आपको मौका मिल जाएगा स्टार या सुपरस्टार बनने का। मेरे दोस्त कहीं मत जाओ, क्योंकि बाकी सब मोह माया है, लेकिन फिल्मी फ्राइडे में जो आया है उसने अपने दिलो दिमाग को ताजा तरीन बनाया है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं, वरना कहां हम में इतना दम है। चलिए अब क्या करना है, करना यह है कि हम कार्यक्रम में ढेर सारी फिल्मी बातें लेकर आते हैं, और जब भी आपको ऐसा लगे
4: Why are you serious today?
0: हाँ, अगर सीरियस महसूस हो रहा है मॉर्निंग के इस टाइम पे, तो फिर ट्यून करो आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली। फिल्मी फ्राइडे आपकी सेवा में हाजिर है ढेर सारी फिल्मी बातों के साथ। हाँ भाई, पिछले हफ्ते हमने एक सवाल पूछा था आपसे, सवाल था गाना सुनवाया, और आपसे पूछा कि बताइए गायक कौन कौन है इस गाने में। तो हमारे सभी दोस्तों ने आधा जवाब भेजा, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में कोई भी सुपरस्टार तो ना बने। हाँ, स्टार जरूर रहे हैं। गाना सुन लीजिए एक बार।

इंग्लिश वर्जन टाटा यंग के लिए लिखा था, जो गीत लिखे थे वो आसिफ अली बेग साहब ने लिखे, और शुरुआत में हमने जहां पर पॉज किया था वो जो आवाज थी वो इंडी संदीप शिरोडकर साहब की थी। तो वो आधा अधूरा जवाब मिला तो इसका मतलब सुपरस्टार कोई नहीं, लेकिन स्टार तो हैं। हाँ तो मेरे प्यारो, फिल्मी फ्राइडे के सितारो, थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ, गर्मी के मौसम में आपको कूल कूल करने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अजीत भावसार जी ने भी बिल्कुल आधा जवाब भेजा लेकिन सही था। बीपी गौतम साहब भी हैं। अजीत भावसार जी कहाँ से हैं? बीरमगांव जंक्शन से, और गंज डंडवरा उत्तर प्रदेश से आप हैं बीपी गौतम साहब। मणिनाथ बरेली से नीरज सक्सेना जी ने भी अधूरा जवाब हमें भेजा था। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो ऐसे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। पटियाली रोड गंज डंडवरा से सगीर अहमद शेख साहब ने भी हमें अधूरा जवाब भेजा। अब ये अधूरा जवाब यहाँ तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो पूरा भी अधूरा भी ना है। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश करूं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छूट रहा है कुछ। खैर आगे बढ़ेंगे और दोस्तों के नाम पढ़ेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कौन कौन दोस्त पिछले हफ्ते हमें जवाब भेजने की कोशिश किए थे। सुनिधि चौहान तो बिल्कुल भी ना, टाटा यंग की आवाज थी, और टाटा यंग मणिनाथ बरेली से अदृश्री सक्सेना जी ने भी हमें जवाब भेजा है, और जवाब आपने भी हमें भेजा है। आप सोच रहे होंगे हमारे आज बोलने की स्पीड इतनी स्लो स्लो क्यों है, तो भैया इंटरनेट स्लो है इसलिए हमारी बोलने की स्पीड स्लो है। अभी देखिएगा फास्ट स्पीड पे चलेंगे आपके साथ। ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से शाह अहमद अंसारी साहब ने भी आधा जवाब भेजा, और मोहम्मद कलीम जख्मी साहब रेलवे रोड गंज डंडवारा से भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए आधा जवाब भेजकर। और ये जो मैसेज हमें मिला है वो कौन कौन दोस्त हैं आपका तो मैसेज ना ओपन हुआ। हाँ जी, ये हैं गणेशपुर गंज डंडवारा से डॉक्टर डी एच बच्चन साहब। और कोई दोस्त? हाँ बिल्कुल है, लाइन है पूरे, कई दोस्तों ने जवाब भेजे थे। यहाँ पर आदित्य सिंह शर्मा और प्रीतम तो बिल्कुल भी ना है। हाँ ये तो जवाब गलत है जिन्होंने भेजा है। हाँ आज हम आपको बता दें कि सभी मैसेज पढ़ते हुए जा रहे हैं और नाम सिर्फ उनके पुकार रहे हैं जिनके राइट आंसर आधे मिले हैं, बाकी गलत जवाब जिनके बोल रहे हैं वो उनको पता ही चल जाएगा। मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से हैं, और ये जो आंसर मिला है हमें वो आप कौन हैं? जल्दी से मैसेज ओपन हो जाए। वैसे ही हम देखते हैं, ना जी ना ये तो बिल्कुल ना। ओहो आज तो इतनी टाइम के बाद, ना जी ना आदिति शर्मा तो बिल्कुल ही ना। मगर दोस्तों आपको बता दें कि ये जो डमरू टाइप का घूमता रहता है कंप्यूटर पर कई बार खीज हो जाती है, क्योंकि हम तो स्पीड से चलने वाले हैं, लेकिन कई बार लाइफ में आपके लिए ये भी जरूरी हो जाता है। क्या जरूरी हो जाता है? जरूरी ये हो जाता है कि आप हाँ ये जो हैं, तिलक राज अरोड़ा जी हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, आपका मैसेज ओपन हो गया, कुछ दिक्कत के बाद ओपन हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये डमरू लगातार घूमता रहे। कुछ लोगों ने तो सिर्फ हेलो लिखकर भेजा है। क्या बात है, विशाल ददलानी डोमिनिक सीरियो जो बिल्कुल ना है, ये तो कतई गलत है, इसमें तो कुछ भी सही ना है। मगर ये देखिए, हाँ अपनी अपनी ट्रिक है, कई दोस्त आजमाते हैं कहाँ कहाँ से ढूंढें। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगी। इंटरनेट पर वही आपको मिलता है जो आप सर्च करते हैं, और उसमें बहुत सारे दोस्तों ने वो जानकारी आपके लिए वहां पर अपलोड की हुई होती है या किसी भी न्यूज के साथ वो जुड़ी हुई होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। मैंने दिखे कि भैया देखो ये जो दोस्त हैं, कई मैसेज मैंने ओपन किए हैं इस दौरान और अभी तक सारे गलत हैं, तो सही सही जो भी आएंगे वो हमारी नजरों के सामने हम उन्हें बोलते चले जाएंगे। आदित्य शर्मा प्रीतिम चक्रवर्ती ये तो बिल्कुल भी ना है, बाकी और सभी दोस्तों के गलत जवाब मिले। हाँ एक क्वेरी है, एक शंका है हमारे एक साथी की, वो शंका भी दूर की जाएगी, बस आप बने रहिए। तो भैया जिन दोस्तों ने

हां दोस्तों, आपकी बदौलत आकाशवाणी बरेली और 100.4 FM पर ये धूम मच रही है फिल्मी फ्राइडे में। हाँ सही है। तो भैया, ये जो अभी आपने गाना धूम फिल्म से सुना, रीमास्टर्ड और रीमेक गाना था, टाटा यंग की तो आवाज सबने बताई, लेकिन आपको बता दें कि आसिफ अली बेग साहब ने इसका

0: इतना जवाब भेजा, आधा जवाब भेजा, उनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद है ना। सुनते रहो आकाशवाणी बरेली से फिल्मी फ्राइडे, शुक्रवार सुबह 8:15 से। मुबारक। मगर एक बात कहेंगे, जिन्होंने गलत जवाब भेजे क्या कहेंगे? एक गाना नजर आ रहा है आपके।
1: मुझको राणा जी माफ कर।

इट्स वेरी वेरी फिल्मी। शुक्रवार सुबह 8:15 से आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर। दोस्तों, मौसम गर्मी का चल रहा है और बहुत सारी जगह के लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं। येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट भी है। तो ये जहां जहां से आप सुन रहे हैं, आपसे हमारा यही कहना है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, बहुत ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने का मतलब यह है कि खुद का भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गर्मी के इस मौसम में बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जिन्हें आप पी सकते हैं और अपना शरीर में जो जल की कमी, पानी की कमी हो जाती है, उसे बचा सकते हैं, है ना। खान पान पर भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अगर आप इस मौसम में खाते हैं तो आपको बहुत सारी पेट से पाचन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही खाइए जो हल्का हो और मौसम के अनुकूल हो। हाँ, इसके अलावा ये ज़रूरी है कि घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भैया जाहिर सी बात है कि सुबह जब भी आप ऑफिस जाएंगे तो उसके बाद अपने पूरे दिन अपने साथ में पानी ज़रूर रखिएगा। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए इन दिनों में अच्छा रहेगा। हाँ, पानी पीने की बात तो हो गई, लेकिन पानी बचाने की भी बात करेंगे। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि गर्मी के ही मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और पता चलता है कि हम सब कितना पानी बर्बाद करते हैं जिससे जल स्तर बहुत कम हो जाता है, छोटे मोटे तालाब सूख जाते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी पानी की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में इंसानियत और मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है वो पशु पक्षी जो आवारा हैं, घूमते हैं इधर उधर, पक्षियों के लिए भी पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं। और अपने घर के बाहर अगर बाल्टी में पानी भर के रख देंगे तो जो इधर उधर घूमने वाले पशु हैं वो भी उसे पियेंगे। और यकीन मानिए, धरा पर सिर्फ हमारा ही अपने अकेला इंसान का अधिकार नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं का है। तो ये बात इसलिए कि फिल्में जो हैं समाज का आईना होती हैं और फिल्म में इल्म भी छिपा होता है। आप बताइए, आपको कौन सी फिल्म से क्या इल्म मिला? कुछ हीरो बनना चाहते हैं तो कुछ विलेन बनने की भी तमन्ना रखते हैं, लेकिन सोचिए हमेशा हर फिल्म में विलेन का अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए बेहतर है कि अपने जीवन को अच्छे पथ पर ले जाते हुए अच्छी बातें और अच्छे कर्म करते रहिए। हाँ, ये बात तो भैया उपदेश देने वाली हो गई और उपदेश की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, हम सब जानते हैं, मानना पड़ेगा, बस इतनी सोच की कमी है हम बे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम बढ़ेंगे वहां जहां एक फिल्म को फ्राई करते हैं।

तड़का लगाने वाले हैं, आप भी हमारे साथ आ जाइए। कौन सी फिल्म है? आपने पति पत्नी और वो तो सुनी होगी, मगर पति पत्नी और वो दो आज लेके आए हैं। तो फ्रैंक पिन निकाल लिया, आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ। हाँ ये सही है, क्या करें, एक गाना पड़ेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि आज का ये कार्यक्रम बड़े गौर से आपको सुन रहा है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम से ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और सवालों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाना बता रहा है हमें

0: This is 100.4 FM.
1: ये 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे। इससे पहले हम बात कर रहे थे फिल्म को फ्राई करने की, तो आज की जो फिल्म है वो है पति पत्नी और वो दो। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वामिका गब्बी, विजय राज, तिग्मांशु धूलिया, आयशा राजा ये कलाकार हैं। ये एक रोमांटिक और कॉमेडी टाइप की फिल्म है। डायरेक्शन किया है मुदस्सर अजीज ने। दोस्तों, बॉलीवुड में कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे जॉनर के लिए पति पत्नी और वो वाला एंगल हमेशा से फिल्मकारों का पसंदीदा रहा है, और यही वजह है कि इस जॉनर को बनाने के लिए रंग बिरंगी पति पत्नी और वो, बीबी नंबर वन, घर वाली, बाहर वाली, साजन चले ससुराल जैसी कई फिल्में बनी हैं। इसी तर्ज पर 2019 में मुदस्सर अजीज निर्देशित कार्तिक आर्यन स्टारर पति पत्नी और वो भी आई, जो खूब हिट रही। अब उसी की सफलता को कैश करने के लिए मुदस्सर अजीज इसका सीक्वल पति पत्नी और वो दो लेकर आए हैं, लेकिन अफसोस, कमजोर इश्क, लाउड कॉमेडी और लॉजिक की कमी के कारण

ये हंसने हंसाने वाली फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर बनने से चूक गई। भैया ये फिल्म में कहानी जो है थोड़ी सी बता देती है आपको। प्रयागराज के फॉरेस्ट विभाग के इंचार्ज प्रजापति जी, आयुष्मान खुराना ने यह रोल किया है, उनके चारों तरफ घूमती है जो अपनी महत्वाकांक्षी पत्रकार पत्नी अपर्णा यानी वामिका गब्बी से बेहद प्यार करता है। अपर्णा अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का सपना देख रही है, जबकि उनकी करीबी दोस्त नीलोफर यानी रकुल प्रीत सिंह प्रजापति के ही विभाग में काम करती है। तीनों की जिंदगी बड़े आराम से चल रही होती है, तभी बनारस से प्रजापति की पुरानी दोस्त चंचल सारा अली खान ने रोल किया है, मदद मांगने आ पहुंचती है। असल में चंचल एक तेगवांशु धुलिया ने रोल किया है एक बाहुबली नीता का, उनकी बेटिया से प्यार करती है, लेकिन उसकी जाति उनके रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए उसे कुछ दिनों का वक्त चाहिए, इसलिए वो प्रजापति यानी प्रजापति पांडे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने की गुजारिश करती है। मजबूरी में शुरू हुई ये झूठी प्रेम कहानी जल्द ही गलत फहमियों, झूठ और मजेदार कंफ्यूजन का ऐसा जाल बन जाती है जिसमें सिर्फ प्रजापति और चंचल ही नहीं बल्कि अपर्णा, नीलोफर और कहानी के बाकी किरदार भी उलझते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ज्यादा नहीं उलझाएंगे, आपको सीधे मुद्दे की बात बताएंगे। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज की यह सीक्वल एक साफ सुथरी फैमिली कॉमेडी का वादा करती है और कुछ हद तक उस पर खरी भी उतरती है, मगर फिल्म में कई बेतुके मनोरंजक दृश्य हैं जो हंसाते हैं। हालांकि कहानी की बुनियादी कमजोरियां इसे पूरी तरह से असरदार बनने से रोक देती हैं। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प अंदाज में होती है, पहला भाग काफी सपाट और धीमा महसूस होता है, सेकंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है और कॉमेडी ऑफ एरर से पैदा होने वाला कंफ्यूजन कई जगह दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहता है। डायलॉग्स में प्रयागराज का देसी फ्लेवर अच्छा लगता है, कुछ वन लाइनर्स जो होते हैं वो सचमुच मजेदार बन जाते हैं। हालांकि पूरी फिल्म का ट्रीटमेंट कई जगह जरूरत से ज्यादा लाउड महसूस होता है, डायरेक्टर किरदारों को अपेक्षित गहराई नहीं दे पाए जिसकी वजह से इमोशनल हिस्से असर छोड़ने में कमजोर पड़ जाते हैं। म्यूजिक की अगर बात की जाए तो कई संगीतकारों की मौजूदगी में हमने वही लगाया दिल, या फिर हमने हाँ गाना तो आपने सुना होगा, कई बार तो हमने भी प्ले किया है प्रोग्राम में। अरे ये वाला गाना है बादशाह देव सदाना, कुणाल वर्मा और साथियों की आवाज़ में।

0: करते
1: हमने वही लगाया। हाँ अब याद आया, हमने वही लगाया दिल, जहाँ क्या था। हाँ एक और गाना है इसका, रूप दी रानी। ये दो गाने याद रह जाते हैं। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर कई सीन्स में जरूरत से ज्यादा तेज सुनाई देता है, जबकि जिग्नोशु भट्टाचार्य जी की सिनेमाटोग्राफी जो एवरेज है, फिल्म में कई जगह लॉजिक की कमी जरूर खलती है, लेकिन दो घंटे से कम का इसका रन टाइम इसे बोझिल होने से बचा लेता है और एंटरटेनमेंट का जो स्ट्रीम है, प्रवाह है, वो बनाए रखता है। की बात है भाई, अभिनय की अगर बात की जाए तो पूरी फिल्म आयुष्मान खुराना के कंधों पर है, जिन्होंने उसे अपनी कमाल की कॉमिक डायनेमिक्स से मजबूती से उठाया है। किरदार में उनकी स्लैपस्टिक कॉमेडी मजेदार साबित होती है। अपर्णा के रोल में वामिका को फिल्म में अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है, पूरा फायदा उठाया। भूमिका को भी उन्होंने यादगार बनाया। सारा अली खान भी चंचल की नौटंकी करने वाली भूमिका में एकदम फिट बैठी है। जी हाँ, मुश्किलों से ही निजात पाने के लिए हंसना हंसाना बहुत जरूरी है और सुनते रहिए फिल्मी फ्राइडे। बाकी रकुल प्रीत ने भी नीलोफर की भूमिका के साथ न्याय किया है। विजय राज, तिग्मांशु धूलिया और विजय वशिष्ठ मनोरंजन के पलों में इजाफा करते हैं सहयोगी कास्ट में। आयशा रजा खूब हंसाती हैं बुआ के रोल में। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे हो क्यों देखें, वैसे आपकी अपनी मर्जी है, देखो या ना देखो, हमारा काम था फ्राई करना, वो हमने कर दिया। मगर फिर भी

रोमांटिक कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीनों के लिए ये वन टाइम बाच तो हो सकती है। वैसे थारी अपनी मर्जी, देखो या ना देखो, देखने के बाद हमें भी बताओ, है ना। हम तो आपके ही ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप है तो हम है, वरना कहां में इतना दम है। और ये 1.4 FM है।

0: दिस इज 100.4 FM.
1: और एक क्वेरी है हमारे एक दोस्त की, वो क्वेरी भी दूर कर देते हैं. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे पेज पर जो भी आप मैसेंजर के थ्रू अपने जवाब भेजते हैं, वो सिर्फ मैसेंजर हम यूज करते हैं आपके सिर्फ जवाबों के लिए. यानी एक बार आपने जवाब भेज दिया, उसके बाद आपको उस पर कोई भी वार्तालाप, कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है. तो हमारे जो दोस्त हमसे ये कहते हैं, एक दोस्त हैं जिनका जवाब उन्होंने पहले कुछ और भेजा, फिर उसके बाद दोबारा कुछ और भेज दिया, तिबारा कुछ और भेज दिया. हमारी ओर से जो सेल्फ रेस्पॉन्स आपके लिए मैसेज पहुंचता है ऑटोमेशन के माध्यम से, वो पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार पहुंचता है. आप 10 बार मैसेज कीजिएगा, पहली बार जब आप मैसेज करेंगे तभी आपके पास वो रिस्पांस वाला, ऑटोमेटिक रिस्पांस वाला मैसेज जाएगा. उसके बाद आप कुछ भी टाइप करके भेजते रहेंगे, दोबारा कोई मैसेज आपको 24 घंटे से पहले नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर आप कोई भी सवाल का जवाब हमें भेजते हैं, तो जो भी आपने जवाब आखिर में भेजा है वही हमें प्रीव्यू में शो होता है. इसलिए हम आपसे कहते हैं सिर्फ आपको एक बार ही जवाब भेजना है. गलत भेजें, सही भेजें, यानी जो भी भेजेंगे, जो लास्ट में भेजा है आपने वही हमें शो होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं. तो आपसे निवेदन है, इस बात को लेकर अपने दिल में अगर कुछ भी आपके शंका है, तो वो यही है कि आप, उसका समाधान यही है कि आप एक बार जवाब भेजें, या आखिर में जो भी आपने भेजा है हमें प्रीव्यू में वही शो होगा और हम वही समझेंगे, वही मानेंगे. इसलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल की बारी. सवाल वो जो आपको बना दे स्टार या सुपर स्टार. तैयार हो जाइएगा. वैसे आज के इस कार्यक्रम में हम इस फिल्म समीक्षा को छोड़ के जितने भी गाने प्ले किए हैं, आपने देखा होगा कि सभी की रिदम सेम है. महसूस किया? चलिए तो अब सवाल की बारी है. सवाल वो जो बना दे आपको स्टार या सुपर स्टार. हो जाइए तैयार मेरे सरकार. हाँ, सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना जवाब, नाम पता और अपना मोबाइल नंबर इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू. आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए और जो भी आप लास्ट में रखेंगे वही हमें शो होगा और वही माना जाएगा. तो चलिए बताइए फिल्म का नाम, ये गाना किस फिल्म का है, जल्दी से बताइए. और स्टार सबसे पहले बताइए, सुपरस्टार बन जाइए और बाकी बाद में जो बताएंगे वो सब स्टार कहलाएंगे.

जी आपको बताना है फिल्म का नाम सच मनी। आपके जवाबों का मुझे इंतजार है, मगर अभी तक तो कोई भी जवाब ना मिला। हमें मालूम है आप सर्च कर रहे हैं किसी भी सर्च इंजन पे, ढूंढ के देखिए, मिल जाए तो जल्दी से भेज दीजिए। पुनः एक बार आपको याद दिला दें दोस्तों कि जो भी आप आखिरी मैसेज हमें भेजेंगे वही प्रीव्यू में हमें शो होगा। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो चलिए अब तो चलना पड़ेगा। क्या कहा, समझ में ना आया, एक बार फिर से सुनवा दो। चलो हम एक बार फिर से प्ले कर देते हैं, सुन लीजिएगा। फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: अब हमें भी चलना पड़ेगा। हाँ, वक्त हुआ पूरा आज के फिल्म बी फ्राइडे का। होगी मुलाकात अगले हफ्ते ढेर सारी फिल्मी बातों के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन टेक वन 5 6 7 8 लाइट कैमरा एक्शन।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओ, लीजिए सुनिए अंशवाना सक्सेना के स्वर में ये लोकगीत।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
1: कार्यक्रम चित्रलोक में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए

और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयाँ, औषधियाँ, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है, और जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायिनी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है, हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ, प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं, पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें, जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें, जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है, और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चुचुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर।
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में। ये अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के

लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, ये अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और आज के हमारे आकाशवाणी के दीवाने हैं विमल वर्मा जी।
1: मैं विमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत से आकाशवाणी परिवार के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, नित नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। यूं तो आकाशवाणी के कई केंद्र भारतवर्ष में मौजूद हैं, लेकिन जो बात आकाशवाणी बरेली में है वह किसी अन्य केंद्र में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम उम्दा और लाजवाब किस्म के होते हैं। अगर मैं आकाशवाणी से अपने लगाव या जुड़ाव की बात करूं, तो मैं लगभग सन 2008 से जुड़ा हुआ हूं, और आकाशवाणी बरेली से जो मुझे प्यार मिला वो बहुत ही मेरे लिए सुखद पल के बराबर है। आकाशवाणी बरेली का जो प्रातः की सभा में कार्यक्रम आता है भक्ति संगीत, उससे हमें अपने अंदर ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाता है, जिसमें युवाओं को अपने करियर संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर, जो बच्चों के लिए बेहद मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही साथ कहानियाँ, चुटकुले आदि भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सुनने को मिलते हैं। और हमारी माँ बहनों के लिए, माताओं के लिए, या यूं कहें गृहणियों के लिए जो कार्यक्रम नारी संसार पेश किया जाता है वो एकदम लाजवाब होता है, क्योंकि घर में रहने के कारण हमारी महिलाएं हैं या बहनें हैं, अपना घरेलू काम भी करती हैं और साथ ही साथ

राजू चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल, संजीव गंगवार और इनके सभी साथी। आप है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्वनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाभी, ढींगरा और इनका पूरा परिवार। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। दिग्दर्शन और कविता गौड़ है मेरठ कैंट से। उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं और आप हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुर्जर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिख और इनके सभी साथी। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेमंड भांबिष्टे, अनिता भांबिष्टे और राहुल भांबिष्टे हमारे ये साथी हैं। सेक्टर नंबर 2 आवाज विकास कासखंड से पवन गौड़, सुयाश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्व। सहारनपुर से राधा रामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। टैगोरगढ़ नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनका पूरा परिवार। तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा क्षमा, शिवी मधुवाला प्रजापति, चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से और कमेंट करते हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्नी, आरुष मौर्य और दिनेश। नागपुर महाराष्ट्र से आप हैं कमल साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कल, रामगढ़ से निप्पी साहनी और इनके सभी साथी। तालुका निवासा कुप्टी महाराष्ट्र से हिंदराज रेडियो शतसंघ के सभी साथी। बंडू लोहार, पोपलघट, माया, चंद्रकला, देवीदास, हरिभाव, बेडबे और इनका पूरा परिवार। गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव मौर्य, चंद्र प्रकाश मौर्य, अजय राम निवास मौर्य और इनके सभी साथी। डेविड मौर्य, प्रिया मौर्य भी साथ में हैं। कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और इनका पूरा परिवार। अम्बेडकर चौक बाकोडी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज दमदाड़े। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और इनका पूरा परिवार। आप हैं कुल स्वामिनी रेडियो क्लब श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से अनिकेत सुंडवणे, शुभांगी श्रावण और अनिता बिडवे। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके सभी साथी। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। ग्राम बरेली, जिला बरेली ग्राम कोठा मक्खन से रिजवान अंसारी, अफरोज फारूक और इनके सभी साथी। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमपति, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एस के पप्पी और इनके सभी साथी। दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते धोतरजोड़ा आष्टी से। सैयद योनो, सैयद नोमान, तनवीर मसरा, सैयद निजामुद्दीन, राजकमल रेडियो श्रोतासंघ आष्टी जालना मराठवाना से। छबीलपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश और गायत्री कश्यप। आप हैं मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महेरकर, मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या, देवेश कुमार। ग्राम पंचायत बाकरगंज फरीदपुर से गंज टंडवाना उत्तर प्रदेश से माशा खेलू परवेज, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और इनके सभी साथी। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। सिंधौली, मीरगंज, बरेली वारसी क्लब के सभी साथी, जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान सौरभ, शाइना मेंडी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई जूही।

इकमाल और इमरान अहमद, सैयद मसरूर, शाइन हसन अक्सन, नाजिया आफिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब हसन, गांव कुमार हिडा सहारनपुर से, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबरी से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अवंतिका येले। आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। और कमेंट करते हैं डॉक्टर आर वी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, निवासी थाने के सामने अल्लाहगंज शाहजहांपुर से। तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म सीमा से ये गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, गुलजार के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

होता है। अब ये गीत आपने सीमा फिल्म से सुना, मोहम्मद रफी और शारदा की मिली जुली आवाजें थी। और आपको बता दें कि आपकी पसंद इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है नगीना, अनुराधा पौडवाल की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और सुनना चाहते हैं बुद्ध रेडियो लिसनर क्लब जिला भिंड मध्य प्रदेश से अनामदर्शी विश्वमित्र और इनके सभी साथी। और आप हैं उच्चपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आश्री शिवन्या, अनु गोस्वामी और इनका पूरा परिवार, एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, संतोषी, खुशी, नवनीत वर्मा, रवि वर्मा, प्रिया और चंचल कुमारी और इनका पूरा परिवार। आप हैं ग्राम ढकिया केसरपुर कलीनगर पीलीभीत यूपी के राजपूत रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबे राही मेराजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। और आप हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन और जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके सभी साथी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया और इनके सभी साथी। खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद वारासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन वारासा कमेंट किए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। और आप हैं शिरडी जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे और इनके सभी साथी। लहूडडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये साथी हैं भाकर पंजाब से रेहाना खान, पद्मा ढाकिज निपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभी शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और इनका पूरा परिवार। और आप हैं दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमभाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। आप ग्राम जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और कमेंट हमें मिला है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके सभी साथी। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु, नर्मदा पार्क मंगल बेढ़ा से आप हैं माशा आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके सभी साथी। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नस्रीन परवीन, राजी खान, बिट्टू, हिना कौसर और इनका पूरा परिवार। बहेड़ी से इश्तियाक अहमद अदरीसी और इनके तमाम साथी। बांडेवाली फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। अंबागढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं रिजवान खान, आयसा, सबीहा, अनस और रेहान। गांवहांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा और इनके सभी साथी। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू हद मिफ्रा नवाज, बेबी चाह, सादिया और इनका पूरा परिवार। टाटानगर जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल और जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया किशनगंज बिहार से हैं। और मुरादाबाद दूलापुर से आप हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और महरर दरवाजा इटासी, नबी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, शहनाज, सुहेल हसन, अनम, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। कमेंट करते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबियाने बादल, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। कमेंट मिला है धनौरी तेलीवाला से आप हैं निसार सलमानी, नौशा सलमानी, आलिया और आयान बाबू। और हमारे ये साथी हैं जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अराफात अदीब और कदीर चौधरी। उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बागतरिया, धाकड़ भोला बागतरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक बागतरिया का कमेंट है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का कमेंट मिला है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेश, राजेंद्र वर्मा, यश प्रयाण वर्मा और इनका पूरा परिवार। और आप सब हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोग्रा, वकार हैदर, कनीजा सकीना, हसीना दिलसाद और इनके साथ ही। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके सभी साथी। बिल्लाम गेट कासगंज से अहमद असलम सैफी, जयबुन्निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और कमेंट करते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा लानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और इनके सभी साथी। आप हैं दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर रानू, कृष्णा और छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू मटकू हाँ और विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पिलोमा और डॉक्टर ईशानी,
سیکٹر

धारा जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से हैं, लसूड़िया नरसिंहगल राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमलपरी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी है, गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी आयत, मोहम्मद इंतजार और इनके सभी साथी, और आकूट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के संजीव डाबेराव हैं। कमेंट मिला है अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल का, धमदा सुखरी कला से, और कोहका भिलाई से आप उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल हैं, और जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से आपके इस कमेंट पर गाना प्ले करेंगे। फिलहाल नगीना फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना आप सब दोस्तों के नाम।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम में आपकी पसंद आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। अगला गाना आपको आई मिलन की बेला फिल्म से सुनवाते हैं। लता जी की आवाज है और इस गीत को पसंद कर रहे हैं आप सब। आप हैं जज जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार। 199 कमेंट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 225 कमेंट इस समय हमारे पोर्टल पर शो हो रहे हैं। हमारे ये साथी हैं, कौन कौन है भाई? पहली बार आप कार्यक्रम में आए हैं तो आप सुन रहे हैं अबे। आप हैं गौरव, मानसी, अनिल, कविता अरोरा, मिनिस्ट्री रोड नई दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट मोती नगर से, डाकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदरकर, आरब और अर्पिता हैं, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे का कमेंट मिला है। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। आप हैं अलकनाथ मंदिर के सामने से बेचूलाल गंगवार, गुडी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, ईला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित और राज महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी, रॉबिन भाई और इनके सभी साथी। ग्राम देगांव तालुका पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेयात, रंजीत थोरात और इनका पूरा थोरात परिवार। बरेली से सुन रहे हैं, कौन कौन है भैया? गौरव मदान जी हैं, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके सभी साथी, घीसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अश्मिता, सौरभ कुणाल दिलवाले, राजपुर मध्य प्रदेश से, गणेशपुर गंडनवरा इटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना समा, हिना, रजिया सुल्ताना अंसारी और इनके परिवारजन। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनबा, मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद राणा, राहत अली, वकील अहमद, भोजपुर तका सहारनपुर से हैं, चक 15 PS गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जौसन, सर्वजीत कौर जौसन, गुरबर्न बेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जौसन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोशन, वोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से आप हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाठा और इनके सभी साथी, बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, रावर करनाल से ज्ञान भूषण,

कर्माक सोमनाथ कालिया, संघा मकर लोड से पनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, फरीदपुर बरेली नगरिया विक्रम से राज सिंह अनारकली, यश कुमारी, रूपेंद्र कुमार सिंह, पूजा प्रजापति, वंदना, दुष्यंत और प्रियंका प्रजापति, गार्गी और भोलू, नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी, नंदिनी कुमारी, मुजफ्फरपुर बिहार से, अंबई तालुका से लोड, छत्रपति, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली, अनिल प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी, जोधपुर, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान, हबीबुर रहमान, सागर लखनऊ दौन मध्य प्रदेश से लाडलाजी चौबे, लाडलीजी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बाजार, नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पीबी कुलथे, भक्कल पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान और इनके सभी साथी, शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा, नईम इदरीसी, नदीम और असद बाबू, शंकरपुर उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत श्री यादव, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं, मालवा रेडियो श्रोता संघ गुल बालोद आलूट के सभी साथी, विक्रम मालवीय, रचना, कमलाबाई, वंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और उनका पूरा मालवीय परिवार, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, दूलापुर मुरादाबाद से, भटुनी, मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश श्रेष्ठी और इनका पूरा मेहर परिवार, टांडा शेरगढ़ से आप हैं इकरार इदरीसी, सोनी इदरीसी, नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और बिलेस डिकेस्ट्रो, वटिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, लाल कुर्ती रुड़कीगंज से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध, ध्यानपाल कश्यप, धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, संजय अनमोल, अंश कश्यप, करिश्मा और मुस्कान कश्यप, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से, जवाहर नगर उदयपुर से आप हैं बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, भारती, विनीत और मिथिल नाचानी, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, छोटू पवार, शंकरलाल गंगरांडे, बनीता गंगरांडे, मोहम्मद हसनैन पवार और इनका पूरा परिवार, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, परवीन, शहनाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और इनके परिवारी जन, एवर ग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चतन मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, राज पैलेस मरुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, आमा खोंडरा रेंगाखार से कबीरधाम जिला के हमारे साथी हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया और गीत सरगम नेताम, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, भेड़ाघाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह और वेदा सिंह, बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुजाता पीहू और दिया चौरसिया, सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा, शिवानी चौरसिया, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से भगवान सिंह यादव, अर्पित देव सिंह मजरा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से, प्रेमलागंज आलूट रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशद सिंह राहुल कस्बा बराना अंबाला से, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना और इनके सभी साथी, ये मैसेज तो हमने शामिल कर लिया है भैया आपका।
जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु खोरवाल कहां।

से हैं, जगह का नाम आपने लिखा नहीं है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता खबर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनका पूरा परिवार। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत, रमेश साहू, तारा, विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, ऋषिवन लाल, किशन कुमार, सुनीता देवी, त्रिलोक कुमार, रणजीत सिंह साहू और इनके सभी साथी। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दीवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मुरादगढ़ करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज। हमारे ये साथी हैं कहलगांव पूरब टोला से, कौन कौन है भाई आपका नाम? टीके मंडल जी हैं, बाकी तो और कुछ लिखा नहीं है। बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से। और गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बेजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा अर्जुन, नव्या बेजारनिया। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी शालिनी, तिवंशी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और इनका पूरा परिवार। हीरा देवी हुजदार काठमांडू से और साथ में हैं आपके गणेश प्रसाद हुजदार और इनके सभी साथी। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से हैं। और चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू और इनका पूरा परिवार। शाहजीनगर देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से ललिता, आशा रानी, संजना परी, आराध्या खड़ से वैष्णवी कार्तिक, देविका चौधरी, स्वाति प्रिया चौधरी और इनका पूरा परिवार। पुराना तालाब डोबराव से बलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातिमा राज अंसारी। एटा रोड गंजडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, डॉक्टर डी एच बच्चन, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश और योगेश और युद्धव कड़वासरा गांव कलाना राजस्थान से हैं। दिवाकर दीवाना, अशोक कुमार, रंजना कुमारी, शिवम कुमार, मनीष कुमार, आरती कुमारी कहलगांव पूरब टोला से। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन बन्ने, दानिश अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। करेली पुरानी मस्जिद से सगीर अहमद जी हैं। और पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा हैं। आप हैं उदयपुर भोजपुरा जिला बरेली से नाजिम अली, मोहम्मद हुसैफ अली, अदीबा फातिमा और इनके जवानूर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार, लोकेश जोशी, बेबी बेदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफर डावर, चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और क्रिस्टी पटवा। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से खरगोन सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगदास और कोई साथी हैं। मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह और इनका पूरा परिवार। खलमंडी खुर्द झालावाड़ से अनूप सिंह नातव, छत्तीसगढ़ डोगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान अंसारी गंज जंडवारा से है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। सिराजपुर सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद कासिफ, कमर, मोहम्मद आकिम, मोहम्मद शाकिब, नाज प्रवीण और इनका पूरा परिवार। मोहम्मद कैशर शमसी, अजीम सलीम शमसी, रजिया शमसी कहां से हैं, जगह का नाम आपने लिखा नहीं। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पटेलिया, पलेरा टीकमगढ़ से, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप है मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं। और ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। कोल्हापुर नांदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े। जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य पुराना शहर कटरा चांदखा से।
मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख हसन हसमस इनाया शानूर।

ताज मोहम्मद अबानूर और इनके सभी साथी। बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी भाभिया, निवेश और नियति कुमारी। कमेंट मिला है पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजौरिया और गुड्डू का। माघी राम सैनी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से कमेंट किए हैं। कमेंट करते हैं मोहल्ला गढ़िया बरेली मस्जिद के पास से कैसर अजीम सलीम रजिया शमसी। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सबकाल, आशा सोनिया और विशाल सबकाल का कमेंट है। शिवाजी नगर बडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर इंदिराबाई, चकुली ताई खोबरखेड़े, दीपाली सुनेना, स्वराज तनोज। मऊ सरखी जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर यादव, ममता रोनित और बेबी बानी का। कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर मान कहां से हैं? अमरगढ़ सादुल शहर से। जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु खोरवाल होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं। बुलढाणा राजमाता नगर से आप हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश और आकांक्षा करवा। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श देवाकर, लव देवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा देवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका देवाकर। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा का कमेंट है। रजौनी महोबा बुंदेलखंड से आप हैं उदयवान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमरेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, आशिक हुसैन, अल्ताफ हुसैन अंसारी और मुन्ना अंसारी। राजधानी रायपुर से आप हैं नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके सभी साथी। आप हैं कैलाश चंद सोनी, गोविंद, उत्तम कुमार सोनी, बीकानेर राजस्थान से और रघुवीर नगर से आप हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। यहां तक 232 कमेंट शामिल हुए। फिल्म का नाम आई मिलन की बेला और गाना है ये।

आकाशवाणी बरेली से एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर इस समय आप आपकी पसंद के गाने सुन रहे हैं। अगला गाना आपको सुनवाने वाले हैं, फिल्म का नाम बिन फेरे हम तेरे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और इस गीत को सुनना चाहते हैं देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, कनुलाल रजक, मुरली क्षत्रिय और इनके सभी साथी। और आप हैं सुरेंद्र पाल, विजेंद्र पाल, धर्मेंद्र कुमार, गांव बेलादांडी, पैनिया, रामकृष्ण, जिला पीलीभीत से। कोई और साथी तो नहीं है? जी ना। आप हैं चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, शालू गौतम और इनके सभी साथी। और कवाही सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमरता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और इनका पूरा परिवार। और आप हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इरफान खान और इनके सभी साथी। और गली सिकलापुर से रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ तक 234 कमेंट आ चुके हैं। अब जब कोई दोस्त कमेंट भेजेंगे नहीं हमें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कौन से साथी का कमेंट आया है। वैसे हमारी ओर से पूरी कोशिश रहती है कि अधिकतम श्रोताओं के कमेंट शामिल हों। तो चलिए, फिल्म बिन फेरे हम तेरे का ये गाना आप सबके नाम करते हैं और जो भी मैसेज जो भी कमेंट हमें मिलते रहेंगे शामिल करते रहेंगे।

दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए।

मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना की आवाज़ों में फिल्म बिन फेरे हम तेरे से ये गीत अभी आपने सुना और अब चलना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते कुछ और दोस्तों के मैसेज कमेंट हमें मिले हैं तो उनको शामिल कर लेते हैं। ग्राम सनौतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद कुमार, राजकुमार और प्रिंस चंदेल, और हमारे ये जो साथी हैं वो कौन हैं, अभी तो आपका नाम हमें शो हो रहा था, आप हैं कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य, और गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा, गौरव मौर्य, चंद्रप्रकाश मौर्य और इनके सभी साथी। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हीर रांझा से यह गाना, आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और इनका पूरा राठौर परिवार। यहां तक 241 कमेंट आ चुके हैं कार्यक्रम में और अभी भी एक दो कमेंट और मिलेंगे, एक दो क्या जितने भी कमेंट मिलेंगे 10:57 तक हम सभी कमेंट को शामिल करते जाएंगे, बशर्ते वो आपके कमेंट शामिल नहीं हुए हों। तो चलिए फिल्म हीर रांझा का ये गाना आप सबके नाम करते हैं और इस दौरान आने वाले कमेंट्स को भी बीच बीच में हम पढ़ते रहेंगे। तो लीजिए सुनिए ये गाना, और अभी कमेंट की संख्या 242 हो चुके हैं, देखते हैं कि अभी कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और अगर उनका कमेंट शामिल नहीं हुआ है प्रोग्राम में तो अभी आपका कमेंट शामिल कर लेंगे। आप हैं ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सदानंद यादव, विवेकानंद, नितेश और इनके सभी साथी, और तिगड़ी खसपा शीजगढ़ से शाहरुख खान, शोएब खान, हाशिम खान, अरहम बाबू, किश्बा नूर का भी ये कमेंट अभी अभी मिला है। तो लीजिए सुनिए फिल्म हीर रांझा से ये गाना।

और अब श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में 243 कमेंट के साथ हमें भी चलना पड़ेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए और हमें सेवा का अवसर देने के लिए। आज के आपकी पसंद कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में 23वां अलंकरण समारोह और रुस्तम जी की स्मृति व्याख्यान का प्रसारण, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।
1: समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध,
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएनट्रू के साथ आकाशवाणी की ओर से। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके। उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार

0: पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah. They have all taken the seats on the dais, and now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And right now the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान

शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर

0: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तटीय रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
4: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
3: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
5: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता

0: न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में BSF अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, CCTV कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी BSF ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। BSF की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी BSF ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। BSF में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। BSF के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। BSF के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी BSF प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में BSF के योगदानों को जन जन तक पहुंचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में BSF के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
2: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त BSF परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
1: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर BSF टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
3: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
4: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved.

0: and they'll be receiving the award from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
1: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. Tabhi naxaliyon dwara bichhai gayi ID ki chapet mein aakar up nirikshak Mahendra Singh buri tarah zakhmi ho gaye. Parantu ab is bahadur prahari ne na sirf aakhri saans tak naxaliyon se loha liya balki apne saathiyon ko surakshit bachane mein bhi kamyab rahe. Adamya sahas, shaurya, parakram evam uch koti ki kartavya parayanta ke liye बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया. पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धन पत्नी श्रीमती राजवती.

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उपकमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियो तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व

को संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021

2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता, शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल, उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह अपने अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई।

और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा करकर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है, इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है, मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करंसी।

का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं, मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और इस सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति

0: बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं। इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: श्री मनीष अग्रवाल विशेष महानिदेशक डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार।
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति

0: आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कॉमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।

0: जी विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। ये आकाशवाणी है।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी

0: श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
1: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
1: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई,
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी,
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी,
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छान कर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और

0: समय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने

0: पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
1: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
2: सालू मर्दा तिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा, आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ हो।

0: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। ठीक है ना।
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
5: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
5: हाँ,
4: ये देखो
5: कितना छोटा था ना, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा तिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
5: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
8: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
1: किसी पौधे को देखिए

0: उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
1: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गति

0: विधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें, जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुगरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।
1: पहले लोकायतन प्रोग्राम होता था एक शाम को 5:15 बजे से। तो अगर ममता तुमने रमई काका का नाम सुना होगा,
2: बिल्कुल,
1: दाई का नाम सुना होगा, तो वो बहरे बाबा जो था वो लाइव होता था। इधर अनाउंसर बूथ होता था तो उसमें हम बैठे, अब फेडर दिया उनको, उधर रमई काका खड़े, बहरे बाबा और दाई खड़ी है। एक एक डिस्टेंस वो लोग लेते थे अपना, कि तुम इतनी दूर खड़े हो, तुम इतनी दूर हो, कैसे पास आके कैसे बोलना है, तो माइक के करीब कैसे आते थे। लाइव होता था 15-20 मिनट 25 मिनट, मतलब उनका तो बयान करना ही मुश्किल है।
2: ये लाइव ब्रॉडकास्ट की बात करें, क्योंकि हमारे समय में तो सब चीज रिकॉर्डेड, चाहे नाटक हो, संगीत हो, पर आपके समय में शारदा जी या नीना जी लाइव संगीत, क्लासिकल म्यूजिक,
1: सारा लाइव होता था ममता।
2: तो कितना टेंशन रहता होगा कि यदि कलाकार समय पे नहीं आया, या
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होता था।
3: बड़ी पाबंदी और बड़े मनोयोग से लोग,
1: हर आदमी अपने आप में तत्पर रहता था और समय से आ जाएगा। एक से एक बड़े आर्टिस्ट होते थे, लेकिन
2: नाटक भी जो होते थे वो उसमें जो ध्वनि प्रभाव डालना होता था वो सब लाइव ही होता था,
1: सब लाइव होता था।
3: देखिए ममता जी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो एक ऐसा समय था जो बहुत चुनौती का समय था। एक बार मुझे याद है लखनऊ में एक ड्रामा प्रसारित होना था और उसमें बादल को घड़घड़ाने की आवाज देनी थी और कोई
1: उसका इफेक्ट कैसे दिया था,
3: ऐसा कोई हमारे पास साउंड इफेक्ट नहीं था कि हम बादलों की आवाज सुनाए श्रोताओं को
2: जी।
3: तो एक साहब के पास एक टीन का टुकड़ा था, तो करके उसको बजा दिया और सुनने के बाद लगा कि अरे वाकई में बादल गड़गड़ा रहे हैं,
1: इस तरह से इफेक्ट देते थे।
3: ऐसा लोग करते थे, सोचते थे और वो सही भी जाता। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ का केंद्र दो बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, एक तो नाटक के लिए और दूसरा शास्त्रीय संगीत के लिए। तो ये दोनों ही चीजें अपने चरम पर थी और इतने अच्छे, इतने सशक्त और इतने उदाहरण देने वाले नाटक प्रसारित यहाँ से हुए और वो सब नाटक लाइव होते थे। सोचिए जरा, नाटकों में एक नाटक में कितने लोग होते हैं, उनका समायोजन करना, उनको सही समय से माइक्रोफोन पे आना जाना, साउंड इफेक्ट्स देना, सब कुछ साथ साथ चलता था
2: जी।
3: तो ये लखनऊ की बहुत बड़ी विशेषता बरसों बनी रही।
2: और शास्त्रीय संगीत में भी सब कुछ, इतने बड़े बड़े कलाकार,
1: इतने बड़े बड़े कलाकार थे। और शास्त्रीय संगीत में जैसे रात में 10:30 का जो आइटम होता था उसमें भी लाइव होता था
2: जी।
1: बहुत बार होता था बाहर से आते थे, शायद उस्ताद निसार हुसैन खान थे तो वो आते थे।

0: उसमें क्या मतलब नए नए आए थे तो नेचुरली यूनिवर्सिटी से सीधे इधर आ गए थे,
1: जी
0: तो ड्यूटी ऑफिसर एक थे, उन्होंने कहा वो छड़ी लेकर आते हैं, अगर अनाउंसर ने थोड़ा गलती करी तो उसे उसकी पिटाई करते
1: कई बार सुना है कि यदि उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कलाकार बहुत नाराज हो जाया करते थे।
2: हाँ, एक बात और बहुत परंपरा में रही है आकाशवाणी लखनऊ के लिए, वो ये कि बड़े बड़े कलाकारों को स्टूडियो में आमंत्रित करना।
0: हाँ,
2: जिस समय मैं आई थी आकाशवाणी लखनऊ में, तो उस समय एक बहुत अच्छा अवसर हमको मिला, बिस्मिल्लाह खान साहब को नैयर साहब ने बुलाया था
1: जी।
2: अब आप सोचिए, जो हम लोग बहुत जूनियर थे, बड़े उत्तेजित थे कि अरे उनको हम देखेंगे, उनकी शहनाई हम सुनेंगे। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही स्टूडियो था, लेकिन उसका प्रारूप दूसरा था और हम लोग जो थे आगे इकट्ठा हो गए। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो बड़ा नक्शा मार रहे थे कि नहीं आप पीछे उठो, आप उठो, आप उठो। हम लोग चुपके से पता नहीं कैसे मौका मिला और हम लोग स्टूडियो में पहुंच गए और फर्श पर ऐसे ही बैठ गए। तीन चार महिलाएं हम लोग थे, बैठ गए। खान साहब सामने बैठे थे, साजिंदे बैठे हुए थे। तो खान साहब ने थोड़ी देर बाद कहा, बिटिया इधर कालीन पर आ जाओ। आप समझिए कि हम लोग तो गदगद लपक के हम लोग कालीन पे बैठे और यूं अकड़े बैठे रहे कि देखिए हम तो पहुंच गए।
1: जो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो वो तो सोच रहे होंगे भाई इन लोगों तो सोने पे।
2: फिर जो उन्होंने कजरी ममता सुनाई है बनारस की, बस क्या कहने।
0: और बिस्मिल्लाह खान साहब सबसे बाद में गुंजुटी शहनाई का वो गीत जरूर बजाते थे।
3: लोगों की फरमाइश आई है गुंजुटी शहनाई, और उसमें दिल का खिलौना है टूट गया।

0: इतने सीधे और इतने सिंपल थे। ये लखनऊ फेस्टिवल की बात बता रहे हैं तुम्हें, बेगम हजरत महल पार्क में होता था तब, खान साहब का प्रोग्राम था, अनाउंसर हम थे वहाँ पर।
1: जी जी हाँ, वही तो, मैं पूछना चाहती थी हाँ, कि आप लोग मंच पे बहुत सारे प्रोग्राम करते
0: बहुत करते थे जी, जी। तो खान साहब का प्रोग्राम था, वो आए लेट नाइट, ऐसे आर्टिस्ट को हमेशा लेट नाइट रखते हैं, सीनियर मोस्ट और जो इस तरह के होते हैं, तो सारे दर्शक बंधे रहे उनके आकर्षण में। तो खान साहब आए, बिटिया हमारा नंबर का अब भूख लगी ये वर्डिंग्स देंगे मतलब आज की तारीख में हम सोचते हैं कि किस नाम के, किस फेम के वो थे, और कितना हमारा सौभाग्य कि हमने उनका अनाउंसमेंट भी किया और उन्होंने ऐसे कहा। उटको की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम अनाउंसर, तो उसमें यामिनी कृष्णमूर्ति जी आई थी
1: जी।
0: और भरतनाट्यम का अगर थोड़ा भी आपको पता होगा तो उनका 2.5 मिनट 3 मिनट, उसके बाद उनकी इधर से एंट्री उधर से एग्जिट, फटाक फटाक फटाक फटाक होती है उनकी, और वैसे ही अनाउंसमेंट हम कर रहे थे। रविंद्रालय में था पहले, तो ऑफ दी स्टेज अनाउंसमेंट हुआ करते थे, रविंद्रालय में पीछे ही थे, और जिस समय उनका प्रोग्राम खत्म हुआ है तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो आई, उनका आपने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया, प्लीज आप अपनी स्क्रिप्ट हमें दे देंगे हिंदी वाली
1: जी।
0: तो वो हिंदी स्क्रिप्ट कहने लगे, कोई इतना अच्छा और इतना सटीक नहीं करता है
1: जी।
0: तो एक वो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हमारी स्क्रिप्ट लेके गई थी, दूसरी राधा राजा रेड्डी का नाम सुना होगा, वो हमारी स्क्रिप्ट लेकर के गए थे हिंदी, जो अनाउंसमेंट हमने के, दोनों उटको की कॉन्फ्रेंस थी
1: जी, वो। जी। हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नीना जी, आपके पसंद का कोई गीत जो आप सुनना चाहें श्रोताओं को?
0: कुछ गाने ममता ऐसे होते हैं ना, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, जैसे ही बजाते थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हम समझ गए आज ड्यूटी पे वही
1: रजनीगंधा फूल तुम्हारे जहाँ आया वहाँ पे नीना जी होंगी
0: हाँ, उस टाइप के जो गाने बजेंगे तो पता चले हाँ वही ड्यूटी पे।

0: नीना जी, आपका जो समर्पण था अपने कार्य के प्रति, आपकी निष्ठा और कितना मेहनत करती रही होंगी आप इसके पीछे, ये दिखाता है। क्योंकि आजकल लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं और
1: नहीं नहीं नहीं पहले तो ऐसा होता था, चाहे स्टूडियो का अनाउंसमेंट हो, मान लीजिए सुबह की सभा है, दिन की सभा है, शाम की सभा, सबके अनाउंसमेंट हम लोग लिखते थे, बाकायदा फाइल होती थी ड्यूटी रूम में, उस फाइल में वो लगते थे, 24 घंटे एडवांस लिख करके हम लोग जाते थे और फिर उसके बाद वो पेक्सको के पास भी जाते थे।
0: एक प्रक्रिया थी,
1: फिर वो दूसरे दिन सुबह हमको बिफोर ब्रॉडकास्ट देते थे, जब हम ट्रांसमिशन के लिए आते थे तब हम अपना अनाउंसमेंट निकालते थे और करते थे।
0: हर स्तर पर एक चेक पॉइंट होता था जिससे कि जो भी प्रसारण हो
1: बिल्कुल
0: उत्कृष्ट श्रेणी का हो और उसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, गलतियां ना।
1: और उस वक्त केंद्र निदेशक भी जितने भी थे, जैसे पी माथुर जी थे, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का जब हमने किया था, जैसे ही हम सीढ़ी से उतरे वैसे ही पी माथुर जी ने, जैसे कोई घर के बच्चे को मतलब प्रोत्साहित करता, शाबाशी देता, वेल डन नीना, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने,
0: प्रोत्साहन मिलना।
1: उस तरह से इसी तरह से अनाउंसमेंट पे भी होता था, जो रेडियो में बोल रहे हैं तो पूरी लिसनिंग होती थी, ये नहीं था कि लिसनिंग ना हो, आखिरी शब्द जो जय हिंद का बोला जाता है वहां तक की लिसनिंग होती थी। अब यहाँ इसी संदर्भ में कहेंगे कि रेडियो सुनने की तो पुरानी आदत है, 12 बजे तक हमारा रेडियो बजता है अब भी, तो जिस समय यहाँ अनाउंसर्स बोलते हैं, कई बार हम बोलते भी, जय हिंद में हम लोगों को ये कहा गया कि जय हिंद आप नमस्ते कर रहे हैं जाते समय, जैसे अच्छा गुड बाय, हाँ, नमस्ते, इससे आजकल जय हिंद करेंगे इतना जोर से मालूम दे रहा है कि
0: अच्छा जय हिंद। और आप उसको रात के हिसाब से सॉफ्टली बोलते रहे होंगे
1: हमेशा, रात के हिसाब से। ट्रांसमिशन की खासियत ये होती थी कि उसी मूड में म्यूजिक जाता जाता था, चाहे वो फिल्मी गाने हो चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, राग आप देखिए अभी हम तब नहीं कह सकते, लेकिन पहले ये था कि मॉर्निंग में अगर इवन देन फिलर तक हम लोग इवनिंग राग का बजा दे तो फट से फोन आ जाता था कि ये
2: गलत
1: कैसे बजा, ये क्या कर दिया अनाउंसर ने, तो हम लोग छाट के फिलर, आप समझती होंगी मतलब दो प्रोग्राम के बीच में अगर अंतर हो गया तो पूरक संगीत जो बज रहा है, तो वो हम लोग उस तरह का। और अब शायद ख्याल रखते
0: हैं कि नहीं जाता है, लेकिन जितना शायद आप लोगों ने मेहनत की इसके पीछे,
1: मेहनत भी करी और जानने की कोशिश भी करी कौन सा राग किस समय का है, इसको तो जानना चाहिए इतना, जब आप बैठे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे एक से एक कलाकार है, एक से एक आपके पास आइटम्स हैं और एक आपको करना है, तो आपको उतना ज्ञान तो होना चाहिए।
0: जी, अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना और जानकारी लेते रहना बहुत,
1: छोटी छोटी सी बातें होती कि अगर सितार बज रहा है, मान लीजिए टेप टूट गया, अब इतने बड़े आर्टिस्ट का वो बज रहा, टेप टूट गया, उतनी देर तो फिलर बजाएंगे ना, जल्दी जल्दी जोड़ेंगे।

0: उसको तो फिलर सितार का नहीं बजेगा, कभी दूसरा म्यूजिक बजेगा।
1: और वो भी
2: ये बहुत छोटी छोटी बातें
0: छोटी
2: थी
0: छोटी सी चीजें
2: जिनके
0: होती थी
2: ऊपर
0: जिनको।
2: पूरा ध्यान दिया जाता था, और उस समय यदि ऐसी कोई गलती हो भी जाती थी तो फिर ये लगता था कि अब कल तो मेरी पेशी होनी है।
0: हाँ
1: तो पेशी
0: तो
1: कभी किसी की हुई कि नहीं आप दोनों में
2: वो
1: से?
2: बिल्कुल, अरे बिल्कुल पेशी
0: अगर
2: कभी
0: कभी
2: हो
0: कोई
2: भी सकती है,
0: हो
2: ऐसी
0: भी
2: बात
0: सकती
2: नहीं
0: ऐसे
2: है।
0: नहीं है जी।
2: लेकिन मैं नीना जी को फिर स्टूडियो से निकाल के बाहर ला रही हूँ।
0: वो भी मिला रही है।
2: हाँ बाहर नहीं, वो भी मैं नहीं ला रही हूँ। देखिए
0: हाँ
2: बाहर इसलिए ला रही हूँ कि
0: हाँ
2: हमारे श्रोता ये बात जान जाए कि तब रेडियो से खतों का जुड़ाव बहुत जबरदस्त था।
1: जी आज भी है,
2: आज
1: पर
2: भी
1: उस वक्त का
2: वो,
1: जमाना तो और ही
2: मैं
1: था।
2: उस वक्त की बात कर रही हूँ जब सैकड़ों में चिट्ठियां आती थी।
0: सैकड़ों में हजारों में कही है।
2: हजार नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया कि लोग ये ना समझे कि ज्यादा
0: नहीं
2: बोल रही
0: नहीं
2: है।
0: बहुत चिट्ठियां
2: नहीं,
0: आती थी।
2: बहुत चिट्ठियां आती थी, और हमारे कार्यक्रम को सुनकर उस पर टिप्पणी करना, उसकी अच्छी बुरी बात का जिक्र करना, ये श्रोता बड़ी तत्परता से करते थे।
0: बहुत
2: और उनके खतों से हम लोग इस कदर वाकिफ होते थे कि हमें लगता था कि हाँ ये श्रोता की ये बात सही है, तो
0: उस पे अमल किया जाता
2: अमल
0: था।
2: किया जाता था। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता था सुबह 6:50 पे, सवेरे सवेरे। तो उस समय मैं हर दिन शाम को एक नई स्क्रिप्ट 4.5 मिनट की लिख कर रिकॉर्ड करके ड्यूटी रूम में जमा करती थी।
1: रोज आप लिखती थी,
2: रोज पूरी कोशिश होती थी कि मैं रिपीट ना करूं, पूरी कोशिश होती थी। जब
0: पूरी रजिस्टर पे एंट्री
2: पर
0: होती थी, बाकायदा
2: बाकायदा एंट्री
0: क्यू
2: होती
0: शीट
2: थी
0: पे
2: उसमें
0: होती थी,
1: जी। और
0: नंबर
1: उसे
2: लिखा
1: पढ़ता
2: जाता
1: कौन
2: था।
1: था?
2: तो इस कार्यक्रम की एक मैं विशेष बात बता रही हूँ, बड़ी मजे की है।
1: जी।
2: एक श्रोता का पत्र आया, उन्होंने कहा मैडम आप आकाशवाणी को छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ मिल जाइए, हमारे पास गाड़ी है, हम लोग गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आप बताने वाली हैं, हम गाड़ी चलाने वाले,
1: हाँ।
2: खूब पैसा कमाएंगे। तो हमने कहा ये भाई इनका प्रस्ताव तो बड़ा जबरदस्त है, मगर उनको हमें जवाब तो देना ही था। तो हमने कहा देखिए हम रेडियो में हैं, स्वांतः सुखाय, नहीं मतलब हमको सबके लिए सब कुछ करना है, इसलिए हम जहां हैं वहीं ठीक है, आप अपना काम करिए।
1: बहुजन
2: तो
1: हिताय बहुजन सुखाय के लिए आपका
2: हाँ,
1: गुजर।
2: ये हमारा काम जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप अपना काम करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये खत जो उस समय होते थे बहुत बहुमूल्य होते थे।
1: अपनी बातचीत में हम अब गीत संगीत का भी तड़का देना चाहेंगे, तो शादा जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: ममता जी दीदार का आप कोई भी गाना बजा दीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शोले का कोई गाना बजा दीजिए बहुत अच्छा लगेगा, ये
0: शोले का
2: रेडियो
0: गाना बजा दीजिए, बसंती को
2: हाँ
0: बहुत अच्छा
2: बहुत अच्छा लगता है,
0: लगता
2: बहुत अच्छा लगता है।
1: वही छेड़ दिया नीना जी ने शारदा जी
2: बिल्कुल
1: को।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। श्री शाह ने सुरक्षा से जुड़े उभरते खतरों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजना

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। दोस्तों, आइए सुनते हैं आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के अनुरोध गीत में। आपके ढेर सारे अनुरोध भरे पत्रों को लेकर हम आपकी खिदमत, आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो बस अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ हाँ, इतना ज्यादा नहीं कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे हैं। तो चलिए, अगर आप फोन के माध्यम से हमें सुन रहे हैं तब भी अपने ईयरफोन का जो वॉल्यूम है वो बैलेंस रखिएगा और बस आइए सुरीले सफर पर चलते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये सुरीला सफर आपको पसंद आएगा। तो आज के

प्रोग्राम का आगाज करते हुए आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है सीता और गीता। मन्ना डे और आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने। सही है, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अन्नाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। तो ये जो गाना है आप सबके नाम करते हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, बड़ा बाबू गांव सुपाई साई से आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन बी, और परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और इनका पूरा परिवार, मौला हलवायान, शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, राजी परवीन, बिटू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुज्ताबा खान, रऊब भाई, शाहिद भाई और इनके सभी साथी, गांधी बाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनका पूरा कटनकर परिवार। तो आप सबके नाम सीता और गीता फिल्म से ये गाना।

0: अरे लड़के एक कदम पीछे।
1: अरे बैठ।
0: झूम के पीछे घूम और नचने भाली।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: अरे लोग बजाएंगे।

ये आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है कारवां। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सबने सुना चाहा है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनू मदीबा और दानिश अंसारी, सरिमपुर बक्सर से आसमा खातून, राज एस डी अंसारी, मेहताब आफ्ताब और बेहराज अंसारी, तिबरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र और गजेंद्र मरकाम, अजीत नगर मलूट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और इनका पूरा परिवार। आप डोंगर गांव से हैं, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तो आइए सुनते हैं फिल्म कारवां से यह गाना।

आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। फिल्म अनोखी रात का यह गाना आशा भोसले और सखियों की आवाजों में बोल इंदिवर ने लिखे हैं और धुन बनाई है रोशन डे। आप सबके नाम करते हैं ये गाना। हाँ, बरेली जंक्शन से सोनू मिश्रा, वीरेश सिंह चौहान, शानू चौहान, अंकित चौहान और इनके सभी साथी यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और इनका पूरा मालाकार परिवार, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और इनके तमाम हमरवा, और महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। ये मैसेज, ये पत्र हमें मिला है। आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान कहां से हैं, करोला मुरादाबाद से, और सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी और इनके तमाम हमरवा। तो सुनिए अनोखी रात फिल्म का ये गाना आप सबकी नजर।

जी हाँ दोस्तों, इस समय आप धुआंधार अनुरोध गीत सुन रहे हैं और अगला गाना आपको समाधि फिल्म से सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है इस गीत में और गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, आरडी वर्मन साहब ने म्यूजिक डायरेक्शन किया है और आप सबके नाम करते हैं गाना। कस्बा शीशगढ़ बरेली से आप हैं इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम नदीम इदरीसी और इनका पूरा परिवार। लचनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी। प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और इनका पूरा परिवार। और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। तो लीजिए सुनिए फिल्म समाधि से ये गाना।

0: बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है।
1: जी हाँ, अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से। अगला गाना आपको सुनवाएंगे कसौटी फिल्म से, किशोर कुमार साहब और साथियों की आवाजें हैं। फूलबाग किला छावनी बरेली से शोभित श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, राज नितिन श्रीवास्तव, रानी सोमवती, रोहन श्रीवास्तव और इनके सभी साथी हैं इस गीत में। मोला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से, विनय वर्मा, विमल वर्मा और इनके तमाम हम नवा हैं। और आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से, पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, बंटी, रूबी भारती, रचना, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। चलिए तो आप सबके नाम फिल्म कसौटी से ये गाना।

शाट हो सकते हैं, जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: लेगा तो।
1: आकाशवाणी बरेली एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं। अगला गाना अजनबी फिल्म से आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मा ने। और सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलूड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और इनका पूरा जाजौरिया परिवार। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके सभी साथी। और आप हैं ग्राम शंकरपुर उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता यादव, सूरत श्री और गुनगुन यादव। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर और इनका पूरा परिवार। और मोहल्ला गुलाब नगर से आप हैं, जिला बरेली से हमारे कौन कौन साथी हैं? आप हैं विनोद, रीता देवी, नीलम देवी, सोनू, कनिष्क, अन्ना और इनके घर के सभी लोग। तो लीजिए सुनिए फिल्म अजनबी से ये गाना।

आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं। अगला गाना आपको अंधा कानून फिल्म से सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों भी। गीत को पसंद करने वाले आप सब साथी हैं, आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। इसी गीत में आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं मोहल्ला तलैया ओरला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके सभी साथी, पीर बहुड़ा बरेली से आजाद खां, दिलशाद मुस्तकीम, तबस्सुम और इनके तमाम हमरवा हैं, कटरचांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबू, अरोही और स्वाति मौर्य हैं, ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमवीर गोडवाल, प्रवीण रावत, सागर बख्शी, भारत यादव, अनिल नागर और इनके तमाम साथी, आदर्श नगर मलूड से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा, कनेरा मोला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। तो आप सबके नाम अंधा कानून से ये गाना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

0: मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम है अनुरोध गीत। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चालबाज से कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आप सबके नाम है ये गाना। आप है मॉडल राउंड करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, सुनीता शर्मा और इनके सभी साथी। और आप हैं गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम नवेद शमसी, रजिया शमसी और राजा बाबू। चलिए शीतल रेडियो शतसंग बहरामपुर टेना खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनका पूरा परिवार। आप सबके नाम फिल्म चालबाज से ये वाला गाना सुनिए।

दोस्तों, यह है आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz पर। इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। अगला गाना आपको सुनवाते हैं अम्बा फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप सब दोस्तों के नाम कृष्णनगर सेमिनरी हिल नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई रीमा दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे। कस्बा शेरगढ़ ग्राम टांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन नेहा, निदा शना आलिया और मोहम्मद हासिम। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी।

श्रोताओं, अंबा फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना। मनहर उदास, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडिकर, अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज बसाथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन और आवाज के अनुरोध गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सेंसर। जी हाँ, सेंसर फिल्म का नाम है और विनोद राठौर, रोम कुमार राठौर व साथियों की आवाजें हैं इस गीत में। आप सबके नाम करते हैं आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम का आखिरी गाना। आप हैं एडवोकेट वारिस अली खान, शहबाज खान, शेखू खान, लियाकत, रूबी और इनका पूरा परिवार। आपने ये पत्र हमें भेजा है, शहबाज खान भी साथ में हैं, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, और इन दोस्तों को साथ लेते हैं। आप हैं योनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना, कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, अस्तपुरा जिला मऊ, यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर से आप हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद और इनके सभी साथी। आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, खेमकरण, लक्ष्मी देवी, अंतु और इनका पूरा परिवार। आपने ये पत्र हमें भेजा है, छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास, होली चौक बरेली से, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाहणकर, राही सरिता गवाहणकर, प्रिंस एकांश गवाहणकर, बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवाहणकर, प्रणीता, अर्जुन और टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली, शैलेश गवाहणकर, सुमित गवाहणकर, ध्वनि गवाहणकर परी और इनका पूरा परिवार। आप हैं सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से, नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार और इनका पूरा परिवार। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म सेंसर से।

जहां सभी के दिलों में प्रेम उपजा रहे, सभी आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि यही एकता तो हमारी, हम भारतवासियों की शक्ति है। आप सबके सुख की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये सफर, सुरीला सफर, बेहतरीन आपको महसूस हुआ होगा। तो चलिए, आप सबके सुख की कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए। आगे का सफर आप तय करेंगे शिप्रा मिश्रा के साथ। नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। और देखिए, दिन के 2 बज गए हैं और इसी समय के साथ हम लेकर उपस्थित हुए हैं गजल कव्वालियों के उस सफर को जिसका नाम है रसरंग। तो लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस कव्वाली के साथ।

रस रंग इस समय आप सुन रहे हैं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से। केशर आज़ाद बदायूनी की आवाज़ में इस कव्वाली के बाद एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं और अंतराल के बाद लेकर आएंगे एक लोकगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो

0: जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दिन के 2:19 और 11 सेकंड हुए हैं और इस समय आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम रस रंग। तो इस कार्यक्रम में हम गजल, कव्वाली और लोकगीतों को शामिल करते हैं। इसी क्रम में अब आप तक पहुंचा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्रसिद्ध गजल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।

0: कभी।
1: जगजीत सिंह की आवाज में इसी गजल के साथ श्रोताओं कार्यक्रम रसरंग अब यहीं तक। और अब आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई। सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ है। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपा कली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली। भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है, तो और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं।

0: ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
1: जी।
0: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सर
1: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
0: जी, बेटा बड़ा है
1: जी
0: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
1: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
0: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
0: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टूटने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये सब।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
0: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
1: जी
0: थानेदार फिल्म।
1: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की
1: जी
0: खूबसूरती
1: ब्यूटिशियन हूँ दीदी।
0: ब्यूटिशियन है। बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ
0: जी
1: दो लाइन आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी, आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी,
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है।
1: हाँ, जी
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसमें हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और इसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है इसके अलावा, बचपन में आप

0: क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था,
0: हाँ जी
1: लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। तो
0: जी
1: हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था, इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था।
0: जी
1: शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है। तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था,
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध
1: जी
0: भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से।
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज
1: जी
0: आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और
1: हाँ
0: बताइए, अपने बारे में
1: बस,
0: बताइए।
1: आपका भी बहुत

0: बस स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है,
1: जी
0: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
1: क्या बात है। देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
0: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
1: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
0: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था,
1: जी
0: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं, अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती है अपने आप।
1: जी
0: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी, तो
1: जी
0: एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
1: जी
0: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
1: क्या बात है।
0: और हाँ, रेडियो हमारे यहाँ बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के, और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
1: हाँ अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, अब
0: हाँ
1: कहीं भी
0: हाँ
1: बैठे
0: हाँ
1: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
0: हाँ
1: लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना
0: हाँ
1: कल्पना
0: वही
1: जी।
0: साधन था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ
1: जी और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
0: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने MA सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
1: जी।
0: हाँ हाँ मतलब
1: और
0: बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला,
1: सही
0: और
1: बात
0: उसके
1: है।
0: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है सब कुछ। सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ना, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
1: क्या
0: हमेशा।
1: बात है, गाने की महफिल लग
0: हाँ
1: जाती है यानी आपके घर में।
0: हाँ और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
1: जी
0: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
1: क्या
0: मेरा
1: बात,
0: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, तो
1: क्या
0: ऐसे
1: बात है।
0: सबको का। हाँ और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
1: क्या बात है।
0: मैं तो एक्चुअल मैं 63 ईयर्स की हूँ अभी,
1: जी जी जी
0: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
1: जी
0: दोनों बच्चे उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
1: क्या बात
0: मतलब
1: है
0: फ्री हैं एकदम, तो
1: जी।
0: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
1: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये
1: लगा।
0: सब मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
1: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना
0: ठीक है
1: सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और

0: कैसी हैं आप? क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन-कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध
1: जी
0: भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज
0: तो
1: भी 6 बजे चालू हो जाता
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे
1: है।
0: बात करके। और
1: जी
0: अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है,
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं
0: खेल
1: मैं,
0: पसंद के होते थे?
1: हाँ मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा, हेल्दी
0: जी
1: रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि
0: अच्छा
1: हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें। हेलो
0: जी
1: सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता
0: क्या बात है, अब
1: है।
0: हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह।
1: जी
0: और
1: जी
0: आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा, किनारा
0: क्या बात है
1: फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि
1: जी
0: आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा।
0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही
1: हेलो
0: हैं?
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैम मैं डॉली बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: डॉली जी आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं,
0: जी जी जी
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है
0: जी
1: या दही की लस्सी है ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है पीने
0: क्या बात है।
1: से।
0: और आम का पन्ना नहीं बनाती आप?
1: मैम आम का पन्ना नहीं बनाते हम, सिर्फ जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी
0: जी जी
1: माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा, ये
0: जी
1: है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1, 2, 4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम आशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: जी सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का बोल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दर्शा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दर्शा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं हमें बहुत।

0: अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
1: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
1: जी,
0: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
1: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
0: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
1: तो दरक्षा जी लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो
0: जी
1: सहेली में आकर।
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी
1: और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे,
0: जी
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए
0: जी
1: मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: तो हमारे
1: हाँ
0: विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन
1: हाँ
0: से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी,
0: जी
1: छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात
1: हाँ,
0: है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक
0: जी
1: कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार।

0: व्यापार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
1: जी
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेलिया ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपिया उस पार
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 4 बजे हैं और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के दीवाने। और हमारे आज के आकाशवाणी के जो दीवाने हैं वो हैं सतीश अनेजा।
1: नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा आपसे मुखातिब हूँ। आकाशवाणी बरेली का मैं बिल्कुल नियमित श्रोता हूँ और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ही आकाशवाणी बरेली का बहुत दीवाना है, प्रोग्राम सुनता है और बड़ी खुशी महसूस करता है। सुख की अनुभूति होती है जब हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनते हैं, तो इसका श्रेय तो सब उद्घोषकों को जाता है जिनकी मधुर वाणी होती है और वो हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आज स्पेशल मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को, स्टेशन डायरेक्टर जी को, जो भी आकाशवाणी पर कर्मचारी काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, सबको मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा और परमात्मा से दुआ करूंगा भी ये हमारा जो मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है और ये सफ़र जितना 90 साल किया है तो ये सफ़र आगे भी बरकरार रहेगा, ये मुझे आशा है, क्योंकि आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आज मैं आपके सामने कुछ अपनी बात भी कर रहा हूँ तो ये भी मुझे आकाशवाणी ने सिखाया है और हम आकाशवाणी के जरिए हमारे जो श्रोताओं में जो आपसे रिश्ते बने हैं उसका श्रेय भी आकाशवाणी को जाता है, क्योंकि कोई श्रोता किसी का नाम कहीं से आता है, किसी का कहीं से आता है, हम सोशल मीडिया के दूसरे से एक दूसरे से संपर्क में हैं, तो हमारे ऐसे लगा लो रिश्ते बन चुके हैं और रिश्ते भी इतने मजबूत हैं, जो खून के रिश्ते हैं वो पीछे रह गए हैं और हमारे जो रेडियो के परिवार के रिश्ते हैं ये आगे आ गए हैं। तो इन सबका जो क्रेडिट है, सबका जो श्रेय है, जो स्पेशल और स्पेशल आकाशवाणी को जाता है और उसमें आकाशवाणी बरेली का बहुत बड़ा हाथ है और यहाँ के जितने भी उद्घोषक हैं उनकी बहुत मीठी वाणी है, उनकी पेशकश प्रस्तुति बहुत अच्छी है जिसकी हम कायल हैं और बिल्कुल मैं उनको भी सलाम करूँगा, उनकी मेहनत को सलाम करूँगा और उनकी निष्ठा को सलाम करूँगा जो हम हफ्ते बनाए हुए हैं और बड़े शिद्दत से वो प्रोग्राम पेश करते हैं और शिद्दत से हम सुनते हैं। परमात्मा हमारा ये साथ ऐसे बनाए रखे। और एक बार फिर से मैं सभी श्रोताओं को भी और आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को सलूट मार के सलाम दूंगा और सलूट मार के बधाई दूंगा भी ये सफ़र हमारा ऐसे चलता रहे और परमात्मा हमारे अंग संग रहे और हमारा आकाशवाणी का नाम और भी विदेशों में भी गूंजे। नमस्कार।

तो आकाशवाणी के दीवाने में सतीश अनेजा जी की अग्रिम इन शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे श्रोताओं का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। ये देश हमारा है। अपने देश की प्राचीनतम और पौराणिक धन संपदा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।

0: समाजी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@gmail.com।
1: ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 4:05 होते ही आपको भी इंतजार रहता है ना जिस कार्यक्रम का? जी हाँ, बिल्कुल वही कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और जितना आपको इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का, यकीन मानिए उतना ही इंतजार हमें भी रहता है आपसे रूबरू होने का। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें फोन कॉल्स करें 2:30 पर, और वहीं अगर लाइव आप शामिल होना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर मैसेजेस भी कर सकते हैं। आकाशवाणी बरेली पेज को सर्च कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और वहाँ कमेंट बॉक्स में आज के प्रश्न से जुड़े आपके जो विचार हैं वो हमसे साझा आप कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए आपको आज का विषय पहले बता देते हैं। आज का विषय है कि क्या आपने कभी बंद रेलवे फाटक से अपनी बाइक निकाली है? अगर हाँ तो क्यों? तो इसी विषय पर देखते हैं हमारे कौन पहले श्रोता हैं और क्या इनका मानना है, और हाँ कौन सा इनकी पसंद का गीत है वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले जानते हैं कौन है। हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताइए।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: बताइए आज के विषय को लेकर क्या मानना है आपका?
2: बंद फाटक होने पर बाइक जो हम भूल के भी नहीं निकालते
1: हैं। अच्छा,
2: बहुत गाड़ी आ गई बीच में हम फंस गए
1: जी,
2: हम तो ऊपर ही चले जाएंगे।
1: बिल्कुल बहुत सही फरमाया।
2: हमें जल्दी खाएगी, 5 मिनट बाद चल देंगे।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली अगर हम 5 मिनट आराम से इंतजार कर लेंगे तो क्या ही चला जाना है,
2: कुछ भी नहीं जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे चाह रहे हैं आपके। तो आज का गीत भी कौन सा रहेगा बता दीजिए।
2: चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था।
1: बिल्कुल,
2: पाकीजा
1: पाकीजा फिल्म का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद पर।

0: तो श्रोताओं, और इस खूबसूरत गीत के बाद कौन सा गीत आपके रेडियो सेट पर आने को है, और आज के प्रश्न से लेकर कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं और क्या इनका मानना है जानते हैं। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: बिलारी से बोल रहा था, मयंक गुप्ता।
0: बिलारी से मयंक गुप्ता। मयंक जी, बिलारी संभवतया मुरादाबाद जिले में लगता है।
1: मुरादाबाद जिले में लगता है
0: जी। तो मयंक जी, आज का प्रश्न हम आपको बताते हैं कि क्या आपने कभी बंद रेलवे फाटक से अपनी बाइक निकाली है? बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों को देखा है निकालते हुए, वो उनको जल्दी होती है या क्या ही कहा जाए, निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे?
1: कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती हो, किसी को कहीं जल्दी जाना है, कहीं कुछ करना है, तो इसलिए शायद निकालते भी हो।
0: पर उनको ऐसा करना चाहिए?
1: नहीं, करना नहीं चाहिए उसे।
0: जी, तो मयंक जी, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत सैयाना मूवी से आया है, तुम हो तो सुबह हंसी है।
0: बिल्कुल।
1: अपनी वाइफ, मेरी वाइफ का एनिवर्सरी है, मतलब हम दोनों की, 26
0: जी,
1: मई को।
0: बहुत सुंदर। तब तो बहुत अच्छा गिफ्ट आपने तैयार कर दिया अपनी वाइफ के लिए। तो मयंक जी, आपको आपके वैवाहिक वर्षगांठ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण हो और अच्छे से आपका वैवाहिक जीवन संपन्न हो। और आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी।
1: आकाशवाणी, आपकी बात हो रही है?
0: बिल्कुल, आपकी बात आकाशवाणी से हो रही है। अपना नाम बताइए।
1: मैं बोल रहा हूँ राम भरोसे, जिला रामपुर, तहसील शाहबाद से।
0: जी, राम भरोसे जी शाहबाद रामपुर से हमसे जुड़े हुए हैं, तो जरा बताइए कि क्या आपने कभी बंद रेलवे फाटक से अपनी बाइक निकाली है?
1: नहीं निकाली है, हम तो बहुत आराम से रहते हैं और रेलवे निकल जाती है, फटक लगी होती है तो हम तो रुक जाते हैं।
0: बिल्कुल, रुकने में ही समझदारी है ना।
1: हाँ समझदारी है रुकने में।
0: अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनको ना जाने कहाँ की जल्दबाजी रहती है और वो
1: हाँ
0: उसके
1: जल्दबाजी
0: क्रॉसिंग
1: होती है मैम, वो लटा के लगाते हैं मोटरसाइकिल।
0: तो उन्हें ऐसा करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, सावधानी से रुकना चाहिए,
0: बिल्कुल, जीवन बहुत
1: गाड़ी
0: अनमोल
1: निकल
0: है।
1: जा, फाटक फाटक वो हो जा, खुल जा, जब निकलना चाहिए।
0: क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलता है ना,
1: सही बात
0: और
1: है,
0: पांच
1: सही
0: दस
1: बात
0: मिनट
1: है।
0: अगर रुक कर हम अपने जीवन
1: हाँ
0: को
1: जी
0: सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसे हम अगर रुक सकते हैं तो उसी में हमारी भलाई है, तो क्यों अपने जीवन को खतरे में डाले, है ना। तो
1: जी
0: आज का गीत कौन सा रहेगा?
1: जिगर फिल्म का
0: जिगर फिल्म का कौन सा गीत?
1: आज हम बराती बरात लेके। हाँ
0: कहीं बारात लेकर जा रहे हैं क्या?
1: जी, तो बरात लेके ही आएंगे और क्या, और शादी फादी है ये।
0: अच्छा जी, बिल्कुल। तो आपकी बारात के साथ हमारी शुभकामनाएं, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: आए हम बाराती बारात लेकर। बिल्कुल हम बारात लेकर तो नहीं आए हैं, लेकिन अपने श्रोताओं का साथ लेकर आए हैं, क्योंकि फोन कॉल्स पे हमें बहुत से श्रोताओं की फोन कॉल्स मिली हैं। हेलो,
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बताइए।

0: सुल्तान रजा कहाँ से हैं?
1: कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: बिल्कुल हमारे नजदीक से ही हैं कुतुब खाने से। तो बताइए क्या कभी आपने बंद फाटक हो रेलवे का और उसके नीचे से बाइक निकाली हो, ऐसा कभी किया है?
1: जी मैम बहुत बार किया है।
0: बिल्कुल गलत। तो आपने ऐसा क्यों किया है?
1: जी बस एक ही समस्या है, टाइम की गति प्रॉब्लम, टाइम कम काम ज्यादा।
0: पर
1: तो
0: टाइम कितना भी कम हो, जिंदगी से तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता ना।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन कभी कभी इस चीज भूल जाता है ना इंसान, जैसे होता है ना गुटखा खाता आदमी, मालूम है ये जानलेवा है लेकिन फिर भी उसको वो खा रहा है, लेकिन ऐसी है कभी हमने सोच रखा है, लेकिन जैसे कि हम पार करते हैं तो खुद ना खाते ऐसा हो जाए ना हो, लेकिन हमको ये करना चाहिए वैसे।
0: तो आप ये खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप ये सही करते हैं?
1: बहुत गलत।
0: फिर ऐसा क्यों करते हैं?
1: बस वही थोड़ा सा जल्दी जाना था किले फाटक पे और नीचे से बाइक निकाल ली, वहाँ लोगों ने चलाया भी बाद में, थोड़ा समझ में आया फिर ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना अपने चैनल के माध्यम से भी कि दुर्घटना से देर भली।
1: जी जी और हो सके तो 5 मिनट पहले निकले और बाइक बंद कर लें जब
0: बिल्कुल
1: फाटक बंद हो, और जैसे फाटक गाड़ी निकल जाए तुरंत फाटक खुल जाता है फिर आराम से निकल जाए।
0: तो सुल्तान जी हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ये काम जो आप करते हैं ये दोबारा ना करें, और
1: जो रेडियो सुन रहे हैं सभी इस बात पर अमल करें, हो सके तो फाटक बंद हो तो ना निकले, जैसे फाटक खुले तभी निकले।
0: बिल्कुल। तो आज आपकी पसंद का गीत कौन सा रहेगा?
1: मोदी के नाम है जुड़वा, गाने के बोले दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: लेकिन दुनिया में रहेंगे तभी तो लव करेंगे ना, इसके लिए आपको ये लापरवाही नहीं रखनी है।
1: कुछ भी नहीं होगा फिर तो।
0: तो उसके लिए जीवित रहना
1: होगा।
0: हाँ दुनिया में रहना भी जरूरी है ना।
1: जी जी
0: बिल्कुल। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: 104.4 FM आकाशवाणी बरेली से अभी आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। एक से एक खूबसूरत गीत तो आप सुन ही रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आज के विषय जो कि बड़ा रोचक सा विषय है और हम सबकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ सा विषय है, उस विषय को लेकर भी जो सबके विचार है उनको भी जान रहे हैं, है ना। तो अब जान लेते हैं और कौन श्रोता है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: जी, मैं जिला बरेली थाना मेरगंज पोस्ट रोडी ग्राम रसूलपुर इमामबाड़े के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए।
1: जी, और
0: कभी
1: और
0: आपने
1: आप आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे हैं, मैं उनकी खैरियत चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, सभी खैरियत है और आशा करते हैं हमारे सभी श्रोता भी स्वस्थ होंगे।
1: जी जी
0: बिल्कुल। तो बताइए, क्या कभी आपने बंद रेलवे फाटक के नीचे से अपनी बाइक निकाली है?
1: जी जी, मैंने बाइक तो नहीं निकाली, मगर एक रिश्तेदार बहन का नाता जो था एडवोकेट हरपाल सिंह के, उनकी बेटी एक गलत क्रॉसिंग मतलब कर रही थी। तो ये बात लगभग 1993 की है, जब मैं विशाखापट्टनम जा रहा था तो वो गलत पटरी पर रास्ता अपना तय कर रही थी। मैंने उनको हाथ पकड़ कर और सही दिशा में उनको छोड़ा था।
0: अच्छा, आपने उनको जब वो क्रॉस कर रही थी तब उनको रोक कर सही दिशा बताई?
1: जी हाँ
0: बिल्कुल। आपको उस क्रॉस से पहले ही उनको वहीं रोक देना चाहिए था कि भाई क्रॉस ही क्यों कर रही हैं?
1: नहीं जी, मैं ऐसा था, वो मेरे पीठ पीछे थी, जब मैंने मुड़कर जब देखा तो मैंने फिर उनको वापस करा था।
0: जी चलिए,
1: जब मेरी नजर पड़ी तब मैंने उनको रोका था।
0: बहुत अच्छा आपने काम किया और कम से कम उनको रोका, और आपको समझाना भी चाहिए था उन्हें। फिलहाल आपने
1: जी, मैंने समझाया, मैंने कहा ऐसा है दीदी, आप जरा पहले अपने आगे पीछे देख लेती और आप फिर जो क्यों जा रही थी, आपके साथ आपके पापा जी हैं, आपके और बहन भाई भी हैं, तो उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको रास्ते का पता नहीं था तो आप यहीं खड़ी रहती, खुदा ना खास्ते अगर मैं आपको ना देख पाता तो आपके साथ ये हादसा हो जाता।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा काम किया, और उससे भी अच्छी बात ये भी है कि आप खुद से भी इस नियम को फॉलो करते हैं, आप खुद जो है क्रॉस नहीं करते हैं रेलवे फाटक जब बंद होती है तब। तो आज बताइए, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज मेरे सपना साथ निभाना।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप इस समय सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। अब तक आपने सुनी वो फोन कॉल्स जो हमें दिन में प्राप्त हुई और हमने उनको रिकॉर्ड किया, और अब लाइव जुड़ने की बारी आ गई है। जी हाँ, फेसबुक पर आपके साथ लाइव हम जुड़ रहे हैं, आपके कमेंट्स शामिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको भी एक मौका मिल रहा है फिर से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने का, क्योंकि बहुत से श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स शामिल नहीं हो पाती है तो उन्हें लगता है कि अब वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते। पर ऐसा नहीं है, और उदास होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर आज के प्रश्न को लेकर आप अपने विचार हमसे अभी भी साझा कर सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो कार्यक्रम में सबसे पहला जो कमेंट हमने शामिल किया है, आप हैं सादुर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवार और चंद्रकला रेवार। क्या लिखते हैं, रेलवे फाटक बंद होने पर हमने आज तक कभी भी ऐसा अपराध नहीं किया है। नियम का पालन करते हुए कभी अपना बाइक या अपना वाहन हमने निकालने का ऐसा प्रयास किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जीवन बहुत अनमोल है, कभी भी भूल कर भी ऐसा प्रयास ना करें। जो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। ये सब नियम हमारे जीवन के लिए ही बने हुए हैं, कुछ ही मिनट का फैसला होता है और उनके बीच जीवन और माफ़ कीजिए, इन्होंने लिखना चाहा है कि कुछ ही मिनट का फासला होता है उनके बीच और जीवन के बीच, और फिर मौत सामने होती है। इसीलिए हमेशा नियम का पालन करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसी क्रम में हमारी ये श्रोता क्या लिखती हैं, नमस्ते, आपको भी लिखती हैं, नहीं, बंद फाटक होने पर मैंने कभी भी बाइक नहीं निकाली है, और दूसरे निकालते भी हैं तो उन्हें भी मैं मना करती हूँ। जरा सी जल्दी के कारण मौत के मुँह में जाना भला कहाँ की समझदारी है। और लिखती हैं, आपके प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है, आपकी आवाज़ आपका अंदाज बहुत ही अच्छा है, दुआ है ऊपर वाले से हम हमेशा यूं ही सुनते रहें आपको। हमारी भी दुआ है कि आपका साथ हमेशा हमें यूं ही मिलता रहे। और आप हैं सोनाली कठेरिया, कहाँ से हैं ये आपने नहीं लिखा, चलिए नेक्स्ट टाइम लिखिएगा ज़रूर। और ये लिखती हैं कि मैं इस गीत को जो अब आने वाला है आपके रेडियो सेट पर सुनना चाहती हूँ अपने दोस्त कोमल के लिए, जो मेरी बहन की तरह है और दोस्त कम है बहन ज़्यादा है। तो लीजिए हम भी सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

तो अब श्रोताओं और अपने श्रोताओं के कमेंट्स शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम अपने सभी श्रोताओं को शामिल करें। तो आप हैं नंद कुमार ठाकुर, आप चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं। आपके साथ हैं प्रमिला ठाकुर और प्रियंका ठाकुर। क्या लिखते हैं आप? नहीं, बंद रेलवे फाटक से बाइक कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। ट्रेन बहुत तेज होती है और अचानक आ जाती है। फाटक बंद होने का मतलब खतरा है। कुछ मिनट की जल्दी जिंदगी से बड़ी नहीं। नियम तोड़ने पर चालान और जान दोनों का जोखिम है। सब्र रखें, फाटक खुले तभी पार करें। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा क्या लिखते हैं इस विषय को लेकर? बंद रेलवे फाटक होने पर कभी भी बाइक नहीं निकाली है मैंने। जल्दी नहीं है, 5 मिनट बाद गाड़ी निकल जाने के बाद चल देंगे। हाँ, समाचार पत्रों में ये जरूर पढ़ते रहते हैं कि बंद फाटक होने पर बाइक निकालते समय गाड़ी आ जाने के कारण कितने ही लोग मौत के मुंह में समा गए। जल्दी क्या है, जल्दी का भूत मन से निकाल दीजिए। गाड़ी निकल जाने दें, तभी तो मंजिल की तरफ चल पाएंगे और सुरक्षित पहुंच जाओगे। याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छे विचार हैं अंकुश अरोड़ा जी के। शेख जियाउर रहमान लिखते हैं, पहले निकलता था अब नहीं, पहले सब्र नहीं था अब सब्र कर लेता हूँ। वैसे कहाँ से है ये भी आपको लिखना चाहिए था। और प्रवीण चौहान लिखते हैं, कभी नहीं नहीं निकाली है। हाँ, साइकिल निकाली है क्योंकि कोचिंग और स्कूल के लिए लेट हो हुआ करता था, लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं करता। ऐसा करना केवल अपने को जोखिम में डालना है, बल्कि गैरकानूनी भी है। इसीलिए सभी से विनती है, अगर रेलवे फाटक बंद हो तो कभी नीचे से ना निकलें, बल्कि फाटक खुलने की प्रतीक्षा करें। प्रवीण चौहान जी ने भी ये नहीं लिखा है कि ये हमारे श्रोता कहाँ से हैं। और वारिस अली खान संजय नगर ऐशवाक लखनऊ से हैं। आज का विषय सामयिक है, ये लिखते हैं, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त अपनी साइकिल और बाइक बंद रेलवे फाटक से निकाल लेता था, क्योंकि मुझे स्कूल समय से पहुंचना होता था। मई और जून की गर्मी में भी धूप से बचने के लिए बंद रेलवे फाटक से गाड़ी निकाल लिया करता था। एक बार हमारे क्लास टीचर ने मुझे ऐसा करते देख लिया और उनके समझाने पर मैंने आज तक ऐसा जोखिम भरा कार्य नहीं किया। अच्छा, हमें लगा कि आगे कुछ उन्होंने पिटाई लगाई होगी आपकी, ऐसा कुछ लिखने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लाल मोहम्मद अंसारी जी लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आपको भी। अक्सर लोग बंद फाटक से अपनी बाइक निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये गैर कानूनी है, उसके बाद बाई चांस ट्रेन आ जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना में गलती बाइक सवार की मानी जाती है, जाहिर सी बात है। और क्योंकि फाटक बंद था, निकले ही क्यों थे। जब भी हम कहीं जाएं और फाटक बंद हो तो फाटक खुलने का इंतज़ार करें, यही बेहतर है, क्योंकि दुर्घटना से देर बली। आप जो है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं, आपके साथ हैं लालू अंसारी। और ये अंतिम कमेंट हम तक है, तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, अरहम बाबू और किशवा नूर का लिखते हैं, नहीं मैंने तो कभी नहीं निकाली बाइक और ना ही निकालनी चाहिए। जल्दीबाजी ना करें, बंद फाटक पर कुछ देर इंतजार करना ही सही है। बंद रेलवे फाटक से बाइक या गाड़ी निकालना बहुत ही खतरनाक और गैरकानूनी है। ऐसा करना ना केवल जोखिम में डालता है जान को, बल्कि इसके लिए भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। सुरक्षित रहें और रेलवे के नियमों का पालन करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जीवन है तभी तो सब कुछ है ना, जीवन से बढ़कर क्या है। और जो 5-10 मिनट की थोड़ी सी देरी के लिए भी इस नियम को तोड़ देते हैं, वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। लाल अपने श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

वैसे ये घड़ी की टिक टिक करती सुई हमें भी बुला रही है कि देखो देखो समय जो है खत्म होने को है। लेकिन आपसे बात करते हुए, आपके मैसेजेस को पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता कि वक्त कब गुजर जाता है। लेकिन क्या करें, निश्चित समय सीमा है, जाना तो होगा ही ना। खैर, आप हमें बताइएगा जरूर कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। दो माध्यम हैं, एक तो पत्रों के माध्यम से, जिसके लिए नोट कीजिए हमारे पता, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्रीय शक आकाशवाणी बरेली, बरेली का पिन नंबर है 243001। वहीं ईमेल के जरिए भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए पता, कार्यक्रम आपका पत्र मिला bareli@gmail.com। तो इन दोनों तरीकों से आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं और हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। और अब दीजिए कार्यक्रम से हमें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं और अब आपको जानकारी दे देते हैं आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर में 5:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम। 5:30 पर लेकर आएंगे लकी 3, जिसमें अपने लकी 3 श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हैं, उनकी शब्दावली को शामिल करते हैं, उनके पसंद के गीतों को शामिल करते हैं। 5:45 पर प्रेम वाला प्रधान से सुनेंगे कहानी। ये वाणी का समय हमेशा की तरह 6 बजे का रहेगा, जिसमें होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में 6:30 पर चर्चा की जाएगी हरी खाद का महत्व विषय पर। साथ ही आयुष से जो वार्ता की गई वो आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका। कृषि पाठशाला में 7 बजे सुनवाएंगे आपको भेंट वार्ता डॉक्टर हिमानी से की गई। डॉक्टर हिमानी धांजे बताएंगी पशुओं से मनुष्य में होने वाले रोगों पर जानकारी और बचाव। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन लेकर आएंगे 7:31 पर। कल सुबह की शुरुआत होगी 8:15 पर नमस्ते बरेली के साथ। पर सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम। वहीं प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आएंगे 9:30 पर। सुबह 10 बजे होगा आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीपाल गौड़ को। आपकी पसंद इस कार्यक्रम को 10:05 पर लेकर आएंगे। दिन में 1 बजे आप सुन सकेंगे अनुरोध गीत। दिन में 2 बजे जनमंच कार्यक्रम होगा, जिसमें विषय रहेगा जिंदगी रंगमंच है। प्रतिभागी रहेंगे स्पर्श पटेल और अर्जुन सैनी। चार बजे पुनः सुनिए आकाशवाणी के दीवाने में आफताब हुसैन को। और 4:05 का समय रहेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। हेलो बरेली फोन इन कार्यक्रम सुन सकेंगे 5:30 पर। युवाणी में शाम 6 बजे होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। किसानवाणी 6:30 पर लेकर आएगी आज की बात का विषय और आकाशवाणी गांव में किसान के साथ बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। ग्राम जगत में चर्चा होगी रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग पर। समय रहेगा 7 बजे का। वहीं 7:31 पर प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन आप सुन सकेंगे। तो श्रोताओं, इतनी जानकारी हमारे केंद्र से आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।
1: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं।

0: सकते हैं, लेकिन हाँ ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com, आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BAREILLY, आकाशवाणी बरेली @gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।

हम सब भारतीय हैं, एकता में ही शक्ति है। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र इस कार्यक्रम के लिए।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते ही रही, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था।

0: बड़े सहज रूप से।
1: बिल्कुल सहज रूप
0: क्या
1: से।
0: बात, बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
1: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटिक म्यूजिक से था। 9 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था। फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th 10th कही 11th कही,
0: जी जी
1: तो पास हो गई थी। पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी। जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
0: जी
1: और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल, वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
0: अच्छा
1: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के आओ। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था।
0: जी
1: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद
0: जी
1: बराबर हो
0: जी
1: जाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे
0: जी
1: प्राप्त हुआ।
0: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
0: अच्छा
1: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए।
0: जी
1: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी, तो मेरे मन में आया ये विचार। मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
0: जी
1: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10 12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए
0: जी जी
1: तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
0: वाह वाह।
1: तो इस तरह शुरू हो गया।
0: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
1: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से,
0: जी जी
1: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
0: जी जी जी आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
1: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है।
0: जी
1: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया,
0: हाँ जी
1: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो
0: जी जी
1: है उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
0: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं, तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा

0: रियाज छूट गया, नहीं हो पाया।
1: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता तो नहीं था, फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
0: जी जी
1: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
0: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सवाल ऐसा है,
1: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
0: अच्छा।
1: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
0: हाँ। जब कृष्णन साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
1: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
0: जी, जी।
1: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
0: जब
1: मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
0: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली
0: जी।
1: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
0: था। बिल्कुल सही कहा
1: लोगों को
0: जी।
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन, तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न

0: हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है,
0: जी जी
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
0: जी बिल्कुल।
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
0: हाँ जी।
1: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो वो पूछा इतने में कर लोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, उसके जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का? तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
0: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
1: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
0: जी।
1: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
0: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
1: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
0: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की

0: नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
1: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
0: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: व्यक्तियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। समय मिला ये शाम के 5:36 हुए हैं। श्रोताओं, यूं तो ये समय है लकी 3 कार्यक्रम का, लेकिन श्रोताओं समय जो है कम रह गया है कुछ अन्य कार्यक्रमों के चलते, इसीलिए आज हम केवल 2 ही श्रोताओं के पत्रों को शामिल कर सकेंगे। हम कह सकते हैं कि आज लकी 3 को लकी 2 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे वो पहले कौन से लकी 2 के पहले श्रोता कौन हैं, कहां से हैं और क्यों किस गीत की फरमाइश की है, ये हम जानते हैं। तो ये हमारे श्रोता हैं वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। ये लिखते हैं कि 5 अगस्त 1960 को एक ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई थी। उस फिल्म को देखने के लिए लोग रात को ही सिनेमा घरों में पहुंच जाते थे, जैसा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि और उन्होंने मुझे बताया था तो मैं भी चारपाई लेकर रात में ही सिनेमा घर में पहुंच गया था ताकि टिकट आसानी से मिल सके और हाउसफुल का कोई बोर्ड ना लग पाए, और इसीलिए ये यादगार फिल्म मेरी बन गई है और मुझे इसीलिए इस फिल्म का गीत सुनना है। तो बिल्कुल वो भी एक दौर था और हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

तो लकी टू कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बलेली से। लकी टू आज का कार्यक्रम हमारा इसलिए है क्योंकि निश्चित समय सीमा के चलते हमें लकी थ्री से लकी टू रखना पड़ा है और दो ही श्रोताओं के पत्रों को शामिल करना पड़ा है। अब सुन लेते हैं जो दूसरे श्रोता हैं कौन है, कहाँ से हैं। ये हैं

ये पत्र हमें मिला है शिप्रा गुप्ता का बिलारी मुरादाबाद से। आप लिखती हैं, मैं पहली बार कार्यक्रम में पत्र लिख रही हूँ, और देखिए पहली बार ही शामिल हो गया है, और मैं ये पत्र अपने जीवन साथी के द्वारा प्रेरित करने पर लिख रही हूँ, इसीलिए वो भी इसलिए कि हमारी आने वाली वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर हम मैं उन्हें ये सरप्राइज के तौर पर इस गीत को सुनवाना चाहती हूँ। इसके बोल मुझे बहुत पसंद हैं और अक्सर मैंने अपने पतिदेव को इस गीत को गुनगुनाते हुए देखा है, बस इसीलिए इस गीत को सुनना चाहते हैं, और इसके एक एक गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो मैं कहना चाहती हूँ अपने जीवन साथी से वो इस तरह से ये कह रही हूँ। तो लीजिए शिप्रा जी, आपकी ये फरमाइश हम पूरी कर देते हैं और आपकी वैवाहिक वर्षगांठ के लिए ढेर सारी मंगल शुभकामनाएँ।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लकी थ्री, या यूं कहूं लकी टू, क्योंकि आज हमने कार्यक्रम लकी थ्री को लकी टू में कन्वर्ट किया। और अब श्रोताओं, समय मिला लीजिए, शाम के 5:45 और 31 सेकेंड हुए हैं। तो अब सुनते हैं कहानी प्रविला, माफ कीजिए, प्रेमवाला प्रधान के द्वारा।
1: अजनबी सिस्टर, प्लीज आप किसी से मेरे लिए सेब मंगवा देंगी? दर्द से कराहता नन्ना सोनू स्नेहा को अपने पास आया देख कहे बिना न रह सका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्नेहा ने प्यार से सोनू के सर पर हाथ फेरकर उसे आश्वस्त किया और बेड के पास लगा चार्ट देखकर उसे दवा देने लगी। यहाँ स्नेहा के साथ की नर्सें अपना कार्य यंत्रवत निपटाकर चलती बनती थीं, वहीं स्नेहा के नम्र व्यवहार ने उसे अलग ही पहचान दिलाई थी। उसके मित्रवत प्यार भरे व्यवहार के कारण मरीज उससे बेहिचक अपनी परेशानियां शेयर करते थे। अक्सर लोग उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी बुलाया करते थे। सारे मरीजों को देखकर स्नेहा जब थोड़ी देर स्टाफ रूम में बैठी, उसे पुनः सोनू की फरमाइश का ध्यान आ गया। सेब तो उसे अपने कमल भाई व मामी के लिए भी लाने होंगे, जो 2 दिन पहले ही अपने बेटे कमल का इलाज कराने उसके पास आई थीं। लंच ब्रेक में वो अपना पर्स उठाकर बाजार के लिए निकल गई। सेब खरीदकर रिक्शे पर वापस लौटते हुए अनायास ही उसे कई वर्ष पहले घटी घटनाएं याद आने लगीं। अरे ये सेब तू कहाँ से ले आई? जरूर किसी के बाग से तोड़कर लाई होगी, या घर में कहीं से पैसे उठा लिए? मामी का गुस्से से भरा स्वर सुनकर नन्ही स्नेहा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। धीमे स्वर में केवल यही कह पाई, कल बुखार में कमल भैया सेब मांग रहे थे, अपनी गुल्लक के पैसे से खरीद कर लाई हूँ। मासूम चेहरे पर अपने भाई के प्रति झलकता स्नेह मामी के गुस्से को और बढ़ा गया। झल्ला कर बोली, क्यों, हम क्या कंगाल हो गए हैं जो बेटे को सेब भी खरीद कर नहीं दे सकते? जा ले जाइए सेब यहाँ से। मामी, क्या मैं अपने भैया को इतना प्यार भी नहीं कर सकती? हृदय कंठ से वो इतना ही पूछ सकी और सुबकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। पुरानी बातें उसे याद आने लगी थीं। अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी वो, सब कितने प्यार से मिलजुल कर रहते थे कि अचानक एक दिन उनकी खुशियों पर वज्रपात हो गया। एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए उसके माता पिता कुछ लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाए गए थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी और माँ मरणासन्न अवस्था में थी। स्नेहा बाल बाल बची थी। उसी समय खबर पाकर अस्पताल पहुंचे मामा के हाथ में माँ ने स्नेहा का हाथ देकर उनसे कहा था, भैया स्नेहा को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, इसे कोई कष्ट न होने पाए, वरना मेरी आत्मा तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। माँ की मृत्यु के बाद मामा उसे स्नेह पूर्वक घर ले आए थे, परंतु उसे देखते ही मामी की भ्रुकुटियां तन गई थीं। बेमन से उसे बोझ समझते हुए उन्होंने स्नेहा को घर में रहने तो दिया, पर पति के सामने अपना बस न चल पाने का मलाल वे गाहे बगाहे व्यंग वाण चलाकर निकालती रहती। उसे कोसने का वे कोई मौका न छोड़ती। नन्ही स्नेहा का एकमात्र संबल उसके मामा का प्यार दुलार ही था। धीरे धीरे स्नेहा गंभीर व अंतर्मुखी होती गई। मामी स्नेहा के प्रति जितनी कठोर रहती, अपने बेटे कमल के प्रति उतनी ही उदार। उसकी गलतियों को सबसे छिपाकर वे उसे डांट पड़ने से तो बचा लेती थीं, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वो बिगड़ता ही चला गया। आखिरकार इंटर में वो फेल हो गया, जबकि स्नेहा ने मेरिट के साथ इंटर उत्तीर्ण किया। इंटर करते ही मामी ने स्नेहा की पढ़ाई रोककर अपने एक दूर के अधेड़ रिश्तेदार से उसकी शादी की बात चलाई तो वो कांप उठी थी, पर मामा ने इस बात का कड़ा विरोध किया और उसे उसकी इच्छा अनुसार आगे नर्सिंग की पढ़ाई कराने का आश्वासन भी दिया। पर ये बात सुनते ही मामी बेफर उठी थीं। नर्स बनकर ही कौन सा लड्डू फोड़ लेगी, घर गृहस्थी के काम सीख, वही काम आएंगे। फिर पति को संबोधित करती हुई बोली, मैं तो कहती हूँ जी, अब अपने कमल के लिए कुछ सोचो, 3 बार फेल होकर बेचारे का दिल ही टूट गया है। खैर

अगली बार पास होकर जब आईएएस अफसर बनेगा तब देखना कितना सुख देगा। और ये बहुत पढ़ ली, अब इस बोझ के तो हाथ पीले करने की सोचो। सदा शांत रहने वाले मामा जी एकदम से फट पड़े थे। तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है जो लड़का इतना बिगड़ गया है। मैंने तो सुना है कि साहबजादे छुप छुप कर सिगरेट पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं, पास कहाँ से होंगे। और स्नेहा जितना पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें दोबारा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मामी की बातें सुनकर तो स्नेहा की आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया था, पर मामा की हौसला अफजाई से उसके बुझे मन में आशा की किरण कौंद उठी थी। आखिरकार मामा ने एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया था और वो भारी मन से मामा से विदा लेकर नए शहर में हॉस्टल में रहने चली गई। उसका नर्सिंग का कोर्स पूरा हुआ ही था कि अचानक एक दिन उसे मामा के निधन की सूचना मिली। एक बार फिर उसे अनाथ हो जाने का एहसास हुआ था। भारी मन से वो मामा के अंतिम दर्शनों को घर के लिए चली, पर उसे वहां पहुंचकर पता चला कि उनका दाह संस्कार तो 4-5 दिन पहले ही हो चुका था। उसे शायद मामा की मृत्यु की सूचना भी न मिलती, ये तो उसके एक पड़ोसी ने बताई थी जो अपने इलाज के लिए वहां आया था। मामी ने तो उसे खबर करना भी जरूरी नहीं समझा था। अब आ जाने पर वो 2 दिन बाद होने वाले शुद्धि हवन तक रुक गई। घर पर कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, पर वो अपने मामा के अंतिम क्रियाकलापों को छोड़कर नहीं जा सकी। पति के 10वें पर मामी ने सारे कर्म कांड पूरे रीत रिवाज के साथ संपन्न कराए। पंडितों ने ढेरों भोजन उद्रस्त कर बाकी पतलों में जूठा छोड़ दिया था, साथ में घर के लिए भी पोटली बंधवा ली थी। तभी मुख्य द्वार पर एक कृशकाय भिखारिन अपने छोटे से बच्चे के साथ आ खड़ी हुई और कुछ खाने को देने की करुण पुकार सुनते ही मामी का तो पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अरे इन भिखारियों को यहाँ किसने आने दिया, भगाओ इन्हें यहाँ से। पर ऐसे कटु वचन सुनने के अभ्यस्त वे वहीं द्वार पर खड़े रहे और त्रिषित नेत्रों से खाना खाते लोगों को देखते रहे। स्नेहा ने दबे स्वर से मामी से उन लोगों को कुछ खाने को देने के लिए कहा तो वे स्नेहा को ही घुड़कते हुए बोली, अरे वे तो जन्म के ही भूखे हैं, उन्हें देने से क्या फायदा। इस मौके पर भी मामी को विष बुझे तीर छोड़ते देख स्नेहा भौचक रह गई थी। उस भिखारिन व बच्चे की हसरत भरी निगाहों से भोजन ताकना उसे विह्वल कर गया था। अपनी पत्तल का पूरा खाना स्नेहा ने जाकर उन दोनों को दे दिया तो वे उसे ढेरों दुआएं देते हुए चले गए और स्नेहा केवल पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। उसकी भूख ही जैसे मर गई थी। मामी के कहे शब्द हथौड़े से उसके कानों में बज रहे थे, फायदा फायदा। आज तक हर काम उन्होंने फायदे का जोड़ घटाना करके ही तो किया है। ये पंडित भोज भी शायद वे लोक लाज के डर से ही करा रही थी। वापस जाते समय जब स्नेहा ने घर खर्च, कमल की पढ़ाई आदि के लिए अपनी तनख्वाह में से कुछ मामी को देना चाहा, तो वे पुनः भड़क उठी। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, जो अब अपने ही टुकड़ों पर पलने वाले गैरों का एहसान ले। जाओ यहाँ से, परेशान ना करो। एक ही वाक्य ने मामी ने मानो सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन उन दोनों के लिए तो वो शायद कभी अपनी थी ही नहीं। मामी द्वारा बनाए गए संबंधों के इस नए आयाम ने उसका जीवन दर्शन ही बदल डाला था। घायलों की चोटों पर मरहम रखते समय उसके अपने जख्म ढरे हो जाते। अपना दर्द कम करने को वो अजनबी मरीजों के बीच ही अपनापन ढूंढने का प्रयास करती। उधर मामी जिन्हें अपने बेटे पर बड़ा नाज था, जैसे तैसे बीए करने के बाद एक ऑफिस में क्लर्क हो गया था। कमल को शराब व सिगरेट के साथ स्मैक की लत भी लग चुकी थी। थोड़ी बहुत जमा पूंजी पहले ही स्वाहा हो चुकी थी। आमदनी से अधिक अनाप शनाप खर्चे थे। ऐसे में टीबी की बीमारी होने पर उसके महंगे इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आखिर एक दिन अचानक मामी कमल के साथ स्नेहा के पास जा पहुंची। 2 वर्षों के अंतराल में ही मामी बहुत दुर्बल हो गई थी और कमल को देखकर तो स्नेहा को सूखे हुए छुहारे की याद आ गई थी। क्या ये वही था जिसे मामी उसके हिस्से की मलाई भी नियम से खिला देती थीं? स्नेहा ने नितांत औपचारिकता से उनका स्वागत करके दोनों के ठहरने का इंतजाम एक प्राइवेट वार्ड बुक करा के कर दिया था।
दोनों का सारा खर्च स्नेहा ही वहन कर रही थी।

पर इस बार वे पहले की तरह मना नहीं कर पाईं। रिक्शा एक झटके से रुका तो स्नेहा जैसे तंद्रा से जागी। सेब के पैकेट उठाए, रिक्शे वाले को पैसे देकर वो अंदर वार्ड की तरफ बढ़ गई। वार्ड में घुसते ही उसकी नजर जहां तहां फैले रैपर्स पर पड़ी। ये क्या मामी, क्या आज कमरे की सफाई नहीं हुई थी अभी तक? हाँ बुआ, नहीं आई? उसने किंचित आश्चर्य से पूछा।

ये कूड़ा फेंकना दो तो प्लीज, डस्टबिन रखा है उसमें ही डालें। और मामी, ये सेब कमल भैया के लिए लाई हूँ, कहते हुए स्नेहा ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे ये सब कष्ट क्यों कर रही हो, मामी गदगद कंठ से बोली थी। जी ये तो मेरा कर्तव्य है, चलती हूँ, नन्ना सोनू मेरा इंतजार कर रहा होगा, कहकर स्नेहा तो चली गई। पर मामी बरसों पहले की उस घटना को सोचती रह गई, जब इसी प्रकार वो स्नेह से अभिभूत होकर कमल के लिए सेब लाई थी, पर आज वो ये सब कर्तव्यवश कर रही थी। उनके पक्षपातपूर्ण रवैये ने कितना अंतर ला दिया था स्नेहा में, पर अब वे चाह कर भी उन दूरियों को मिटाने में असमर्थ थीं, क्योंकि अब वो अपने मरीजों के उतने ही करीब हो चुकी थी जितनी उनसे दूर, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। धन्यवाद।

अपने और अपने से आगे वाहन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सड़क पर वाहन चलाते समय अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखें। हमेशा याद रखें, दुर्घटना से देर भली।

लेकर आते हैं आज का सवाल। आज का सवाल पहले आपको बता देते हैं, तो हमारा आज का सवाल है कि चींटी के काटने पर कौन से अम्ल का रिसाव होता है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, चींटी के काटने पर कौन से अम्ल का रिसाव होता है। तो थोड़ी सी दिमागी कसरत कीजिए और फिर इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे कार्यक्रम के अंत में। फिलहाल और भी बताएंगे कि कार्यक्रम में आज क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। समय मिलाइए, शाम के 6 बज गए हैं और 6 बजे का समय होता है युववाणी कार्यक्रम का। तो आज कार्यक्रम युववाणी लेकर अब हम उपस्थित होते हैं।

तो कार्यक्रम युववाणी आज आप सुन रहे हैं शिप्रा मिश्रा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कार्यक्रम युववाणी में हम हमेशा

तो शुरू आज का सवाल तो हमारे युवा साथियों ने, हमारे भाइयों ने सुन ही लिया है और उसका जवाब के लिए थोड़ी सी माथापच्ची भी कर रहे होंगे, लेकिन आज कुछ खास भी है। क्योंकि तो आज क्या खास है, क्योंकि आज यानी कि 22 मई को हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या है जैव विविधता दिवस, बताते हैं आपको। श्रोताओ, इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था हमारे जीवन में जैव विविधता का जो महत्व है उसको देखते हुए। प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए जैव विविधता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था, किंतु कई देशों द्वारा व्यावहारिक कठिनाइयां जाहिर करने के कारण इस दिन को 29 मई की बजाय 22 मई को मनाने का निर्णय लिया गया। हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके। जैव विविधता के कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ता जाता है। अतः हमारे लिए साथियों, जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। वैसे जैव विविधता और क्या है, और भी डिटेल में आपको समझाते हैं, और इसे समझाने के लिए देखिए हरिद्वारी लाल भैया क्या कह रहे हैं, आपसे जानते हैं।

0: बढ़ते जा रहे हैं, और इस पे हमारे युवाओं को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे अशरफ खान से, जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और मुस्करा रहे हैं। अशरफ खान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: ये बताइए कि फोटोग्राफी में कितनी हमारे युवाओं को अपार संभावनाएं हैं?
1: फोटोग्राफी में बहुत अपार समस्याएं हुई हैं।
0: हाँ, तो फोटोग्राफी जो हमारे भाई करना चाहते हैं कोर्स, तो कैसे करें और कहाँ उन्हें महारत हासिल होगी?
1: सबसे पहले तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना है तो सबसे पहले क्या नाम है कि अपने मोबाइल से शुरुआत कर सकते हैं
0: जी जी जी
1: जी। जगह जगह जाके फोटोग्राफी करके उन तस्वीरों को अच्छे से खींच के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालें, ठीक
2: बिल्कुल।
1: है।
2: और अशरफ ये बताइए कि जो है जैसे हम अपने मोबाइल फोन से फोटो लेते हैं, ठीक है, आपने जैसे कि बताया कि यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखा जाए? जो बैकग्राउंड है उसका क्या ध्यान रखना चाहिए, या जो मेन पिक्चर है उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये भी बताइए।
1: फोटोग्राफी में देखिए तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा एंगल, फोटोग्राफी का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस एंगल से इस फोटो को लेंगे। दूसरा हमारा कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब हमें किस टाइप से अपना फ्रेम बनाना है, फ्रेम। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे फोकस, फोटो को फोकस में लाना है बढ़िया से, और इससे हमारी फोटो बहुत बेहतरीन आ जाएगी
2: बिल्कुल।
1: जी।
2: इसमें क्या कैरियर है?
1: इसमें बहुत सारा कैरियर है, अपार कैरियर है। इसमें बहुत सारे मतलब युवा जुड़ के इसमें आप सबसे पहले तो सोशल मीडिया से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपने अच्छे फोटो, अच्छी वीडियो बना के, रील्स बना के शेयर करके व्यू से अपना मतलब कैरियर बना सकते हैं। दूसरा आप मीडिया में जाके, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी फील्ड में जाके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा इसमें वेडिंग फोटोग्राफी आती है, अगर आप अच्छे से सीखा, अगर आपको शौक है फोटोग्राफी का तो वेडिंग फोटोग्राफी में जाके बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। दूसरा इसमें मॉडल फोटोग्राफी होती है, मॉडलिंग फोटोग्राफी, उसमें भी कैरियर बना सकते हैं। इस टाइप से इसमें बहुत सारे अपार मतलब कैरियर हैं, बहुत
2: अच्छा,
1: सारे।
2: आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे स्तर पर सोशल वर्कर हैं, आपने बहुत समाज सेवा की है, तो इसमें क्या क्या योगदान रहा है, खासकर हमारी बरेली के लिए क्या योगदान रहा है, ये जरूर बताइए।
1: सबसे पहले
2: जी
1: तो मैं मतलब अपने काम को टाइम देता हूँ, काम के बाद जो समय मिलता है, और मैं गांव का रहने वाला हूँ कि ना कि गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं खेती को भी साथ लेके चलता हूँ। तो खेती में मैंने आजकल एक मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभ लेके मैंने

0: मछली पालन का काम किया हुआ है, उससे भी मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो टाइम मुझे मिलता है वो मैं समाज को देता हूँ। समाज को के साथ साथ जुड़ के मैं जो कमियां मुझे दिखती हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं प्याऊ लगाने का काम मैं करता
1: बहुत
0: हूँ
1: बढ़िया।
0: हर साल में गर्मी में।
1: अच्छा,
0: दूसरा
1: प्याऊ
0: के
1: को लेकर मुझे लग रहा है हरदयाल लाल जी कुछ कहना चाहते
0: जी,
1: हैं।
0: अब प्याऊ एक ऐसा शब्द
1: जी
0: है, ऐसा कार्य है कि गर्मी पड़ रही है ऐसे में तो जगह जगह हमारे जो भाई हैं वो प्याऊ लगाते हैं, और जो प्याऊ और लगाते हैं तो जो शरबत होता है उसे पीते हैं तो लोग बड़ा आनंदित होते हैं, बड़ा खुश
2: जी
0: होते हैं। एक पुण्य का काम है शिप्रा जी।
1: अच्छा हरदोई लाल जी, अगर जो आपने प्याऊ की बात की, भाई जाहिर सी बात है भीषण गर्मी पड़ रही है, हर कदम पर ऐसा लगता है कि बस कहीं छाँव मिल जाए और ठंडा पानी मिल जाए। हैं तो हम देखते हैं छाँव तो बहुत कम बची है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ दिन प्रतिदिन
1: बिल्कुल,
0: जो
1: ये जैव विविधता पर जो हमने प्रहार किया हुआ है ना, ये सब उसी का परिणाम है।
0: जी
1: और क्या
0: जी
1: ये जो
0: बिल्कुल
1: भीषण गर्मी पड़ रही है ये भी इसी का परिणाम
0: हाँ
1: है।
0: इसी का परिणाम है। तो ऐसे में हम अपने युवाओं से ये कहते हैं कि अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर वृक्ष लगाएं ताकि हमारे जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो
1: जी
0: और हम जो ऑक्सीजन है वो सही से ले सकें।
1: बिल्कुल, आज इतनी इस कदर हमने प्रहार किया है जैव विविधता पर कि कितनी ही प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। और आज आप सड़क पर निकल जाइए, आप ढूंढते रहेंगे कोई घना छायादार वृक्ष मिल जाए जहां आप खड़े होकर थोड़ा आराम कर
0: जी जी
1: सके, मिलता ही नहीं
0: जी जी
1: है ना।
0: शिप्रा जी, अब हमारे श्रोता सोते सोच रहे होंगे कि कोई मनोरंजन नहीं करा रहे हैं तो एक प्यारा सा गीत उनके लिए हो जाए, और
1: बिल्कुल
0: फरमाइश लिखकर भेजिए निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से मोहम्मद कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, दानिश नसीब और बाबर अजीम, अनाम का फातिमा, वाहिद हुसैन इनके साथ में है, आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, ओमेंद्र पुरी गोस्वामी, राजीव पुरी गोस्वामी और जिला बदायूं दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया, मनोज कुमार कटेरिया, सत्येंद्र कुमार कटेरिया, गुड्डू विशाल, संगम वैभव, आदर्श आदित्य, अमित रेणु, कुमकुम निव्या सरता, अंत में। तो आइए युवाओं सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत जो आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: तो जैसा कि श्रोताओं आपको पता ही है कि रोज़ हम अपने कार्यक्रम में एक युवा साथी को अपने साथ लेकर आते हैं और उन वो जो है जो उनसे जुड़े कार्य हैं, उनका क्या योगदान है, उन सब से हमें अवगत कराते हैं। ऐसे ही अशरफ जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में। तो अशरफ जी, आप जैव विविधता को अपने समाज सेवी कार्य से कैसे जोड़ सकते हैं, या हमें ये बताइए कि इस क्षेत्र में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है?
1: जैव विविधता को लेकर बस यही है, जैव विविधता को लेकर मेरा कहना यही है कि मतलब हम वृक्षारोपण करके भी जैव विविधता को आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्षेत्र में मैंने लगभग अब तक 2800 पेड़ रोपित किए हैं, जिसमें कुछ छायादार और फलदार पेड़ भी शामिल हैं,
0: सिर्फ बरेली मंडल में।
1: जी। और इसके लिए मैंने स्कूलों को चुना है। स्कूलों को इसलिए चुना है क्योंकि स्कूलों में हम जैसे मतलब युवा छोटे बच्चे भी वहाँ पे होते हैं, तो वो हमें देख के सीखेंगे, प्रेरित होंगे, तो वो भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं स्कूलों में जाके पेड़ लगाता हूँ, वृक्षारोपण करता हूँ, तो उनका संरक्षण प्लस उसे सीखने के लिए तो बच्चे भी प्रेरित होते हैं, इसलिए मैं स्कूलों को चुनता हूँ।
0: इस कार्य में आपके और भी युवा सहयोगी हैं?
1: जी बिल्कुल, मेरी टीम में 4 से 5 लोग हैं। हम एक स्कूल को टारगेट करके उस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में बच्चों को वृक्षारोपण के बारे में बताते हैं और वहाँ वृक्षारोपण भी करते हैं। इसके लिए मुझे वन एवं पर्यावरण मंत्री से सम्मानित भी किया जा चुका है।
0: जी बहुत अच्छी बात है, और वाकई सभी युवाओं को प्रेरित करने वाले आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं, जरूर से जरूर जो हमारे युवा साथी सुन रहे होंगे वो जरूर प्रेरित होंगे। इसके अलावा आपका क्या योगदान और आपने क्या समाज सेवा में और क्या क्या कार्य किए?
1: मैंने रक्तदान के क्षेत्र में भी मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। रक्तदान के क्षेत्र में लगभग 100 यूनिट के करीब मैंने अब तक रक्त कोष जिला अस्पताल को एकत्रित करा चुका हूँ, समय समय पे उसके माध्यम से, शिविर के माध्यम से।
0: बिल्कुल।
1: और 10 बार मैं स्वयं भी मतलब रक्तदान कर चुका हूँ।
0: अच्छा, कितने समय के अंतराल कोई स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है?
1: कम से कम 3 से 4 महीने में आराम से आप रक्तदान कर सकते हो।
0: कितने वर्ष के बाद?
1: 18 वर्ष के बाद।
0: 18 वर्ष के बाद।
1: और इससे कोई कमजोरी, कोई कमी नहीं आती है और शरीर हमारा हल्का महसूस करता है, बढ़िया, इससे कोई कमी नहीं आती है।
0: तो हरिद्वारी भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
2: युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जैसे अशरफ ने बताया कि जैसे हमारे भाई एक्सीडेंटल में या कोई ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ रक्तदान की आवश्यकता, रक्त की यानी खून की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। जो भ्रांतियाँ होती है कि खून हमें देने से हमारे शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि अशरफ ने 10 बार रक्तदान किया है तो बॉडी में नया खून और बनता है रक्तदान करने से, और युवा और स्ट्रांग होता है और जवाब होता है। तो ऐसे में हम अपने युवाओं को यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और लोगों को जीवन दान दें।
0: बिल्कुल, यदि हम सक्षम हैं, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो हमें लगता है कि जितनी बार अवसर मिले ये पुण्य का कार्य तो जरूर करना चाहिए। और अब एक गीत सुनवा देते हैं।
2: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस समय गर्मी भीषण पड़ रही है, तो ऐसे में अपना ध्यान रखें। जब भी कोई काम से जाएं तो सर पर अंगोछा डालें और पानी अधिक से अधिक पिएं। अशरफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: धूप से बचें, हो सके तो धूप से बचें। दोपहर में 3 से 12 से 3 के बीच धूप में ना निकलें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। हल्के कपड़े पहने, सूती हल्के रंग के कपड़े पहने, छाता या टोपी का इस्तेमाल करें, ताज़ा भोजन खाएं, बासी भोजन और मसालेदार भोजन से बचें, फल और तरल पदार्थ लें, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और मौसमी आदि फल खाएं, तो इससे ज़्यादा राहत
0: बिल्कुल
1: मिलेगी।
0: बिल्कुल, हरी ताज़ा जो सब्जी खाएं और तरबूज खरबूज का भी हमारे युवा सेवन करें और स्वस्थ को अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें।
1: और अपने घर के बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें गर्मी से ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए उनका भी ख्याल रखें। और अपने घर में हो सके तो पक्षियों के लिए भी पानी भर के रखें, ये और ही अच्छा कार्य होगा।
0: बिल्कुल एवं, अब आपको प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ और हरद्वारी लाल भैया। और अब बारी आ गई है नजराना ए शाम की, तो लीजिए नजराना ए शाम ने हम आप तक पहुंचा रहे हैं आविदा परवीन, माफ़ कीजिए, आविदा परवीन की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, नजराना है शाम में आबिदा परवीन की इस गजल के बाद अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न पूछा था कि चींटी के काटने पर कौन से अम्ल का रिसाव होता है। जी हाँ, बहुत से हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया होगा, तो मिलान भी कर लीजिए अगर आपने सही जवाब दिया है तो। तो साथियों, चींटी के काटने पर मुख्य रूप से फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। यह एक प्रकार का अम्ल है जो जलन और खुजली पैदा करता है। लाल चींटियों के काटे पर अधिक जलन महसूस होती है क्योंकि उनमें फार्मिक अम्ल की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो श्रोताओं, अब समय नहीं है कि हम अपने कार्यक्रम को और आगे तक ले चलें, और अब कार्यक्रम युववाणी से शिप्रा मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए शाम के 6:30 हुए हैं और हरिद्वारी लाल जी कार्यक्रम में आ चुके हैं लेकर अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। तो लीजिए सुनते हैं हरिद्वारी लाल भैया के साथ कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने भैया और बहनों को आपके भैया हरद्वारी लाल वर्मा की ओर से राम राम। कैसे हो भैया और कैसे चल रही है आपकी खेती बाड़ी? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, लेकिन हाँ इस समय गर्मी भीषण पड़, ऐसे में आप अपना तो ख्याल रखें ही,

0: साथ ही साथ अपने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका और आपके जो पशु हैं, चाहे हल में चलाने वाले या दूध देने वाले, उनका विशेष ध्यान रखें। सुबह शाम पशुओं को या स्वयं सुबह शाम पशुओं को नहलवाएं और छायादार वृक्ष के नीचे उन्हें बांधें। इसके अलावा जो हमारे भाई जब भी घर से बाहर निकलें, सर पर अंगोछा डालकर निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। खैर, इस विषय पे हम आपको अपने कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम कार्यक्रम में आपके लिए क्या क्या लेके आए। हम चर्चा करेंगे हरी खाद का महत्व, साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे वार्ता, राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं आयुष जी। इसके अलावा प्यारे से लोकगीत से आपका कराएंगे मनोरंजन। और आपको ये भी बता दें, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता और जिसका विषय होगा, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया, गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपना ध्यान। इस विषय पे विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर ऋषिराज जी, जो तहसील रोड मीरगंज बरेली के रहने वाले हैं। ये तो था आज की जानकारी का पिटारा। अब हम आपसे चर्चा कर लेते हैं हरी खाद का महत्व। किसान भाइयों, हरी खाद उगाई गई उन कोमल फसलों को कहते हैं जिन्हें फूल आने से पहले ही खेत में जोतकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाना, जैविक कार्बनिक पदार्थों की प्रतिपूर्ति करना और प्राकृतिक रूप से अपनी अगली फसल के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। अब बात करें हरी खाद से लाभ। हरी खाद मिट्टी के स्वास्थ्य और अगली फसल की सफलता के लिए एक वरदान मानी जाती। महत्व की बात करें तो प्राकृतिक नाइट्रोजन की जो प्राप्ति होती है वो हरी खाद के लिए दलहनी फसलें जैसे सनई, ढेंचा और मूंग आदि उगाई जाती है। इनकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में स्थिर करते हैं। हरी खाद से मिट्टी की संरचना में सुधार, ये मिट्टी में जीवांश और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाकर उसे भुरभुरी और उपजाऊ बनाती है। इससे मिट्टी का जल सोखने और नमी बनाए रखने का गुण बेहतर हो जाता है। अब बात करें सूक्ष्म जीवों में वृद्धि। खेत में सड़ने पर ये मिट्टी के लाभदायक जैसे केंचू और सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करती है, जिससे उनकी क्रियाशीलता कई गुना बढ़ जाती है। बात करें खरपतवार और मिट्टी के कटान पर रोक। खेत में हरी खाद की फसल उगी होने से खरपतवार नहीं पनपते हैं और हवा पानी से होने वाली मिट्टी का कटाव मृदा क्षरण रुक जाता है। उर्वरकों पर होने वाले भारी खर्च को कम करके ये भूमि के पीएच संतुलन और क्षारीय अम्लीय गुणों में भी सुधार करती है। अब हम आपको बता दें हरी खाद बनाने की विधि। मुख्य फसल की कटाई के बाद खेत में ढेंचा सनई या लोबिया के बीच बोए जाते हैं। जुताई लगभग 40 से 50 दिनों के बाद जब फसल में फूल आने की अवस्था शुरू होने वाली हो, तब इसे मिट्टी में पलटने वाले हल से या रोटावेटर की मदद से खेत में ही जोतकर मिला दिया जाता है। जुताई के बाद खेत में पानी भर दिया जाता है, जिससे पौधे तेजी से गल सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और 15-20 दिनों के बाद मुख्य फसल की बुवाई की जा सकती है। साथियों, ये तो ही चर्चा हरी खाद का महत्व। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं आयुष जी, तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। युवा समाज की ऊर्जा, उत्साह और नई सोच का प्रतीक होते हैं। वे राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन लाने और नई दिशा देने की क्षमता होती है। शिक्षा के माध्यम से युवा देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। शिक्षित और जागरूक युवा विज्ञान तकनीक उद्योग तथा विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करके राष्ट्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज के युवा स्टार्टअप नई खोजों और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। युवा केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के

वाहक भी होते हैं। वे जाति भेद और अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर समाज में समानता और मानवता की भावना को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान तथा सामाजिक सेवा कार्यों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र के विकास की गति देती है। राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जागरूक युवा सही नेतृत्व का चुनाव करते हैं और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। कहा जा सकता है कि यदि युवा शिक्षित, अनुशासित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित हो तो राष्ट्र की प्रगति निश्चित है। सशक्त और जागरूक युवा ही एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। युवा देश की ऊर्जा, उत्साह, नवीन सोच और परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जिस देश के युवा जागरूक, शिक्षित और कर्मठ होते हैं, वो राष्ट्र तेजी से विकास और प्रगति की ओर बढ़ता है। सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान राष्ट्र निर्माण के आधार हैं। जब युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके विज्ञान, तकनीक, कला और सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देते हैं तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और आज भारत में स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल और विकास और तकनीकी क्रांति युवाओं की मेहनत का ही परिणाम है। दूसरा, सामाजिक जिम्मेदारी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा समाज में फैली कुरीतियों, अधिविश्वास, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर समाज की बेहतर बना सकते हैं। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और मानवता से जुड़े कार्यों में युवाओं की भागीदारी राष्ट्र को मजबूत बनाती है। तीसरा, राजनीतिक जागरूकता और लोकतंत्र में भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। जब युवा मतदान करते हैं, सही नेतृत्व चुनते हैं और देश के मुद्दों पर जागरूक रहते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत होता है और राष्ट्र का सही दिशा में आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में युवा देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। नए व्यवसाय, नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना राष्ट्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। अंततः कहा जा सकता है कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है। यदि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा, नैतिक मूल्यों और अवसरों के साथ जोड़ा जाए तो राष्ट्र की प्रगति निश्चित और तेज हो सकती है। राष्ट्र की उन्नति युवाओं की सोच, कर्म और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। जागरूक, अनुशासित और सकारात्मक युवा एक ही शक्तिशाली विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। युवा देश की ऊर्जा, उत्साह, नवीन और सोच और परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। जिस देश के युवा जागरूक, शिक्षित और कर्मठ होते हैं, वो राष्ट्र तेजी से विकास और प्रगति की ओर बढ़ता है। सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान राष्ट्र निर्माण का आधार है। जब युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके विज्ञान, तकनीक, कला और सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देते हैं तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। आज भारत में स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल विकास और तकनीकी क्रांति युवाओं की मेहनत का ही परिणाम है। सामाजिक जिम्मेदारी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और मानवता से जुड़ी कार्यों में युवाओं की भागीदारी राष्ट्र को मजबूत बनाती है। राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि युवा किसी भी देश की ऊर्जा, शक्ति और भविष्य का प्रतीक होते हैं। युवा नई सोच, उत्साह, साहस और परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, जिसके माध्यम से वे राष्ट्र की विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। शिक्षित और जागरूक युवा विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, उद्योग, कृषि तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। युवा रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देते हैं और तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाकर समाज में समानता और मानवता का भावना स्थापित करते हैं। लोकतंत्र और मजबूत बनाने में भी युवाओं की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वे जागरूक नागरिक बनकर मतदान करते हैं और देश के नेतृत्व को ही दिशा देते हैं। सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत युवा राष्ट्र की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और सामाजिक सेवा के माध्यम से भी युवा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। यदि युवा अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करे तो देश तेजी से प्रगति और

0: विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मजबूत युवा ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होते हैं।
1: अभी हमारे भाई सुन रहे ये वार्ता राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थे आयुष। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो वार्ता सुनकर हमारे भाई इनकी बातों को सुनकर अपने जहन में ये बातें डालेंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। किसान भाइयों, आपसे चर्चा और जानकारी आपको दे दी। अब आपका मन करता होगा कि हरदोरी लाल वर्मा कोई मनोरंजन नहीं करा रहे हैं, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत जिसके बोल हैं सच्ची कैरो लल्लू उराम मेरे यार बुरो मत मान। आइए सुन। अभी हमारे भाई सुन रहे हैं ये
2: भली बुरी सबकी सुनी बहुत।

पन छायो गामन में हरियाली सेहरन में तीरो पन छायो गामन में हरियाली असली रौनक नाय तभी तो मली रहे पाउडर।

मानो। अरे जुल्म भयो नारी ने घरते बाहर पाँव निकारो, जुल्म भयो नारी ने घरते बाहर पाँव निकारो।

0: गीत किशोर कुमार की आवाज में सच्ची कैरो लल्लू राम। हम समझते हैं ये गीत सुनकर हमारे भाई झूम गए होंगे और दिन भर की थकान उनकी उतर गई होगी। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंट वार्ता, जिसका विषय है गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपना ध्यान। ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ऋषि राज जी, जो तहसील रोड मीरगंज बरेली के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं। सभी सुनने वालों को हरदोईलाल वर्मा का नमस्कार। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपना ध्यान, और ये सब जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में हैं डॉक्टर ऋषि राज जी। आप MBBS तहसील रोड मीरगंज जनपद वरली के पद पर कार्यरत हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम देख रहे हैं आजकल देश के कई हिस्सों में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और हीट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे भाई क्या क्या ध्यान रखें।
1: देखिए, इस टाइम पे गर्मी बहुत पड़ रही है इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, आपका हीट स्ट्रोक हो गया। जो लोग बाहर ज़्यादा देर काम करते हैं उनको गर्मी की वजह से बेहोशी तक हो जाती है, और कई सारे केसेस में पेट में क्रैम्प पड़ने लगेंगे, लेट्रीन दस्त की दिक्कत होने लगती है, उल्टी ज़्यादा आती है।
0: जी जी।
1: इस चीज़ के लिए देखिए, आप सबसे पहले तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए उसका इलाज लें। और वैसे प्रिकॉशन रखने के लिए आप चाहें तो दिन भर पानी पीते रहें, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। बाहर निकलते वक्त कैप, अम्ब्रेला, स्कार्फ, इसका यूज़ करें, लाइट कॉटन के कपड़े पहनें, और कोशिश करें 12 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें बाहर निकलने से बचें।
0: जी,
1: अगर
0: जी,
1: बचा जा सकता है तो
0: जी।
1: बाकी अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, आप ORS ले सकते हैं, नींबू पानी है, नारियल पानी है, ऐसे फ्रूट्स को लें।
0: ये बताइए कि अत्यधिक गर्म मौसम का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।
1: इससे गर्म मौसम की वजह से हमारे शरीर में एक तो हमारी स्किन ड्राई हो सकती है
0: जी,
1: दूसरी चीज़ है शरीर में पानी की कमी हो सकती है
0: जी,
1: जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश तक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का बचाव करने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया कि पानी पीना है, ORS पीना है, नारियल पानी पीना है, ये सब करना है।
0: जी जी। किन लोगों को इस मौसम में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत?
1: हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो वर्कर्स बाहर ज़्यादा धूप में काम करते हैं, या जो डायबिटीज़ और शुगर के मरीज हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है, इन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है, तो इन लोग को ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमारे भाई?
1: देखिए, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपके हाथ पैर ऐंठ रहे हैं, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है।
0: जी जी।
1: तो इन साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बॉडी बहुत गर्म हो जाए, पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, बेहोश तक होने लगे
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाएं।
0: जी जी। इस गर्मी से बचने के लिए और क्या क्या सावधानी हमारे भाई?

0: को बरतने की सलाह देंगे।
1: इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखें, आप पर्याप्त पानी पिएं, दिन में कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक पानी पिएं, और बाहर निकलते वक्त अपने जैसे मैंने आपको बताया कि कैप लगाएं, अम्ब्रेला का यूज़ करें, अगर लड़कियाँ वगैरह हैं वो स्कार्फ वगैरह लगाएं, हल्के कपड़े पहने, कॉटन की शर्ट्स हो गई ये सब पहने, बाकी आप पानी ज़्यादा पीते रहें और बाहर का चिकना तला चीज़ें ना खाएं।
0: जी ना खाएं। डॉक्टर साहब, कई लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, क्या डिहाइड्रेशन इतना गंभीर हो सकता है?
1: हाँ जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन बॉडी को इंटरनली काफ़ी इफेक्ट करता है, जिससे आपका बीपी बहुत कम हो जाएगा, किडनी की दिक्कत होने लगेगी, आपको कमजोरी आएगी। बच्चों और बूढ़ों में सीवियर डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, उनमें खतरा ज़्यादा होता है।
0: डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी भीषण पड़ रही है, तो आपके क्लिनिक पर, आपके अस्पताल पर किस तरीके के मरीज आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं?
1: इस टाइम हमारे पास डिहाइड्रेशन के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको पानी कम पी रहे हैं तो शरीर में पानी कमी हो रही है। ऐसे ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिनको मान लो 8-8 घंटे 10-10 घंटे से पेशाब ही नहीं आया है, क्योंकि उनके शरीर में पानी की बहुत कमी है।
0: जी
1: पानी वो पी नहीं रहे हैं, या संग में किसी को लैट्रिन दस्त हो गए, अब पानी लैट्रिन के रास्ते निकल रहा है दस्त के, लेकिन पी नहीं पा रहे हैं, उतना पर्याप्त पीएंगे नहीं, तो फिर इस तरीके के मरीज आजकल ज्यादा आ रहे हैं।
0: जी मरीज डॉक्टर के पास अगर ना पहुंच पाए समय से, उससे पहले हमारे भाई क्या उपाय और कर सकते हैं ताकि उन्हें रास्ते में या घर पे सहूलियत मिल सके?
1: अगर किसी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ रहा है तो उस पर आप पानी की पट्टी रखें, सर पे, माथे पे, उनके पूरे शरीर पे स्पंजिंग करें, जिसको वाटर स्पंजिंग बोलते हैं, वो चीज़ करें, बाकी पानी पिलाएं, ORS हो गया ये सब चीज़ें पिलाएं, यही है मेन। तो बाकी जल्दी से कोशिश करें कि नज़दीकी अस्पताल में अपने लेके पहुंचे मरीज को।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं उनका खेतीबाड़ी का कार्य रहता है, और अगर वो खेतीबाड़ी के कार्य नहीं करेंगे तो जो उम्मीद करते हैं फसल से उनको फसल नहीं मिलेगी, और कार्य नहीं करेंगे तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इन बातों को लेके हमारे भाई खेत पर जाते हैं, पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, खेत में निराई गुड़ाई करते हैं, हमारे भाइयों को क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है?
1: देखिए, पहले तो कोशिश करें कि दोपहर के टाइम में खेत में अवॉइड करें जाना, जो 12 से 4 का टाइम है, उस टाइम पे गर्मी बहुत होती है। सुबह से निकल जाएं, जैसे सुबह 5 बजे चले जाएं, 6 बजे चले जाएं, आजकल तो बहुत जल्दी रोशनी हो जाती है, उसमें अपना काम करें। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप 12 बजे तक अपना काम वो ख़त्म करके घर लौट आएँ, घर पर प्रॉपर फूड और वो सब चीज़ें लें और मेंटेन रखें।
0: जी
1: और बाहर अगर खेत में काम कर रहे हैं तो सर पे स्कार्फ बांध लिया, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, पानी पीते रहें पर्याप्त में, अपने संग पानी लेके जरूर जाएं, ये चीज़ों का ध्यान रखें। आजकल दही है, मट्ठा है, ये चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करेंगी, इन चीज़ों का ध्यान रखें।
0: डॉक्टर ऋषिराज जी, आजकल कुछ दावतें भी चल रही हैं और हमारे भाई दावतें भी दबकर खा रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे तो कहते हैं कि रिश्तेदार रूठ जाएंगे, क्या तली भुली चीज़ें भी हमारे भाइयों के स्वास्थ्य को नुकसान दे सकती हैं?
1: हाँ जी, बहुत नुकसान देती हैं। अगर आपको दावत में जाना ही है तो देखिए, हर जगह ऑप्शन होता है कि आप फल लें, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें, ज़्यादा इस टाइम पे पुड़ी कचौड़ी इन चीज़ों को अवॉइड करें, और चिकनी तली चीज़ें ना लें कम से कम में। अगर बहुत ही ऐसा है ज़रूरी है तो आप चावल हो गए, दाल हो गए, ऐसी चीज़ ले लें। कोशिश करें कि ज़्यादा चिकनी तली पुड़ी और इनसे बचें।
0: जी अगर हमारे भाई ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तली भुली चीज़ें खा रहे हैं, तो सेहत के लिए क्या नुकसान दे सकती है?
1: देखिए, इस मौसम में तो वैसे ही पेट खराब कर सकती हैं, उल्टी आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और वैसे भी किसी भी मौसम में चिकनी तली चीज़ें आपके लिवर पर असर डालती हैं, आपके हार्ट की नसों को ब्लॉक करती हैं, तो इन चीज़ों को तो वैसे भी हमेशा आप कोशिश करें कि कम से कम लें।
0: जी इस समय गर्मी भीषण पड़ रही है, हमारे भाई जब घर से बाहर निकलते हैं, जैसा कि आपने बताया, सर पर अंगोछा डालकर जाएं, लेकिन वहीं काम करते करते 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, उसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं और झट से ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ये भी हमारे भाइयों को नुकसान दे सकता है?
1: हाँ जी बिल्कुल, एकदम अगर आप धूप से आए हैं तो आपके शरीर को कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम दे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे।
0: जी
1: जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे गाँव में एकदम आए ठंडा पानी पी लिया,
0: जी
1: वो उनको नुकसान देगा, जुकाम भी हो सकती है इस टाइम पे और आपका पेट में दर्द भी उठ जाएगा, तो पहले कोशिश करें कि नॉर्मल पानी पिए, जो सादा पानी है वो पिए, और जब 15-20 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, उसके बाद आप पी सकते हैं, पर बहुत ठंडा पानी वैसे भी अवॉइड करें, ना पिए।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मट्ठा ज्यादा होता है, छाछ लोग पीते हैं, तो क्या ये बॉडी के लिए फायदा हो सकता है?
1: बिल्कुल फायदा करेंगे, इस टाइम पे ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपको छाछ और दही है, ये आपके इनके अंदर लैक्टोबैसिलस

0: होता है जो पेट में हेल्दी बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं वो आपके पेट को अच्छा रखेगा। इन चीजों का आप जरूर सेवन करिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हमारे जो भाई हैं मेहमानी में जा रहे हैं या रिश्तेदारी में जा रहे हैं, दावत खा रहे हैं, वहीं वो तमाम तरह की ड्रिंक्स कर लेते हैं, क्या ये हमारे भाइयों को नुकसान दे सकती है? दे सकती है तो कितना नुकसान दे सकती है?
0: ये बहुत नुकसान दे सकती है। उनका लिवर खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद उनको बहुत दिक्कतें आएंगी, पेट में पानी भरना, और फिर आदमी को

0: पेट में पानी भरना, और फिर आदमी को एहसास होता है कि नहीं, हमने गलत किया, हम ये चीज़ नहीं करते, आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, तो इन चीज़ों को तो अवॉइड करना ही चाहिए है।
1: धूम्रपान हमारे भाइयों को नुकसानदायक,
0: हाँ बहुत नुकसानदायक है, इससे कैंसर होने का डर रहता है।
1: जी जी,
0: और ये चीज़ें ना करें, इनसे बचें।
1: यानी जो तम्बाकू है, हाँ, सिगरेट है
0: वो लंग कैंसर करेगी, तम्बाकू है वो माउथ का कैंसर करती हैं,
1: कुछ लोग गुटखा खाते हैं,
0: ये सब चीज़ें गलत है, इनके से आप बचें, इनको अवॉइड करें। इनकी जगह जितने में ये चीज़ें ले रहे हैं उतने पैसे में आप अपने फल लेके जाएं, बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहे।
1: अगर हमारे भाइयों को कई दिनों तक खांसी रहती है तो ये क्या लक्षण हो सकते हैं?
0: देखिए, अगर खांसी अभी आपको 4-5 दिन से है तो हो सकता है कि ये बैक्टीरियल हो या वायरल हो, लेकिन अगर कोई भी खांसी है जो 1 महीने से पुरानी है तो उसमें आप जाकर के तुरंत सबसे पहले अपना एक्सरे कराएं और आप उसमें ये देखें कि वो खांसी किस वजह से। कई बार टीबी की वजह से लंबी खांसी होती है, पर अब क्या होता है, जाँच नहीं हो पाती है तो लोग उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं, दवाई खाए जा रहे हैं। बिना जांचों के दवाई खाना भी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, फिर जो वो जांचें बताएं वो जांच करा के फिर दवाई लें, मर्ज पता करें पहले।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घर बहुत छोटे होते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे भाइयों को किस तरीके से रहना चाहिए?
0: देखिए, घर छोटे हैं उसके लिए तो कोशिश करें कि छाव में ज्यादा बैठें।
1: जी जी,
0: और ओवर क्राउडिंग ना करें कि जैसे आप छोटा सा कमरा उसमें 5-6 लोग रह रहे हैं तो उसमें वैसे ही तापमान बढ़ जाएगा।
1: जी जी,
0: तो इन चीजों को अगर दिन में हो सकता है, जैसे जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर बैठ सकते हैं तो वो अपना पेड़ के नीचे बैठे हैं, गांव में पेड़ वगैरह तो होते ही हैं,
1: जी जी,
0: पाखड़ वगैरह होती हैं सबके, वहाँ बैठे हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करें खुली हवा में, ताजी हवा में। लेकिन अगर लू चल रही हो तो कोशिश करें घर में ही रहें।
1: जी जी,
0: लू ना लगे आपको, उससे बचें थोड़ा सा, अभी जो गर्म हवाएं चल रही है।
1: वहीं बात करें, इस समय जो भीषण गर्मी पड़ रही है, हमारे जीव जंतु भी व्याकुल हैं, तो और हमारे भाइयों के जो जानवर हैं वो भी व्याकुल हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जितना हमें अपना ध्यान रखना है उतना हमें अपने आसपास के जानवर जो घर में हमने पाले हैं या जो वैसे भी हैं उनका भी ध्यान रखना है। अगर हो सके तो अपने घर के बाहर एक बाल्टी में पानी रख दें, जिससे आसपास जो कुत्ते वगैरह हैं, आपके जानवर हैं, गाय घूमती रहती है, वो लोग थोड़ा बहुत पानी पीते रहेंगे। जो आपके घर के उनको तो हम दे देते हैं, बाहर वालों के लिए कोई नहीं करना चाहता है।
1: जी,
0: तो कोशिश करें कि बाहर वालों के लिए भी करें, आप अपनी छत पे पानी रख दें कटोरे में, जिससे जो चिड़ियां हैं आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है वो लोग पी लेंगे पानी, जो बंदर वगैरह घूमते रहते हैं वो आपके टैंक खोल रहे हैं तो अगर उन्हें पानी बाहर मिलेगा तो वो चीजें नहीं करेंगे।
1: जी जी,
0: और उन सबको देखो, गर्मी सबको लगती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तो ये हम लोग को ही करना है उनके लिए भी।
1: जी जी, डॉक्टर ऋषिराज जी, चलते चलते कोई आपके जहन में कोई और सवाल आ रहा हो?
0: नहीं, बस अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखें और सब लोग हेल्दी रहें, हेल्दी खाना खाएं, यही मेरा लास्ट मैसेज रहेगा सबके लिए।
1: डॉक्टर ऋषिराज जी, MBBS, तहसील रोड मीरगंज, जनपद बरेली, आपने गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपना ध्यान, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और किसान भाई हमारी आपकी बात को बहुत ही गौर से सुन पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मेरी बात लोगों तक पहुंच पाई, और हमारा तो काम ही यह है लोगों की सेवा करना, अगर हमारी वजह से किसी को फायदा हो रहा है तो ये अच्छी बात है।
1: ठीक है, अभी हमारे भाई सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत ये भेंट वार्ता, विषय था गर्मी के मौसम में कैसे रखें अपना ध्यान। साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, गर्मी में कैसे खानपान अपना रखें, कैसे जब घर से बाहर निकलें तो सर पर अंगोछा डाल के निकलें, पानी कितना पिएं, तो हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी सुनकर हमारे भाई इस पर अमल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी। किसान भाइयों, अब आपसे चर्चा जानकारी काफी हो गई, अब हम यहीं पर लेते हैं विदा, लेकिन आज का कार्यक्रम आपको ना जाने कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखिएगा। इसके लिए पता नोट करें, ग्राम जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन 243001। यहीं पर आपके भैया हरदोई लाल वर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: तो और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो पशुओं से हम मनुष्यों में फैलते हैं, उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं और अगर हो जाए तो उसका उपचार कैसे हो सकता है। इन सारी विषय पे जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर हिमानी धांजे जी को, जो IVRI में वैज्ञानिक हैं और इस विषय की एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं और कितने तरह के हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं।
1: हाँ जी, जो रोग पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें हम आम भाषा में पशुजनित रोग बोलते हैं। और 60% मनुष्यों की ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनका संचरण पशुओं द्वारा मनुष्यों में होता है। सांक्रामक रोग जो है मनुष्यों के वो 1300 से ज्यादा हैं, और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 800 से ज्यादा उनमें से ऐसे रोग हैं, यानी कि 60% जो
0: जी
1: पशुओं द्वारा मनुष्यों में फैलते हैं। अब जो इनका संचरण है वह कई प्रकार से हो सकता है, या तो रोगी पशु के संपर्क में आने से, या तो रोगी पशु के काटने से, जैसे कि रेबीज है जो पागल कुत्ते के काटने से होती है, या तो फिर कीट पतंगों द्वारा हो सकता है, या तो प्रदूषित भोजन या पानी के द्वारा भी हो सकता है। तो
0: जी
1: कई
0: जी
1: प्रकार हैं जिससे कि ये रोग जो है मनुष्यों में फैलते हैं।
0: जी अब बात करें, जैसे आमतौर पे हमारे जो किसान भाई बहन हैं पालन करते हैं गाय का और भैंस का, बकरी का, तो इस तरह के जो जानवर जो पालतू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, तो उनसे कौन कौन से रोग फैलने की आशंका है?
1: हाँ जी, जो दुधारू पशु हैं उनसे जो हमारे जो उत्तर प्रदेश है, जहाँ
0: जी
1: मतलब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुख्य तौर पे देखा जाता है,
0: जी
1: वो
0: जी
1: एक तो ब्रुसेलोसिस है। ये
0: अच्छा
1: बहुत ही एक जीवाणु जनित बीमारी है,
0: अच्छा
1: और इसका इससे जो नुकसान है वह पशु को भी है और मनुष्य के स्वास्थ्य को भी है।
0: अच्छा
1: ये गाय और भैंसों में गर्भपात करता है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: उससे किसान को काफी आर्थिक हानि होती है। और जहां तक रही किसान की बात, तो किसानों में ये जीवाणु जो है ये बुखार का कारण बनता है। बुखार आता है जाता है, बीच में ये गठिया भी कर सकता है, जोड़ों में दर्द हो जाती है।
0: अच्छा
1: तो ये बहुत ही ऐसी बीमारी है जिससे आर्थिक नुकसान तो है ही, साथ में मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान है।
0: जी,
1: ब्रुसेला के अलावा टीबी है,
0: टीबी है
1: टीबी
0: हाँ।
1: है जो कि
0: अच्छा, ये
1: अगर
0: जो रोग बताया आपने, इसकी प्रारंभिक लक्षण क्या हैं जो पशुओं में, गाय भैंस
1: पशुओं
0: में?
1: में तो प्रारंभिक लक्षण कुछ नहीं है, सिर्फ जो गर्भपात करता है
0: अच्छा
1: ये।
0: अच्छा
1: हाँ जी, तो मेन तो ये है कि ये गर्भपात करता है और 6 से 9 महीने के बीच में गर्भपात करता है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके
0: अच्छा
1: तहत इस जीवाणु के खिलाफ टीकाकरण सरकार मुफ्त में कर रही है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो जो 4 से 8 महीने की बछड़ियां हैं उनका मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है, तो वो इसका टीकाकरण अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके जरूर करवाएं, ताकि वे अपने पशुओं को इस जीवाणु से बचा सकें।
0: जी, बचाने की तो ये तैयारी करनी है, टीकाकरण भी कराना है।
1: हाँ
0: इसके
1: जी,
0: अलावा आप कह रही थी टीबी भी है।
1: टीबी भी है।
0: जी
1: हाँ जी,
0: जी
1: टीबी है। तो ये जो मैंने पहले आपको बताया जीवाणु ब्रुसेला और टीबी, ये दोनों मनुष्यों में कैसे फैलते हैं? मनुष्यों में दोनों आज वैसे सबको सब लोग जो है वो उबला हुआ दूध पीते हैं, लेकिन अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चे दूध का सेवन करते हैं। या तो वो कच्चा दूध वैसे पी लेंगे या दही वो कच्चे दूध की बनाएंगे। तो मैं किसानों को बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये जो खतरनाक जीवाणु जैसे ब्रुसेला या टीबी का जो जीवाणु है ये कच्चे दूध से आपके अंदर जा सकता है और आपके स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है।
0: तो ये गाय भैंस बकरी किसी में भी हो सकता
1: हाँ
0: है,
1: जी बिल्कुल
0: तो उनमें
1: बिल्कुल।
0: लक्षण क्या होंगे?
1: हाँ जी, इस अगर गाय भैंस में अगर आपके पशु को टीबी है तो आपको प्रारंभ में तो पता नहीं चलेगा कि टीबी है, जब काफी अंत तक पहुंच जाता है तब जो है उसको हल्का सा बुखार रहने लगेगा, खांसी आएगी, और जो
0: अच्छा
1: सबसे महत्वपूर्ण लक्षण वो यह है कि वजन कम होने लगता है, उसकी रीढ़ की
0: अच्छा
1: हड्डी आपको दिखने लग जाती है। तो ऐसे मामले में तो उस पशु को आप बाकी पशुओं से अलग करना सही है, ताकि वो बाकियों में ना फैले।
0: ना फैले,
1: हाँ जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें प्रिकॉशन लेने की बात क्या है, जैसे किसी
1: हाँ जी,
0: को?
1: सावधानी जो बरतेंगे वही है कि पशुओं में ना फैले, इसलिए कि पशुओं का जो आपका जहाँ पशुओं को रखते हैं वो बाड़ा, उसकी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, वहाँ वायु संचार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये
0: हाँ हाँ
1: सांस द्वारा भी फैलता है
0: फैलता
1: पशुओं
0: है।
1: में।
0: जी
1: और
0: जी
1: जहां तक अपने को बचाने की बात है, तो अपने को बचाने के लिए किसान जैसे मैंने कहा कि हमेशा उबले हुए दूध का सेवन करें। हाँ जी,
0: और अगर किसी को हो जाए तो उससे दूरी बना के
1: दूरी
0: रखें।
1: बना के रखें। हाँ जी। और
0: जी
1: जब अगर किसान भाइयों को खांसी रह रही है बहुत समय तक, तो वो अपनी जांच जरूर करवाएं, और जब आपको डॉक्टर

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब समय हो चला है कृषि पाठशाला का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर हिमानी धांजे से की गई भेंट वार्ता। आज का विषय है पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग, जानकारी एवं बचाव।
1: नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव।

0: की दवाई बताता है, तो उसका थोड़ा लंबा कोर्स होता है, तो वो कोर्स पूरा कंप्लीट करें, बीच में उसको ना छोड़ें।
1: जी जी जी बिल्कुल। और पशुओं के लिए भी है उपचार?
0: पशुओं के लिए कोई उपचार,
1: कोई उपचार नहीं है। दुखद बात यह है कि एक बार अगर किसी पशु को हो गया टीबी तो उसका
0: उपचार नहीं, एक्चुअली वो उपचार बहुत महंगा है, तो फिर हम जनरली हम करते नहीं
1: है, नहीं करते। जी जी, इनके अलावा और भी कुछ जो रोग होंगे?
0: हाँ जी, हमने इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है, जो मतलब किसान भाइयों से वैसे वो पालते नहीं है, बट गांव में बहुत सारे जो कुत्ते हैं वो होते हैं, गली गलियों में होते हैं, और हम इतने सारे रोज अखबार में पढ़ते हैं कि इसके कुत्ते के काटने से इसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होगी, तो ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है, जिससे हर साल मतलब हमारे देश में 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। और ये बीमारी इसलिए भयानक है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, एक बार लक्षण आ गए तो इलाज नहीं है। तो मैं किसान भाई और बहनों को बोलना चाहूंगी कि जब भी आपको कभी कोई कुत्ता काटता है, तो अगर आप ये कुछ सावधानियां जो मैं बता रही हूँ अगर इनको बरतेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। एक तो ये कि जैसे जब भी काटा कुत्ते ने, तो उस घाव को हमें कम से कम 15 मिनट तक लगातार फिनोलयुक्त साबुन से धोना है, तो 90% विषाणु वैसे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाके 5 टीके जरूर लगवाने चिकित्सालय में। लोग क्या करते हैं कि लक्षण नहीं आते तो वो टीका नहीं लगवाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि इसके लक्षण आने में 1 साल भी लग सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए टीकाकरण करवाएं ताकि आप अपने और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकें।
1: जी जी
0: हाँ जी।
1: और इनके अलावा कुछ जो?
0: इनके अलावा और भी बहुत बीमारियां हैं जो फैलती हैं हमारे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जापानी मस्तिष्क ज्वर है, जिसे हम दिमागी बुखार भी बोलते हैं, जो पूर्वी क्षेत्र में आपने सुना होगा बहुत बच्चे हर साल मरते हैं, अब यहाँ भी मामले देखने को मिल रहे हैं, बरेली में भी हुआ था और पीलीभीत से भी मामला आया था। तो ये जो ये विषाणु जनित बीमारी है, और अच्छा। ये विषाणु उन पक्षियों में पनपता है जो हम बगले जो हम धान के खेतों के आसपास देखते हैं,
1: अच्छा।
0: वहां से मच्छर ये विषाणु लेके सुअरों में डालते हैं, सुअरों में ये विषाणु पनपता है, फिर वहां से ये विषाणु मच्छर द्वारा मनुष्यों में आता है। तो ज्यादातर ये बीमारी बच्चों को प्रभावित करती है, और बच्चों का भी अगर समय पे इलाज ना हो तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें किसान भाइयों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर उनके बच्चे को तीव्र बुखार आ रहा है तो डॉक्टर के पास लेके जाएं, हकीम नीम के पास ना लेके जाएं, और इसके खिलाफ भी टीकाकरण अपने बच्चे को जरूर करवाएं।
1: जी जी, आपने बताया ये शुकरों में होता है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो मतलब हमारे कई सारे किसान भाई बहन शुकर पालन में भी लगे होंगे, तो खासतौर पर सावधानी बरतनी होगी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उनको सावधानी बरतनी।
1: उसमें लक्षण क्या होंगे? उसमें
0: लक्षण शुकरों में तो कोई खास लक्षण नहीं होते, बहुत कम वो है कि वो कभी कभी गर्भपात कर देता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन जो बच्चे हैं उनमें लक्षण ऐसे ही आते हैं कि उनमें बुखार आएगा, फिर उसके बाद मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो आपको जैसे लकवा हो सकता है बच्चे को, जो उसकी गर्दन है वो दृढ़ होने लगेगी।
1: अच्छा।
0: इस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं।
1: जी, और इसमें सावधानी
0: यही है कि अपने जो किसान भाई शुक्र पाल रहे हैं वो बिल्कुल साफ सफाई रखें, ताकि वहां पे आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा हो, ताकि मच्छर की संख्या ना हो, अगर मच्छर बढ़ेंगे तो बीमारी फैलेगी।
1: जी जी जी। तो एक कॉल आ रही है, देखते हैं किसकी कॉल है। हेलो नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी, आपका अपना शुभ नाम बताइए। जी जी जी, पूछिए पूछिए। डॉक्टर हिमानी धान जी हैं यहाँ पे स्टूडियो में। पंकज शर्मा जी, जी बताइए।
2: सर, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पशु पाले जाते हैं, कुछ हमारे घर में भी पाले जाते हैं।
1: जी जी।
2: और कुछ आवारा जानवर भी घूमते रहते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन पशुओं से हमारे बच्चों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं।
1: जी जी जी जी, हाँ पूछना चाहते हैं कौन कौन से रोग हो सकते हैं जो आवारा पशु हैं।
0: हाँ जी, तो आप मेरे को पशु का नाम बताएंगे कि कौन से किन पशु के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप, मतलब
1: हाँ कौन कौन से पशु हैं ये जरा सा बता दीजिए।
2: जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, बिल्ली भी हमारे घरों में पाली जाती है, अक्सर लोग पाल लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: अच्छा,
0: अच्छा।
2: और गाय भैंस है, बकरी है।
0: हाँ जी,
2: ये जानवर जो हमारे किसान भाइयों के घरों में पाए जाते हैं या फिर हमारी गलियों में अक्सर घूमते रहते हैं।
0: हाँ जी,
2: डॉगी कुत्ता जो है हर घर में पाला जा रहा है लगभग आज की डेट में।
0: बिल्कुल।
2: कई बार सर ऐसा सुनने में आया कि वो रैबीज वैक्सीन क्या हो, उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था।
0: हाँ जी हाँ जी, तो जो आपने डॉग्स की बात की ना कि हर किसान के घर में कुत्ता है या फिर आसपास गलियों में बहुत कुत्तों की जनसंख्या है, तो इससे इनके काटने से रेबीज होता है, जैसे आपको खुद ही जानकारी है, आपने बोला कि रेबीज होता है।
2: बच्चे जो है कुत्ते के बच्चों को जो है गोद में लेकर के
0: घूम, हाँ जी, वो नहीं करना चाहिए ऐसे ना, आप लोगों को उनको मना करना चाहिए, क्योंकि

0: पता नहीं होता कि कब वो जो बच्चा है, वो कुत्ते का जो बच्चा है, पिल्ला है, वो काट ले, और अगर काट लेगा तो रेबीज होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इस बीमारी का फिर कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर बहुत बार हमारे हाथ में नहीं होता, अगर काट भी ले, तो ये जो रेबीज वैक्सीन जो आपने खुद ही कहा, ये जरूर लगवानी। आपने आपको या आपके बच्चे को, किसी को भी काट रहा है, तो 5 टीके जरूर लगवाने। और जैसे ही काटता है, तो जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि उस घाव को अगर 15 मिनट तक लगातार, तो वो विषाणु 90% खत्म हो जाता है। और अगर आपने घर में कुत्ता पाल कर रखा है, तो उसका भी आप हर साल टीकाकरण जरूर करवाएं रेबीज के खिलाफ, ताकि आपको कभी काटे भी।
1: बंदर हमारे बच्चों को काट ले तो क्या करना चाहिए?
0: हाँ जी, अगर बंदर भी काटता है ना, वैसे तो जो 90% से ज्यादा जो मामले हैं रेबीज के, वो कुत्ता के काटने से ही होते हैं। लेकिन अगर कोई भी जानवर काटे, तो किसी उसके काटने से भी आपको 2 टीके जरूर लगवाने, एक तो टेटनस का जरूर लगवाना और दूसरा रेबीज का जरूर लगवाना है।
2: जी, और कोई सवाल है? आपको जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल, किसान वाणी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा और कौन-कौन से रोग हो सकते हैं जो आमतौर पे, कई सारे रोग जो कुछ खास मौसमों में होते हैं,
0: हाँ
2: कुछ
0: जी, हाँ
2: जाड़ों में
0: जी,
2: हो या कुछ
0: हाँ
2: बारिश
0: जी,
2: के मौसम में हो?
0: हाँ। तो बारिश के मौसम में तो कई मच्छर जनित रोग, जैसे हमने जापानी मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार की बात की, डेंगू होता है। डेंगू भी जो है, ये भी जो विषाणु है, इसको इसलिए हम पशु जनित बोलते हैं क्योंकि इसका विषाणु बंदरों में पनपता है पहले, तो वहां से भी आता है, तो उस वो भी हो सकता है। जाड़ों की बात है, तो अब जैसे मौसम बदल रहा है, लेकिन पहले जैसे हम बोलते थे जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये सिर्फ बरसातों के मौसम में होता था, लेकिन अब ऐसा है कि सर्दियों में भी इसके मामले देखने को मिलते हैं। तो मच्छर से तो हमेशा सावधानी बरतनी ही बरतनी है। बाकी तो जैसे अब रेबीज की बात करी हमने, तो कुत्ता कभी भी काट सकता है, चाहे वो मौसम का वो नहीं है उसमें। जैसे और टीबी की बात करी, तो टीबी भी पूरा साल जो है वो रहता ही
2: जी
0: है।
2: जी
0: हाँ
2: मतलब
0: जी,
2: मौसम के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है,
0: हाँ
2: किसी भी
0: जी,
2: मौसम में हो सकता है, बस
0: बिल्कुल,
2: ये है कि हमें साफ सफाई का
0: साफ
2: ध्यान रखना
0: सफाई का
2: है
0: ध्यान रखना
2: और
0: है। हाँ जी,
2: सावधानी बरतनी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी,
2: तो आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि आम तौर पे जो इन सभी तरह के जो रोग हैं उनसे बचाने के लिए क्या सरकार की तरफ से या अस्पतालों में टीकाकरण की व्यवस्था है?
0: हाँ जी, सभी रोगों के खिलाफ तो टीकाकरण नहीं है, लेकिन जो
2: जी
0: सबसे महत्वपूर्ण रोग, जैसे मैंने बताया, ब्रुसेलोसिस, क्योंकि
2: हाँ
0: इससे आर्थिक नुकसान बहुत है हमारे किसानों को, तो उनके पशुओं को गर्भपात करता है, तो उसके खिलाफ मुफ्त में टीकाकरण है, कार्यक्रम शुरू किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो टीकाकरण जरूर करवाए, है ना। और इसके अलावा जैसे टीबी है, तो टीबी तो आपके बच्चे को, जैसे आपका बच्चा अस्पताल में पैदा हो रहा है, तो टीबी का टीकाकरण होता ही
2: हाँ
0: होता
2: हाँ
0: है,
2: हाँ
0: तो वो बच्चों में है। फिर
2: बच्चों
0: जापानी
2: में
0: मस्तिष्क ज्वर का भी बच्चों में टीकाकरण है, वो भी मुफ्त में है,
2: जी
0: तो
2: जी
0: वो उन सबके टीके हैं जो
2: हाँ
0: है
2: पशुओं के लिए भी अवेलेबल,
0: पशुओं के लिए, जैसे मैंने बताया ब्रुसेला का
2: हाँ
0: है।
2: उसका
0: बाकी
2: है।
0: हाँ जी, हाँ जी, बाकी टीबी या जापानी मस्तिष्क ज्वर का तो नहीं
2: नहीं
0: है,
2: है। और
0: नहीं है।
2: कौन-कौन से इस तरह के टीके जो
0: बाकी रेबीज का है,
2: रेबीज का
0: रेबीज का
2: टीका?
0: जो बहुत किसान लोग जो है, वो अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए भी कुत्ते पालते हैं, तो जिन्होंने अपने घर में कुत्ते पाले, वो भी जैसे हूँ, उनका जो कुत्ता है वो 3 महीने का होता है, उसके खिलाफ टीकाकरण जरूर करवाएं पशु चिकित्सालय में। वो मुफ्त में तो नहीं है, बट उससे आपकी जान जा सकती है, तो उसके लिए अगर आप अपना टीका लगवाएंगे अपने कुत्ते को, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, वो भी स्वस्थ रहेगा।
2: जी।
0: हाँ जी,
2: तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई बहन जो रोग फैल रहे हैं पशुओं से मनुष्यों में, उससे जागरूक रहेंगे और सावधानी बरतेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो सीधे अस्पताल जाएंगे और जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है उसका वो फायदा उठाएंगे। डॉक्टर हिमानी धांधी जी, आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कृषि पाठशाला, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:15 और 32 सेकंड। कोई व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं शिवम पुत्र कृष्णपाल सिंह, अकबराबाद थाना सहजवान जनपद बदायूं के आप निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, लंबाई 5 फीट लगभग। ये हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। इकरा जिस्म, गोल चेहरा व रंग गेहुआ है, ये हिंदी भाषा जानते हैं। ये 31 मार्च 2026 से लापता हैं। इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं से संपर्क करें। खोई व्यक्तियों की सूचना के इसी क्रम में आप हैं मोहम्मद आजम पुत्र अकरम अली। आप भसराला थाना अलापुर जनपद बदायूं के निवासी हैं।

इनकी आयु लगभग 18 वर्ष है, लंबाई 5 फीट, इकहरा जिस्म, चेहरा गोल व रंग सांवला है। ये हिंदी भाषा जानते हैं। इन्होंने नीला पजामा, चेक क्रीम रंग की शर्ट, पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। नशे में वाहन ना चलाएं, ये आपके साथ ही साथ अन्य राहगीरों के लिए भी जानलेवा है। सड़क पर अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखें। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने गंतव्य क्षेत्र तक पहुंचें। दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करें और हमेशा याद रखें, दुर्घटना से देर भले। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
3: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्याय

0: न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागजी और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है। इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
2: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:31 और 31 सेकंड हुए हैं। अब हम लेकर हाजिर हुए हैं रेडियो हेल्पलाइन।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
3: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
2: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
3: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
1: मर्दाना कमजोरी,
3: महिलाओं के मूत्र रोगों,
1: गुर्दे की पथरी,
2: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
1: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
2: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
1: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
3: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
4: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
5: सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब, नमस्कार के साथ ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि भाई गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन भी कई तरीकों से करा जाता है। अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं।
5: अच्छा, बताइए
4: अगर आपकी अनुमति हो तो।
5: जी बताइए
4: डॉक्टर साहब, आज कुछ ऐसा तरीका बताइए जबकि गुर्दे में पथरी हो और उसका ऑपरेशन ही न करना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए। क्या ऐसी भी कुछ संभावना है, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है संभव?
5: आज आपने बीच का प्रश्न पूछा। पहले एक तरफ हम बताते आए हैं कि गुर्दे की पथरी ना बने
4: जी,
5: जिस तरह से उसको जो है आपको ये परेशानी ही ना हो
4: जी, जी।
5: फिर अगर बन रही है तो किस तरह से आधुनिक विधि से हम उसको लेजर से, किरणों द्वारा भी इलाज कर सकते हैं
4: जी, जी।
5: तो ये जो बीच वाला जो इश्यू है कि जी बनी है
4: जी
5: और उसका इलाज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के या लेजर टेक्निक से किया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
4: जी।
5: इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पथरियां जो हैं
4: जी
5: वो इस लिस्ट में आती हैं जिसका इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के हो सकता है।
4: अच्छा।
5: कुछ ऐसी पथरियां हैं जो साइज के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेशाब की नली जो है 3 से 4 mm की होती है।
4: बिल्कुल।
5: इससे छोटी पथरी होगी
4: जी
5: तो उसको हम दवाइयों से या किसी भी विधि से उसको उसके रास्ते से निकाल सकते हैं।
4: अच्छा।
5: लेकिन अगर वो साइज उससे बड़ा हो गया तो उसमें जो है वो ऑपरेशन या उसको छोटा करना जरूरी हो जाता है
4: जी। जी,
5: तो इसमें मरीज को या पेशेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जी उसको सिम्टम हो या ना हो अपना बराबर चेकअप कराता रहे
4: जी,
5: और अगर उसको पथरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज के लिए आ जाए।
4: चेकअप कराने से फायदा डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं ये होगा कि पता लग जाएगा कितनी बड़ी पथरी है, उसका साइज कितना है
5: जी,
4: और अगर शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाता है तो निश्चित ही है कि फिर जो आप बता रहे हैं
5: वो हो सकता है,
4: वो संभव।
5: क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 mm से पथरी या उससे छोटी पथरी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती
4: जी।
5: तो मरीज वो कहता है मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किस चीज का इलाज कराऊं या क्यों अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाऊं। तो इसमें वो जब बड़ी हो जाती है और परेशान रहती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जी उसका दवाइयों से या किसी भी नॉन ऑपरेटिव विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी पथरियां का इलाज दवाइयों से हो सकता है
4: जी।
5: और मैं तो कहूंगा कि 70-80% पथरियां जो हैं वो इस विधि से निकाली जा सकती हैं।
4: अच्छा।
5: अगर जो है वो टाइम से आ जाएं
4: जी, यानी समय पर पहचान
5: जी
4: और समय से इलाज की शुरुआत अगर हो जाती है तो ये बिल्कुल संभव है कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है।
5: और आप ये समझिए कि पहले जब हम आए थे
4: जी
5: तो ऑपरेशन की क्या उसमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन और चीरे वाले ऑपरेशन करने पड़ते थे। पथरी का साइज है 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm।
4: डॉक्टर साहब आपने तो पत्थर निकाले हैं लोगों के जिस्म से और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है
5: जी। वो 85 mm की पथरी एक बच्चे
4: 85 mm
5: जी 85 mm की पथरी एक बच्चे में निकाल, तो उस समय इतनी बड़ी थी जो जागरूकता कम थी।
4: बिल्कुल।
5: इसके बाद में धीरे धीरे अब पथरी का साइज कम होना शुरू हो गया है जब वो हमारे पास आते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास में आता है तो साइज आमतौर पे बड़े ही होते थे
4: जी। जी
5: अब वो

0: धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% दवाइयों से हो सकती है, 50% की ऑपरेशन की या ऐसी आधुनिकतम विधि से निकालने की जरूरत पड़ती है।
1: जी, आम धारणा डॉक्टर साहब ये है कि अगर गुर्दे में किसी को पथरी है तो या तो उसे दर्द होगा
0: जी,
1: या पेशाब में कोई समस्या होगी
0: जी।
1: लेकिन एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है हर बार गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे की साइड में और पेशाब में समस्या हो, पथरी फिर भी हो सकती है।
0: बिल्कुल हो सकती है।
1: वो कैसे डॉक्टर साहब?
0: देखिए ऐसा है कि गुर्दे के तीन हिस्से होते हैं
1: जी,
0: उन हिस्सों में छोटी सी पथरी बैठी हुई है और कहीं कोई रुकावट नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं होती है, पेशाब का जो फ्लो होता है आराम से होता रहता है और कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो हटके पेशाब की या गुर्दे की नली में आके फंस जाए
1: जी,
0: तो जैसे होता है ना कि नाली चोट हो जाती है तो पानी आसपास फैल जाता है, अगर कम परेशानी है, ये छोटी है तो उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन जब पथरी रास्ते में फंस जाती है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि चूंकि पेशाब तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को कई बार बताया
0: जी,
1: है
0: जी।
1: कि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो जो पथरी का साइज आप बता रहे हैं जो बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है
0: जी,
1: महिलाओं में क्या साइज है मिनिमम जो कि बिना ऑपरेशन के निकल सकती है पथरी?
0: देखिए ऐसा है कि साइज तो बराबर का ही होता है महिलाओं
1: अच्छा,
0: में और
1: अच्छा
0: पुरुषों में।
1: जी,
0: परेशानी क्या होती है कि जी कुछ हार्मोन्स की वजह से
1: जी
0: और कुछ अन्य वजह से परेशानी आती है। अब जैसे कि अगर जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो
1: अच्छा,
0: बच्चे का सर है या शरीर का हिस्सा है वो पेशाब की नली पे दबाव रखता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में जो है वो छोटी पथरियों में से भी जो है महिलाओं को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जी पथरी, और उस समय जो है हम कोई ना तो एक्सरे कर पाते हैं
1: जी
0: ना हम उसका कोई आधुनिकतम ऑपरेशन करते हैं,
1: जी
0: तो उसमें महिलाओं को जब तक कि जी बच्चा हो नहीं जाता तब तक जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, कई बार तो अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है या टर्मिनेट करवानी पड़ती है।
1: जी,
0: तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि जी जो है वो हर पुरुष और महिलाओं के साथ में परेशानी का सबब अलग अलग हो सकता है
1: जी
0: और इसका इलाज जरूरी है।
1: बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने की है और बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि पथरी की वजह से कई बार एबॉर्शन तक कराना पड़ जाता है
0: जी।
1: तो अगर कोई महिला, कोई युगल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
0: जी,
1: तो अल्ट्रासाउंड पहले कराने की जो बात है वो
0: जी
1: काफी हद तक इस मामले में भी मदद कर सकती
0: हाँ,
1: है।
0: इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जी अल्ट्रासाउंड दो तरह की शरीर में पथरी होती है, एक गुर्दे में होती है और एक गॉलब्लैडर में पथरी होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और दोनों की ही पथरी अगर जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुए तो ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड उससे हो सकता है, हमें दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है और वो फिर अगर शुरुआत में ही हो गया तो वो अगले 6-7 महीने तक जो है वो फिर महिला को जो है ये दर्द या इन्फेक्शन वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है
1: जी, जी।
0: तो ये परेशानी का सबब बन सकता है
1: जी, इसलिए पहले एक जांच हो जाए
0: तो उससे काफी ज्यादा चीजें जो
1: मदद
0: है
1: मिल
0: वो मदद मिल जाती है
1: जी। बच्चों के विषय में डॉक्टर साहब हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है
0: जी।
1: बच्चे के शरीर से पत्थर निकाला था, तो बच्चों में जो पथरी की संभावनाएं हैं या जो बच्चों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मरीज आ रहे हैं वो किस शिद्दत से आ रहे हैं और वहां क्यों बढ़ रही है पथरी?
0: कि पहले जब हम शुरुआत में हम प्रैक्टिस में आए थे या देखते थे या पुराने भी रिकॉर्ड देखते थे
1: जी,
0: 15-16-20 साल से पहले जो है पथरियां बहुत ही कम होती
1: बहुत
0: थी,
1: कम होती थी जी,
0: मतलब होती ही नहीं थी। मान लीजिए
1: जी,
0: कि जी यार बच्चे में है तो हम और परेशानी सोचते थे, पथरी सोचते ही नहीं थे
1: जी।
0: अब आपको आश्चर्य हो रहा कि 2-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 8 साल के तो है से 10 साल के तो बहुत ही ज्यादा पथरियों से इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि जी एक वो अलग विभाग भी बन जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारा खान पान
1: की वजह से ये पथरियां
0: 90% जो है वो फास्ट फूड के शौकीन होंगे
1: जी,
0: कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे, एक्टिविटी उनकी कोई होगी नहीं, एक्सरसाइज शारीरिक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है और इससे गुर्दे की डैमेज वही बढ़ती हुई स्टेज है जिस समय की गुर्दा डेवलप हो रहा होता है और परेशानी का सबब बनता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जी उनका खान पान माँ बाप को भी रखना है, बच्चों को भी ध्यान देना
1: बिल्कुल
0: है और उसमें जो है गुर्दे की पथरी की जो इंसिडेंस है या जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
1: बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ने की वजह आपने बताई दी डॉक्टर साहब। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे श्रोता भी ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब तो सर्जन है तो सर्जरी की बात बताएंगे, लेकिन आज तो विषय बिल्कुल अलग है डॉक्टर।

0: साहब सर्जरी की बात ही नहीं करनी है आज, हमें बताना है अपने श्रोताओं को कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के कैसे निकाली जा सकती है। आपने बताया कि इसका साइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो पथरी बनने के या ये कहें जिस चीज से पथरी बनती है जो सॉल्ट होता है, क्या उसका भी कोई महत्व होता है?
1: वो तो है इसमें, जैसे भी मैंने बताया बच्चों में जो है वो फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक की वजह से बन रही है
0: जी।
1: बाकी और चीजें, किसी को यूरिक एसिड से पथरियां बन रही हैं,
0: अच्छा,
1: किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट से बढ़ रही हैं
0: जी।
1: तो खान पान तो जो है वो संतुलित और जिस तरह से खाना है वो सबके लिए है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो पथरियां बिना ऑपरेशन के निकालनी है तो उसके लिए साइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जल्दी से पता चले,
0: बिल्कुल
1: कई बार छोटी पथरी गुर्दे के उस हिस्से में पहुंची हुई होती है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, रुकावट नहीं होती है
0: जी जी,
1: वहां पे हम उसको किरणों द्वारा तोड़ सकते हैं या फिर हम एक्सरसाइज से बता सकते हैं कि जी वो पेशाब के रास्ते निकल जाए।
0: एक्सरसाइज से भी डॉक्टर साहब ऐसा संभव है क्या?
1: एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ये होता है कि जो जो चीज बैठी हुई है उसको हिलाना,
0: अच्छा।
1: जैसे कि आप चावल फटकते हैं या चीजें आप सफाई के लिए, तो वो अपनी जगह से हिलती है,
0: अच्छा।
1: और उसके बाद में वो पानी पिया और बाकी जो है कुछ मेडिसिन दी तो उससे निकल सकती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या तो है नहीं
1: जी,
0: न कभी दर्द होता है और न हमें कोई और समस्या है, तो हम क्यों जांच कराएं, जबकि जांच कराने पे कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। तो ऐसी भी क्या परिस्थिति होती है गुर्दे में पथरी पड़ी रहती है और लोगों को पता भी नहीं होता?
1: बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती
0: हैं, दोनों गुर्दों में
1: दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं
0: जी।
1: और जब मेरे को पहली बार दिखाया, हमने टेस्ट करवाया, मेरा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हैं और तुम्हें दोनों गुर्दे निकलवा के और उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
0: गुर्दे फेल हो जाते हैं
1: जी, बिल्कुल खत्म, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो पहली बार अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं, इससे पहले हमें कोई समस्या ही नहीं थी और उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन से भी वो पथरी निकालने के बाद वो गुर्दे काम नहीं करेंगे।
0: अच्छा फेल होने की जो बात है डॉक्टर साहब, गुर्दा फेल किस परिस्थिति को या किस स्थिति को कहेंगे, क्या होता है शरीर में ऐसा?
1: उसमें जब ऐसा ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन जो है दो चीजें होती हैं, वो जब बढ़ जाती हैं,
0: अच्छा,
1: और इतनी बढ़ जाती हैं कि जी वो सफाई या डायलिसिस के बिना नहीं निकाली जा सकती, तो हम कहते हैं कि पेशेंट का या मरीज का गुर्दा फेल हो गया।
0: और ये दोनों गुर्दों के साथ एक साथ हो सकता है?
1: डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों गुर्दे फेल एक साथ हो जाए
0: जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शुरुआत में ही हम जागरूक हो जाएं और एक छोटी सी जांच करा के ये पता कर लें कहीं गुर्दे में पथरी तो नहीं है, तो शायद इससे निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब आप ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है रुहेलखंड का क्षेत्र, ये स्टोन बेल्ट है
1: जी,
0: इसके पीछे क्या वजह है, स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है, सबसे ज्यादा पथरी यही क्यों होती है लोगों को?
1: देखिए पथरी का जो आराम कारण जो है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, उसमें ये है कि पानी की मात्रा भी कम है और कुछ उसमें जो है कंटेंट जो है या उसमें जो अंदर डिजॉल्व्ड है उससे होती है। दूसरी चीज 9 से 10 महीने यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है
0: जी।
1: फिर जो आदमी बाहर काम पे जाता है तो हर समय पानी की बोतल लेके तो चलता नहीं है, तो उसमें क्या है कि जो पता चला सुबह 8 बजे निकला, उसने अगला पानी जो है वह शाम के 4-5 बजे पिया
0: जी।
1: उससे जो है वो जैसे किसी ग्लास में आपने चीनी डाली, शुरू में तो घुल जाती है
0: जी,
1: लेकिन आप डालते चले जाएं तो फिर वो बैठना शुरू हो जाती है। उसी तरह से जो है अंदर के जो शरीर की गंदगी है, पानी की कमी होने से वो बैठना शुरू हो जाती है गुर्दे के अंदर
0: जी,
1: और वही फिर पथरी का आकार ले लेती है
0: जी। जी डॉक्टर साहब यहाँ ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, चूंकि बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जिनको पथरी की समस्या हो चुकी है और वो लेजर से या फिर किरणों से किसी तरह इलाज करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है ऐसा आपने बताया है, क्या उन लोगों में जो दोबारा पथरियां बनती हैं उनको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है?
1: पथरी ये नहीं देखती कि मैं पहली बार बनी, दूसरी बार बनी या तीसरी बार
0: जी,
1: वो तो साइज के ऊपर है। दूसरी बार बनी और वो जागरूक है, उसने शुरुआत में ही पकड़ लिया, उसका इलाज हो सकता है उसका
0: जी। क्या बताना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो पथरी की समस्या से पहले जूझ चुके हैं, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी?
1: देखिए उनके लिए तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी पथरी निकली है और उनके पास है तो उसकी स्टोन एनालिसिस जरूर कराएं कि किस चीज से बनी है। दूसरी चीज जो सामान्य सभी के लिए है कि खान पान सही रखें, पानी ज्यादा पिए और इस तरह की चीजें ना खाएं जिससे जो है पथरी की बनने की संभावना ज्यादा है
0: जी। और उसके अलावा
1: रेगुलर अपना चेकअप करवा,
0: बिल्कुल एक जांच जो आपने बताई है अल्ट्रासाउंड की वो बहुत मददगार हो सकती है। यूरिक एसिड की पथरी की बात आपने की डॉक्टर, और यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो कहते हैं कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है
1: जी।
0: जो

0: एसिड को इसी तरह पहचाना जाता है, उसके बाद लोग जांच कराते हैं। तो पथरी से क्या लेना देना है यूरिक एसिड का?
1: यूरिक एसिड की पथरी जो है वो पेशाब के रास्ते ही यूरिक एसिड निकलता है
0: जी,
1: और जब वो उसका मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा निकलता है गुर्दे में से
0: जी,
1: वही जो है वो जाके स्टोन बन जाता है। और यूरिक एसिड का स्टोन एक बिल्कुल ही भिन्न तरीके का स्टोन होता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है।
0: अच्छा,
1: कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन और जो कैल्शियम वाले स्टोन हैं वो एक्सरे करवाइए तो आ जाते हैं
0: जी।
1: यूरिक एसिड वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पहचाने जा सकते हैं या फिर उनका सीटी स्कैन किया जाता है
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, परहेज की जहां तक बात है तो परहेज में ये कहा जाता है कि साहब जिन फलों में बीज होते हैं या जिन सब्जियों में बीज होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके खाने से पथरी बन सकती है, क्या ये बात सही है?
1: देखिए उसमें सब में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है
0: जी।
1: कुछ लोग जो है वो भर भर के खाते हैं तब तो ये चीज होती है उन पे लागू, लेकिन जो आम मात्रा में आपने एक सेब ले लिया या आपने जो है एक यूरिक एसिड संयुक्त चीज आपने ले ली उससे इतनी विशेष परेशानी नहीं होती, पर प्रिवेंशन तो करना ही होता है। कुछ लोग के जो है परिवार में आप देखते होंगे कि सभी लोग बैगन की सब्जी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें से एक या दो को हो रही है पथरी
0: जी जी,
1: तो उसकी बॉडी की शरीर की जो संरचना है, पानी की कमी है और वातावरण जो जैसा है उसकी वजह से भी असर पड़ता है, तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा अब ये और बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, जो पहले पथरी से पीड़ित रह चुके हैं, जिनको पथरी हुई है
1: जी,
0: उनको संभावना पथरी बनने की जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है और क्यों होती है? क्योंकि लोगों का कहना ये, हमने पथरी का इलाज कराया, डॉक्टर साहब ने किरणों से तोड़ दी हमारी पथरी, निकाल भी दी, लेकिन फिर भी दोबारा पथरी बन गई।
1: पहले साल में 60-70% हो जाएगी फिर,
0: पहले साल में?
1: हाँ पहले साल।
0: अच्छा,
1: आगे के सालों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले साल में ही जो है वो पथरी सबसे ज्यादा फिर से बन जाती है
0: जी। एक श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए।
2: हेलो,
0: अपना परिचय बताइए और गुर्दे की पथरी के संबंध में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: रमेश बोले किशनपुर से।
0: जी रमेश जी बताइए, क्या समस्या है आपकी?
2: समस्या ये है कि जैसे हमारी पत्नी के ना उनके गुर्दे में तो पथरी ना है, उसमें है पित्ते में
0: जी। अच्छा,
2: तो हाँ। पित्ते की पथरी और इसकी पथरी जो है दोनों क्या निकल जाती है? पित्ते की पथरी,
1: पित्त की थैली की पथरी जो है ना, वो पित्त की थैली और पथरी दोनों एक साथ निकलती हैं, इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करके।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ।
2: अच्छा, जो गुर्दे की जो पथरी है तो क्या बिना ऑपरेशन के निकल सकती है?
1: हाँ, गुर्दे की पथरी जो है वो बिना ऑपरेशन के आधुनिकतम तकनीक लेजर है किरणों द्वारा निकाली जा सकती है।
2: अच्छा, तो फिर दोबारा ना होगी?
1: दोबारा फिर से बनने की संभावना उसी गुर्दे में जो है 60-70% है।
2: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इलाज क्या महंगा है ज्यादा?
1: नहीं, वो तो पथरी का साइज और बाकी चीजें जांचों पे पता चलता है कि क्या है, तो दिखाना पड़ता है कि कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे है और कैसी है और कौन सी विधि से निकाली जाएगी।
2: हमारे भतीजे से जो है वो 12 mm की पथरी बताई है गुर्दे में, थ्री है उसको अलग अलग से।
1: हाँ, 12 mm की पथरी तो बड़ी है, वो दवाइयों से तो नहीं निकलेगी, उसको किसी आधुनिकतम टेक्निक से जो है वो पहले तोड़ के निकाला जाएगा, वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद पता चलेगा।
2: तो मतलब चीरा हो रहा नहीं, आराम से हो
1: जाएगा? हाँ, 12 mm की पथरी के लिए आमतौर पे चीरा नहीं लगता है।
2: हाँ, तो मतलब ऑपरेशन का जो डर लगता है ना लोगों को, वो डर ना हो।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ
0: जी,
1: उसमें कई बार उस पथरी के में भर्ती भी नहीं किया जाता है, 2 या 3 घंटे में ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती है।
2: अपने घर भी कर दिया जाता मरीज?
1: हाँ जी हाँ।
2: अच्छी बात है, चलिए डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। डॉक्टर साहब चूंकि आज का हमारा विषय गुर्दे की पथरी का है, लेकिन इन्होंने पित्ते की थैली की पथरी की बात की, आपने इन्हें जवाब भी दिया इनके प्रश्न का। डॉक्टर साहब ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, लेकिन भ्रम रहता है लोगों में कि गुर्दे में अगर पथरी है उसका इलाज आप कर रहे हैं तो पित्ते की थैली की पथरी का भी इलाज आप कर देंगे।
1: नहीं, दोनों की टेक्निक अलग है,
0: अलग
1: है। जैसे मैंने बताया गुर्दे की पथरी जो है वो दवाइयों से, किरणों से और गुर्दे को बचा के की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन पित्त की थैली की पथरी के लिए जो है वो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें पित्त की थैली और पथरी दोनों ही निकाली जाती है।
0: दोनों ही निकाल दिए जाते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है, उसका समाधान किसके माध्यम से होगा।
1: उसमें फिर जो पिट की थैली निकल जाती है तो फिर से बनने की संभावना शून्य हो जाती है।
0: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, कोई समस्या नहीं हो रही और वो कहता है जब समस्या

0: नहीं तो मैं इसका इलाज क्यों करूं?
1: जी
0: आगे चल के क्या हो सकता है ऐसे लोगों
1: जी जो ऐसे लोगों का जो है अगर रुकावट है तो गुर्दा डैमेज हो सकता है, एक ही गुर्दे में है तो वो डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, दोनों गुर्दों में है और बड़ी पथरियां हैं तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है
0: जी, यानी जान जोखिम में जा सकती
1: बिल्कुल
0: है हम
1: जी।
0: ये कह सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ ऐसी दवाइयां आप निश्चित ही होंगी जिनको देकर के आप सही करते हैं?
1: जी
0: मेरा इशारा उन तरीकों की तरफ है जो लोग आजमाते हैं,
1: जी
0: कहीं से पानी में मंत्र पढ़वा लिया तो कोई किसी पेड़ के पत्ते खा लिए, ये प्रयास लोग करते हैं और उससे ये विश्वास कर लेते हैं कि गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी।
1: जी
0: क्या ये संभव है?
1: देखिए ऐसी छोटी पथरियां स्वतः ही निकल जाती हैं आपने कुछ भी नहीं किया तो।
0: जी
1: उसी में अगर आपको पता है और आपने कहा कि जी हमने ये खाना खाया और ये पानी पिया और ऐसी चीजें की या ये दवाइयां ली, तो उससे नॉर्मल पथरियां जैसी जो निकलती हैं वो तो निकल ही जाएंगी। इसका साइंटिफिक कोई भी वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं इस चीज से हो।
0: जी
1: साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है कि जो शोध करके ये चीज होती है कि जिसको नहीं है उसके बाद में उसको देख के और साइंटिफिकली प्रूव किया जाए।
0: जी
1: तो वही दवाइयां और वही चीजें जो हैं वो कारगर होती हैं और लेनी चाहिए जिसका कि शोध हो चुका हो
0: बिल्कुल,
1: और उस पे जो है हमें पता है कि हाँ जी इससे इतना फायदा होने वाला है।
0: जी जी
1: बाकी प्रयास करने से आप अपनी ही शरीर से खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल लक्षा बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा पानी पीने की बात आप बार बार कहते हैं हमारे श्रोताओं से कि पथरी का जो सबसे बेहतर और सबसे पहला इलाज है वो पानी पीना है, पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए आप कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार हम चाहेंगे फिर हमारे श्रोताओं को बताइए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है।
1: देखिए सही तरीका यह है कि साफ पानी हो, निथार के जो है उबाल के या तो उसके बाद में उसको जो है वो छान के उसके बाद में पीना चाहिए, या आजकल जो आरओ वाटर है वो पीना वो हो जिसमें कि सॉल्यूट्स अंदर जो है वो टीडीएस जो है वो सही मात्रा में हो। दूसरा ये कितना पानी पीना चाहिए, हम ये कहते हैं जितनी देर आप जगे हुए हैं उसमें हर घंटे पे एक गिलास पानी पी लीजिए। तो ये हो गया कि अगर आप 15 घंटे दिन में जगे हुए हैं तो आमतौर पे 15 गिलास पानी पी लीजिए, वो चाहे वो 2-3 घंटे के अंतर पे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे पी लिया और रात में 10 बजे पी लिया, दिन में पानी नहीं पिया तो वो काम इतना नहीं करता है।
0: लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि सुबह उठे और 4-5 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया और ये मान लेते हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये गलत प्रैक्टिस।
1: तो उसमें क्या है कि जी उसी समय ही या उसके 1-1.5 घंटे में वो जितना पानी पिया है वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, फिर बाकी दिन के समय में आपके जो है शरीर में पानी नहीं है।
0: जी सही तरीका यही है कि हर घंटे पे एक गिलास पानी औसत रूप से पीते रहे। जी जी और क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? चूंकि रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज जो मुद्दा हमने आपसे तय किया है वो ये है कि गुर्दे की पथरी का इलाज वो भी बिना ऑपरेशन के,
1: जी
0: क्या खास बात बताएं?
1: देखिए इसमें तो आज हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो मरीज या पेशेंट खुद करें,
0: जी
1: इसमें डॉक्टर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। इसमें चाहे वो ये हो कि जी वो पथरी ना बने, चाहे वो पानी पीने का, चाहे वो खान पान का, चाहे वो टेस्ट का, चाहे वो सही तरीके से इलाज का, तो इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो जो है वो लोगों को आपस में ही करने के
0: जागरूकता के लिए ये बात कही गई है। जी
1: इसमें ये नहीं है कि जी आज पथरी का कैसे इलाज हो,
0: बिल्कुल
1: ठीक है उसको ना बने या बने तो शुरुआती उसमें कैसे इलाज हो सकता है।
0: जी जी कुछ पेशाब संबंधी और भी समस्याएं जुड़ी होती हैं सर, अगर किसी को पथरी हो जाती है, पथरी अपनी जगह है गुर्दे में नुकसान करती है, उसके अलावा पेशाब का तो लंबा रास्ता होता है, इसमें और क्या क्या समस्याएं पथरी की वजह से होती हैं ये भी हम चाहते हैं हमारे श्रोता जान लें।
1: ये बहुत बड़ी पथरी हो, बहुत लंबे टाइम तक फैली हो तो वो अंदर की संरचना को भी डैमेज करती हैं, तो कई बार उसमें खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है,
0: कैंसर तक हो जाता
1: जी।
0: है
1: जी। तो इसलिए ये जो है ये पथरियां जो है हर तरह की समस्या की वजह
0: बनती है। डॉक्टर साहब जो एक बड़ी आधुनिक और जरूरी बात है, हम चूंकि बात भले ही बिना ऑपरेशन के कर रहे हैं पथरी के इलाज की, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात आ रही है बार बार कि मैं आपसे उस विधि के बारे में एक बार जरूर बात कर लूं जिसमें बिना किसी चीरा, बिना किसी टाके के, बिना मरीज को छुए आप पथरी का इलाज करते हैं, विशेष तौर से गुर्दे की पथरियां, बड़ी बड़ी पथरियां निकाल देते हैं।
1: अभी जैसे अभी हमने श्रोता से बात की थी कि उनके साथ में 12 mm की पथरी थी, तो उसमें जो है वो हम कोई भी इलाज जो है उसमें किरणों द्वारा किया जाता है
0: जी,
1: एडमिट भी नहीं किया जाता मरीज को, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है।
0: 3 से 4 घंटे में
1: जी,
0: ये कैसे संभव?
1: बाहर से ही हम किरणें उसको देते हैं
0: जी,
1: पथरी पे

0: फोकस रखते हैं, और सेमी रोबोटिक टाइप चीज होती है, जैसे कि जी उसमें बाहर से सब कुछ होता है
1: जी,
0: और उसके बाद में रेस देने के बाद में पेशाब के रास्ते ही जो है वो कण टूट के निकल जाते हैं।
1: यानी पथरी, जो बड़ी पथरी है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाती है,
0: रेते जैसी हो जाती है, बालू जैसी
1: जी,
0: और उसके बाद में पेशाब के रास्ते निकल जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में ही मरीज घर चला जाता है, तो ये सब करने में कितना समय आपको लगता होगा, जो इस तरह का ऑपरेशन है जो किरणों के द्वारा आप बता रहे हैं?
0: उसमें 45 मिनट से 1 घंटा।
1: अच्छा, और उसके 2 घंटे बाद मरीज को घर भेज देते हैं। तो देखिए, आधुनिक चीजों का ये फायदा है, और आज मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही हैं कि कम समस्या तुरंत समाधान
0: जी।
1: और उससे भी बेहतर ये है श्रोताओं कि आपको अगर गुर्दे की पथरी

0: उससे भी बेहतर यह है श्रोताओं कि आपको अगर गुर्दे की पथरी से बचना है या अपने गुर्दों को बचाना है, मैं तो ये कहूंगा, तो आप जागरूक हो, समय पर इलाज कराएं और उससे पहले समय पर जांच कराएं।
1: बिल्कुल,
0: तभी आप बिना ऑपरेशन के, मैं तो ये कहूंगा कि गुर्दे की पथरी का इलाज बिना खर्चे के कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेष तौर से गुर्दे की पथरी, पेशाब संबंधी बीमारियों के जो इलाज है उसके विषय में बताया। और आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी ठीक की जा सकती है।
1: बिल्कुल,
2: धन्यवाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
4: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
3: मर्दाना कमजोरी,
5: महिलाओं के मूत्र रोगों,
3: गुर्दे की पथरी,
4: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
3: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्जित,
4: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट, लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
5: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज के संक में आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा। इस विषय पर डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा के साथ भेंट कर रहे हैं सुभाष खन्ना। श्रोताओं नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और श्रोताओं, जैसा आपने देखा भी कि शिक्षा आदिकाल से चली आ रही है, जहां हम किसी विशेष स्थान पर किसी जंगल में गुफाओं में जाकर हम गुरु के समीप शिक्षा लेते थे। समय बदलता रहा, समय ने परिवर्तन किया, जैसे अन्य विधाओं में परिवर्तन हुए, अन्य विषयों में परिवर्तन हुए, वैसे ही शिक्षा में भी मूलभूत परिवर्तन हुए, कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए। और अब शिक्षा केवल स्थान केंद्रित ना होकर, शिक्षक केंद्रित ना होकर के वो बाल केंद्रित हो गई और व्यक्ति की सुविधा के अनुरूप भी होती गई। अब ये किस तरह की शिक्षा है, इसे कहाँ ग्रहण किया जाता है, कैसे हम जाने कि कौन से कोर्स में कब एडमिशन होता है, कितनी वैलिडिटी है उस कोर्स की, और क्या ये रोजगार में भी सहायक है, ये ढेर सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा से। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं इग्नू लखनऊ में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जब ये शिक्षा में परिवर्तन आया कि जो शिक्षा है वो किसी भी मोड में होने लगी, किसी ऐसी जगह पे एनरोल करा लिया और शायद क्लास वास भी नहीं जाना पड़ रहा है, क्या है ये, कैसे शिक्षा लेते हैं लोग?
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात करें
1: जी,
2: तो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो एक जो गुरुकुल प्रणाली थी प्राचीन शिक्षा की, वो प्रणाली बहुत ही पॉपुलर थी। और पहले एक गुरु के आश्रम में जाके, जो हम कहते हैं ना भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी जो है एक शिक्षा लोग लेते थे
1: जी।
2: और उसमें वो जो शिक्षा थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है किताबों तक सीमित थी, बल्कि

0: हर तरह से, युद्ध विद्या से लेके शस्त्र और शास्त्र जिसको हम कहते हैं, दोनों विद्या में जो है विद्यार्थी निपुण होते थे और उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप बदला और जैसे जैसे स्वरूप बदला, शिक्षा भी जो है कहीं ना कहीं जॉब केंद्रित होती गई। और इसके बाद क्या है कि अगर हम 20वीं सदी से बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो नौकरी पेशा और इस तरह से जो डेवलपमेंट की चीजें हैं उसमें एक अहम रोल के रूप में देखी जाने लगी। समय के साथ साथ देखेंगे आप तो जो हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल व्यवस्था के थ्रू थी, उसके बाद धीरे धीरे नालंदा तक्षशिला की बात आप जान ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उसके साथ कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हुए जो परंपरागत या कन्वेंशनल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे, जिसमें विद्यार्थी एडमिशन लेता है, वहां जाता है, क्लास करता है, एग्जाम देता है और फिर वो उसको डिग्री मिलती है। क्योंकि समय की जरूरतों के हिसाब से, समय की अपनी सीमाएं थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जो है जॉब कर रहे थे, कहीं रोजगार में थे या अपना कोई उद्यम कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी संख्या थी जो परंपरागत शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो दूरस्थ शिक्षा जो है वो उनके लिए एक बहुत अच्छा और बेहतर विकल्प निकल के आया। और अगर हम भारत में दूरस्थ शिक्षा की बात करें, आप देखेंगे दूरस्थ शिक्षा से संबंधित बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालय भी, और दूरस्थ शिक्षा में अगर आप एक लीडिंग रोल में देखें, जिस विश्वविद्यालय का पूरा नेशनल प्रेजेंस है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू की, तो इग्नू आज के समय में पूरे भारत में 58 रीजनल सेंटर के माध्यम से जो है उच्च शिक्षा में अपने प्रचार प्रसार और ज्योति जो है जला रहा है। अगर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से पूरे भारत में जो है करीब 16 जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो ओपन एंड डिस्टेंस मोड से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो वो ये विश्वविद्यालय जो है ऐसे लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कहीं वो एंटरप्रेन्योर हैं या कहीं वो किसी सेवा में हैं, तो वो अगर हायर स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बेहतर विकल्प के रूप में दूरस्थ शिक्षा निकल के आती है।
1: प्रवेश कैसे होता है, कैसे कोई आदमी इसमें एडमिशन लेता है?
0: देखिए, जहां तक प्रवेश की बात है तो चूंकि मैं इग्नू से जुड़ा हूं और भी सारे जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, सब में जो प्रवेश का माध्यम है वो ये है, ये सब हायर स्टडीज को प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम जो है 12th पास होना चाहिए जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं उनके लिए 10th भी जो है अगर किसी ने पास किया है तो वो एलिजिबल है, लेकिन वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अगर डिग्री प्रोग्राम में कोई है तो 10+2 जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। इग्नू जो है वो 2 बार एडमिशन ओपन करती है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो 12th पास है वो हमारे प्रोग्राम्स में जाके वेबसाइट पे इग्नू की वो देख सकता है और एडमिशन ले सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे जो भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज उसमें भी यही एडमिशन का प्रोसेस है। इग्नू ने अपने जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक और सुगम ऑप्शन दिया है। एडमिशन की प्रक्रिया हम लोग 2 बार करते हैं, एक जनवरी सेशन में और एक जो है जुलाई सेशन में, जिसका शुरुआत जो है जून 26 में हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 बार साल में इग्नू में एडमिशन के अवसर मिलते हैं, और वो जो है उसमें कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम है, जैसे बीएड प्रोग्राम है हमारा, उसमें एंट्रेंस होता है, बीएससी नर्सिंग है या पीएचडी प्रोग्राम है उसमें होता है, बाकी डायरेक्ट एडमिशन है।
1: बहुत बार जैसे आपने कहा कि भाई काम काज में कोई लगा हुआ या किसी रेगुलर सर्विस में है, कहीं और पोस्टेड है, तो जो अटेंडेंस है या जो कहें कि जब कक्षा में हम बैठते हैं, क्या वो उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है?
0: देखिए, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये रीचिंग टू अनरीच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जन जन का विश्वविद्यालय, इसका वही है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम की कुछ कह सकते हैं हर्डल्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी कि अटेंडेंस मैंडेटरी है और वहां पे आपको क्लास करना है, तो वो चीजें यहाँ पे खत्म की गई या मिनिमाइज की गई। हम लोग जो है रेगुलर क्लासेस तो नहीं होती, कुछ काउंसलिंग क्लासेस कराते हैं और वो काउंसलिंग क्लासेस उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के क्रेडिट के हिसाब से होती
1: जी, जी, जी।
0: उस काउंसलिंग क्लासेस में आप अटेंड कर सकते हैं, वो ऐसा कोई अटेंडेंस की कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो अगर कोई अटेंड करता है तो उससे लाभान्वित होता है। और दूसरी एक जो अच्छी बात है, हम लोग काउंसलिंग जो क्लासेस कराते हैं वो ऑनलाइन मोड में भी कराते हैं।
1: जी जी जी
0: तो अगर आप कहीं भी वर्किंग हैं, कहीं दूर हैं, तो आपको फिजिकल मोड में प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मोड में कहीं भी जुड़ के अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं।
1: आजकल स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, जो आपके यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं या डिप्लोमा कोर्सेज हैं, क्या उनमें वो प्रवेश ले सकते हैं जबकि शिक्षा कई वर्षों से उनसे

0: है, कई साल का गैप हो चुका है।
1: आज का जो समय है वो रियली कन्वेंशनल एजुकेशन हो या डिस्टेंस एजुकेशन हो, उसके साथ साथ स्किल पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो NEP 2020 जो आया उसमें जो है इस बात पे बहुत फोकस है कि हमारी जो शिक्षा है वो स्किल से जुड़े। भारत सरकार, प्रदेश सरकार और इवन विश्वविद्यालय NEP 2020 के माध्यम से जो है स्किलिंग के पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स इग्नू ने लॉन्च किए हैं
0: जी
1: जो जो है 6 महीने के हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और उसको करके जो है कोई भी रोजगार के अवसर आसानी से कर सकता है। जैसे मैं
0: जी
1: कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताना
0: जी
1: चाहूंगा।
0: जी जी
1: जैसे एक है हमारा सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट। आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट एक उभरता हुआ
0: जी
1: कैरियर
0: जी
1: है।
0: जी
1: सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फैशन डिजाइनिंग, ये भी एक 6 महीने का प्रोग्राम है।
0: जी
1: ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
0: जी
1: सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसमें भी है। या आप टूरिज्म, जैसे टूरिज्म इस समय बहुत उभरता हुआ कैरियर है
0: जी जी जी
1: इंडस्ट्री के रूप में। अगर आप देखेंगे आने वाले 10-15 सालों में टूरिज्म सर्विस सेक्टर में एक बहुत ही कंट्रीब्यूटर जो है फैक्टर बनेगा।
0: जी
1: और आप देखेंगे कि जो टूरिज्म से रिलेटेड चीजें हैं उस पर भी एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है।
0: दोस्तों, आपने जयप्रकाश जी को सुना। मुझे उम्मीद है कि आप जयप्रकाश जी की बातों को समझ रहे होंगे, उन्हें आत्मसात करेंगे, खुद भी शिक्षित होंगे, अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगे, क्योंकि तभी राष्ट्र विकास करेगा। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी हमारे श्रोताओं को आपने शिक्षा संबंधी और खास करके कि जो आपने दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, जो उससे संबंधित जो आयाम है, उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान परिवेश में दूरस्थ शिक्षा, इस विषय पर भी आपने डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा के साथ सुभाष खन्ना की यह भेंटवार्ता सुनी। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यही संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साबरी ब्रदर्स की गाय नात और कव्वाली। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साबरी ब्रदर्स की गाई नात और कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान

0: करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के

0: डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को

0: डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। यह आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ग्यावस्ती मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम कटी पतंग, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव बर्मन की।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना, फिल्म का नाम था उमर कैद। ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम पिया का घर, गीत रचना आनंद पक्षी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ताजमहल के लिए।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

कैसी तबीयत है जनाब की? संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घिउंजाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुरों के साधक एन राजम से खास बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग गोरख कल्याण में सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग गोरख कल्याण में सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच

0: फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक

मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।